0: राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का किया गठन। और प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने कल तक के लिए जारी किया है बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बांदा में 710 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, चेक और आयुष्मान कार्ड वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र को यूपी के सबसे बड़े औद्योगिक शहर बीड़ा के रूप में विकसित कर रही है।
1: मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि हमारे बुंदेलखंड के विकास के लिए, यहां की विरासत के संरक्षण के लिए जो भी प्रोजेक्ट शासन के संज्ञान में आएगा, उसको आगे बढ़ा करके बुंदेलखंड को धरती का स्वर्ग बनाने का काम हम लोग करेंगे, आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने बांदा में वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में पुलिस की विशेष टीम ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने 8 आरोपियों सहित संदेह के दायरे में आए उनके परिजनों और रिश्तेदारों के करीब 30 बैंक अकाउंट सीज कर दिए। साथ ही पुलिस कुछ अन्य लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा अब ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे भविष्य में कोई अन्य घटना दोबारा न हो सके।
2: इस बात का विश्वास रखिए कि हम लोग इस कार्य को अब अधिक दक्षता के साथ करेंगे, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे और जब यहाँ का CEO नियुक्त हो जाएगा उसके पश्चात तो सारी कार्य पद्धति में एक निखार आएगा।
0: श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए जारी किए जाने वाले VIP पास की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। विशेष पास की नई रेफरेंस ID अभी तक जारी नहीं की गई है। ऐसे में पहले से जारी किए गए विशेष पास मान्य किए जा रहे हैं, लेकिन नए पास अब नई रेफरेंस ID जारी होने के बाद ही बन सकेंगे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कल मिर्जापुर में पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए श्री चौधरी ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले पर कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी।
3: मंदिर बनने के बाद उसका एक प्रभावी ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट की ही देख रेख में होता है, सरकार का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है और निश्चित तौर से जो भी ट्रस्ट का हेड है वो भी जवाबदेह होगा और जो जांच में दोषी पाया जाएगा निश्चित तौर से कड़ी से कड़ी चलाएगा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति आज से 15 जुलाई तक लखनऊ दौरे पर रहेगी। एक रिपोर्ट।
4: इस अध्ययन दौरे का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना तथा विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श करना है। PP चौधरी की अध्यक्षता में गठित संयुक्त संसदीय समिति इस अध्ययन दौरे के दौरान उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों, राज्य प्रशासन, वित्तीय एवं शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षाविदों, राज्य बार परिषदों, संबंधित उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संघों, विभिन्न पेशेवर संगठनों तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करेगी। समिति के अध्ययन दौरे में विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक और सार्थक विचार विमर्श होने की अपेक्षा है। लखनऊ से मुमताज अली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की प्रोविजनल उत्तर कुंजी को लेकर अभ्यर्थी 14 जुलाई तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

0: उपलब्ध है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। यह समिति IVF क्लिनिक, ART केंद्रों और गैमिट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। प्रदेश सरकार की ओर से 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस महाअभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में एक पेड़ माँ के नाम लगाएंगे। प्रदेश के वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि सरकार हरित क्षेत्र बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध है।
1: 35 करोड़ का लक्ष्य बड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश और माननीय योगी जी की सरकार और यहाँ की जनता के लिए बहुत बड़ा नहीं। हमने पिछली बार भी 35 करोड़ का टारगेट था तो हमने 36 करोड़ पेड़ लगाए थे एक ही दिन में, तो हमारे लिए 35 करोड़ का लक्ष्य बड़ा जरूर है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। हम इससे कहीं ज्यादा पेड़ लगाएंगे।
0: प्रदेश के कई जिलों में कल से रुक रुक कर बारिश हो रही है। कुछ जिलों में भारी वर्षा के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। कल लखनऊ, फर्रुखाबाद, मुजफ्फरनगर, संभल, नोएडा, हापुड़, अयोध्या, चित्रकूट, बिजनौर और बस्ती सहित कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। बारिश और जलभराव के चलते संभल, गाजियाबाद, हापुड़ और मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया। उधर अमरोहा में बारिश और बैराज से पानी छोड़ने के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कई गांवों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पीलीभीत जिले में कई दिनों से हो रही वर्षा के कारण शारदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदी के बहाव क्षेत्र में जलभराव से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए वहां बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। लगातार बारिश के कारण गंडक नदी कुशीनगर के खड्डा में खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि कल तक के लिए प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
2: वेस्ट यूपी में हैवी टू वेरी हैवी रेन के साथ कहीं कहीं एक्सट्रीमली हैवी रेन हुई है, और अगर आगे आने वाले दिनों में बात करें तो ये उत्तरोत्तर मध्य उत्तर प्रदेश और उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ेगा। यद्यपि यह उत्तरोत्तर कमजोर होता जाएगा, परंतु इसके प्रभाव से सेंट्रल यूपी की तरफ आने पर और थोड़ा कमजोर होने पर वर्षा की मात्रा में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई को भी जारी रहेगा, और इसके बाद 11 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसमें व्यापक तौर पर कमी आ जाएगी और तराई इलाकों में यह कहीं कहीं भारी वर्षा तक सीमित हो जाएगा।
0: सोनभद्र जिले के पीपरी थाना क्षेत्र में मड़ेया गांव के पास कल शाम एक ट्रक की चपेट में आ जाने से बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में 710 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 229 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बुंदेलखंड क्षेत्र को प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक शहर बीडा के रूप में विकसित कर रही है सरकार। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता के मामले में पुलिस कार्रवाई तेज। 8 आरोपियों सहित संदेह के दायरे में आए परिजनों के 30 बैंक अकाउंट किए गए सीज। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का किया गठन। और प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने कल तक के लिए जारी किया है बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त

0: करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सुहानी।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। ये गीत फिल्म का नाम था लगे रहो मुन्ना भाई। गीतकार और संगीतकार थे स्वानंद किरकिरे और शांतनु ओझा। अगले गीत आइए सुनते हैं सुनिधि चौहान की आवाज़ में, फिल्म धूम से।

0: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
1: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
0: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
1: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
0: गाने के बोल,
1: गीतकार
0: और संगीतकार,
1: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
0: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
1: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
0: गाते गुनगुनाते
1: सुनिए सुबह 10:05 पर।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
2: स्वच्छता का संदेश फैलाओ, हर जगह सफाई लाओ,
3: कूड़ा कचरा सही जगह डालो, स्वच्छता की आदत अपनाओ,
2: साफ सफाई से जीवन सुहाना, स्वस्थ समाज का सपना सजाना,
3: गली मोहल्ला शहर हर क्षेत्र हो चमकदार, स्वच्छता का नियम सबको समझाओ मेरे यार।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

Day. अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम, साधना सरगम की आवाज़ में ये गीत, फिल्म हम तुम से। गीतकार प्रसून जोशी थे और संगीतकार थे जतिन ललित। अगले गीत आइए सुनते हैं हिमेश रेशमिया और तुलसी कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है हमको दीवाना कर गए।

फिल्म हम तुम के इस गीत के बाद कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं उमराव जान का एक गीत अलका याग्निक की आवाज़ में। गीतकार जावेद अख्तर हैं और संगीतकार हैं अनु मलिक।

इसके साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम पूर्वा सुहानी अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप दिल्ली से सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट

0: शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष T20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
2: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल, बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
3: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: श्री मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में

0: उत्साह का माहौल है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहाँ बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब चार दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी शंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7-सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
5: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता

0: लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना यूसीसी कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट, सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। आसमान बरसा, NCR थमा, 3 साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था, वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्द खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष T20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म मौसम में। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थे मदन मोहन। अगले गीत आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म शर्मिली से। गीत नीरज के हैं और संगीतकार हैं एस टी बर्मन।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details log on to www.ddindia.com।

किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म नमक हराम में। गीतकार आनंद बख्शी थे और संगीतकार थे आर डी बर्मन। अगला गीत आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म प्यार का मौसम से। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी हैं और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

अभी आप सुन रहे थे यशोदास को फिल्म टूटे खिलौने में। गीतकार कैफी आजमी थे और संगीतकार थे पप्पी लाहिरी। और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं किशोर कुमार को। फिल्म का नाम है दिल से मिले दिल। गीत अमित खन्ना के हैं और संगीत दिया है पप्पी लाहिरी ने।

0: इसके साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम हम लखनऊ से रिले कर रहे हैं।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
2: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए प्रयागराज और गाजियाबाद जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं प्रयागराज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है प्रवीण मिश्र का।
3: जून माह के मध्य में प्रयागराज के प्रभारी मंत्री जलशक्ति विभाग उत्तर प्रदेश स्वतंत्र देव सिंह जी की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में उत्तर प्रदेश श्री अन्न मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम अंतर्गत मिलेट्स रेसिपी एवं उपभोक्ता जागरूकता पर आधारित प्राकृतिक खेती कार्यशाला विकसित कृषि संकल्प अभियान एवं खेत बचाओ अभियान कार्यक्रमों का आयोजन सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर युवा महिला एवं गरीब कल्याण को समर्पित सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। साथ ही विकसित उत्तर प्रदेश 2047 पर आधारित 4 दिवसीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर परिवर्तनकारी यात्रा का उत्सव है, जिसने गांव, गरीब, किसान

0: को विकास की मुख्य धारा में लाने का कार्य किया। 21 जून को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रयागराज के ऐतिहासिक और पवित्र संगम नोच पर एक भव्य सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम जिला प्रशासन एवं आयुष विभाग प्रयागराज के तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए और योगाभ्यास किया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस बृहद कार्यक्रम में योग अभ्यासियों सहित 9000 से अधिक लोगों ने एक साथ योगाभ्यास कर स्वास्थ्य और कल्याण का संदेश दिया। इस अवसर पर योग और स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा, योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर मन और आत्मा को जोड़ने का पवित्र माध्यम है। नियमित योग करने से न केवल हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहता है बल्कि यह हमें मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है। आज पूरी दुनिया भारत की इस प्राचीन विधा को अपना रही है जो हर भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। जून माह के तीसरे सप्ताह में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 140 नव दंपतियों का विवाह कार्यक्रम आयोजन सकुशल संपन्न हुआ। वैवाहिक कार्यक्रम में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं संबंधित विकास खंडों के खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे। प्रयागराज उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जून माह के अंतिम सप्ताह में मेजा ब्लॉक परिसर में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम SCP का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं, महिलाओं एवं स्वरोजगार के इच्छुक लोगों को विभाग द्वारा संचालित विभिन्न रोजगार परक योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना था। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख मेजा गायत्री देवी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। इस दौरान उपस्थित लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई तथा आवेदन प्रक्रिया, पात्रता एवं लाभ प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया। साथ ही स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लाभार्थियों का मार्गदर्शन भी किया गया। इस माह के प्रथम सप्ताह में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑडिटोरियम में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण BVG रामजी योजना लॉन्च कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने संबोधन में BVG रामजी योजना के लॉन्चिंग के सभी को बधाई देते हुए कहा कि BVG रामजी योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों के पारिश्रमिक को 252 रुपए से बढ़ाकर न्यूनतम 300 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत पहले 100 दिन रोजगार की गारंटी मिलती थी, परंतु जी रामजी योजना के अंतर्गत इसे बढ़ाकर 125 दिन रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लक्ष्य के साथ साथ अब हमारा लक्ष्य विकसित ग्राम सभा बनाने का है। और जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा,
1: देश के लिए भी, उत्तर प्रदेश के लिए भी, प्रयागराज के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी मनरेगा के स्थान पर आए। विकसित भारत जी राम जी आने के बाद गांव का सर्वांगीण विकास होगा। गांव की जो सड़कें हैं, इंटरनल सड़कें हैं, वो भी बनेंगी, तालाब भी बनेंगे, सभी क्षेत्रों में यह बहुत ऐतिहासिक काम होगा।
0: जुलाई माह के प्रथम सप्ताह विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का उद्घाटन अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर राजेश कुमार, संयुक्त निदेशक डॉक्टर आशु पांडे एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से संयुक्त रूप से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। संचारी अभियान का संचालन दिनांक 1 जुलाई से 31 जुलाई 2026 एवं दस्तक अभियान 11 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक संचालित किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी ने स्वास्थ्य विभाग की विशेष भूमिका के विषय में चर्चा की एवं दस्तक अभियान में स्टॉप डायरिया कैंपेन के अंतर्गत आशा एवं आंगनवाड़ियों के द्वारा घर घर पर जाकर डायरिया प्रभावित परिवारों को जिंक, ORS एवं क्लोरीन की गोली वितरण पर चर्चा की। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय के द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 3 रोजगार मेले का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें 35 से अधिक कंपनियों के द्वारा हजारों युवाओं को निजी क्षेत्र की कंपनियों में रोजगार प्रदान किया गया। युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले इसको लेकर क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय पर अभ्यर्थियों के लिए हेल्प डेस्क, ऑनलाइन पंजीकरण और पोर्टल पर जनपद में समय समय पर आयोजित होने वाले रोजगार मेले की सूचना प्रदान की जा रही है। इस हफ्ते शुरू हुई हल्की बारिश और आसमान में छाए बादलों से भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं मानसून की दस्तक से किसानों के चेहरे खिले हैं, साथ ही कृषि कार्यों में भी तेजी से कार्य शुरू हो गया है। खरीफ की प्रमुख फसल धान की खेती को लेकर कृषि विभाग द्वारा सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं।
2: प्रयागराज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजियाबाद जिले की हलचल।

0: आलेख और स्वर है मनोज कुमार शर्मा का।
1: गाजियाबाद स्थित नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन यानी नेट्रा का 52वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा भी इस अवसर पर मौजूद रही। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। केंद्रीय मंत्री ने नेट्रा की 52 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में वस्त्र क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का वस्त्र उद्योग लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है और भारत अब केवल अपनी जरूरतें ही नहीं बल्कि दूसरे देशों की मांगें भी पूरी कर रहा है। उन्होंने बताया कि देश में वस्त्र क्षेत्र में बड़े जुड़े हुए कई अनुसंधान संस्थान आधुनिक तकनीक और परीक्षण सुविधाओं के साथ कार्य कर रहे हैं, जिससे शोध और नवाचार को बढ़ावा मिला है। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान और स्टार्टअप को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने अयोध्या का हालिया घटना पर कहा कि मामले की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून अपना काम करेगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गाजियाबाद में वाल्मीकि पार्क में आयोजित 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम में भाग लिया और सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने उनके कार्यों की सराहना करते हुए स्वच्छ अभियान में उनके योगदान का महत्वपूर्ण बताया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री विकास भवन पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। दौरे के दौरान आयोजित किसान कार्यशाला में उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि रासायनिक खादों और कीटनाशकों से अत्यधिक उपयोग से स्वास्थ्य एवं पर्यावरण दोनों प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए किसानों को कंपोजिट खाद और पारंपरिक कृषि पद्धतियों को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर किसानों की कार्यशाला में हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। हम प्रदेश के किसानों से अपील करते हैं, हम सबको प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ना होगा। हमारे जो पुराने संसाधन थे उन पर हमें जाना है, हमें कंपोस्ट खाद का उपयोग मिलाना है।
1: उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। गाजियाबाद में जिला प्रशासन अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में गाजियाबाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ के निर्देश पर गांधीनगर क्षेत्र में एक महिला को उसकी परसों पुरानी आवंटित दुकान का कब्जा वापस दिलाया गया। पीड़िता सुमन बत्रा ने सोमवार को जिलाधिकारी से मिलकर शिकायत की थी कि वर्ष 1992 में नगर पालिका से लीज पर मिली दुकान पर अवैध कब्जे कर लिया गया है। शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया। राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकान को खाली कराया और उसका कब्जा सुमन बत्रा तथा उसके परिवार को सौंप दिया। जिलाधिकारी रविंद्र मादर ने कहा कि अवैध कब्जों से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है।
3: प्रमोद बत्रा जी मेरे पास आए थे और इनकी एक पीड़ा थी कि पिछले 28 वर्ष से के दुकान पे कब्जा किया हुआ था और वो कब्जा खाली नहीं कर रहा था। जनता दर्शन में मेरे पास आए थे, इन्होंने अपनी शिकायत मुझे बताई तो हम लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में तुरंत एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित की और जब ये पुख्ता हो गया कि सारे कागज इनके नाम पे, दुकान इनकी है, जिस दुकान को खाली करा लिया गया और इन्हें कब्जा वापस प्रदान कर दिया गया।
1: उन्होंने कहा कि सरकारी अथवा वैध रूप से आवंटित संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी और पात्र लोगों को उनका अधिकार दिलाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। गाजियाबाद के डासना क्षेत्र में दिल्ली मुरादाबाद हाईवे के निकट स्थित करीब 250 बीघा सरकारी भूमि को जिला प्रशासन ने अवैध कब्जे से मुक्त कराया।
0: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान इस संदेश के बाद।
1: गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली।
2: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
3: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
2: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
3: प्रसारित

अभी आप सुन रहे थे मिले जुली आवाजों में देशगान। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। उर्दू कार्यक्रम हम लखनऊ से रिले कर रहे हैं।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर। पेश खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
1: सामईन आदाब, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 9:30 बज चुके हैं और मैं आपका मेज़बान आसिफ इकबाल आपके लिए उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ।

दोस्तों, कुछ लोग दुनिया में सिर्फ जीने के लिए नहीं आते, बल्कि अपनी बातों, अपनी यादों और अपनी लिखी हुई तहरीरों से इस दुनिया को और खूबसूरत बनाने आते हैं। एक ऐसा ही नाम जिसने उर्दू शायरी और

हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समुंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। हैरा है कई रोज से ठहरा हुआ पानी, तालाब में अब क्यों कोई कंकर नहीं गिरता। उस बंदाए खुददार पे नबियों का है साया, जो भूख में भी लुकमाए तर पर नहीं गिरता। करना है जो सर मार का ए जीस्त तो सुन ले, बेबाजुए हैदर दर खैबर नहीं गिरता। कायम है कतील अब ये मेरे सर के सुतू पर, भूचाल भी आए तो मेरा घर नहीं गिरता।

क्या आप जानते हैं कि उनका नाम कतील शिफाई कैसे पड़ा? उन्होंने अपने उस्ताद हकीम शिफा रहमानी के नाम से शिफाई लिया और अपना तखल्लुस रखा कतील। लाख पर्दों में रहूं, भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबां डोलती है, शायरी सच बोलती है। तेरा इसरार की चाहत मेरी बेताब ना हो, वाकिफ इस गम से मेरा हलका अहबाब ना हो, तो मुझे जब्त के सहराओं में क्यों रोलती है, शायरी सच बोलती है। ये भी क्या बात कि छुप छुप के तुझे प्यार करूं, गर कोई पूछ ही बैठे तो मैं इनकार करूं, जब किसी बात को दुनिया की नजर तौलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने इस फिक्र में काटे कई रातें कई दिन, मेरे शेरों में तेरा नाम ना आए, लेकिन जब तेरी सांस मेरी सांस में रस खोलती है, शायरी सच बोलती है। तेरे जलवों का है पर तेरी मेरी एक एक गजल, तो मेरे जिस्म का साया है तो कतरा के न चल, पर्दादारी तो खुद अपना ही भरम खोलती है, शायरी सच बोलती है।

वह दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ न करे, मैं तुझको भूल के जिंदा रहूं खुदा न करे। रहेगा तेरा प्यार जिंदगी बनकर, ये और बात है मेरी।

जिंदगी वफा ना करे। ये ठीक है नहीं मरता कोई जुदाई में, खुदा किसी को किसी से मगर जुदा ना करे। सुना है उसको मोहब्बत दुआएं देती है, जो दिल पे चोट तक आए मगर गिला ना करे। अगर वफा पे भरोसा रहे ना दुनिया को, तो कोई शख्स मोहब्बत का हौसला ना करे। बुझा दिया है नसीबों ने मेरे प्यार का चांद, कोई दिया मेरी पलकों पे अब जला ना करे। जमाना देख चुका है परख चुका है इसे, कतील जान से जाए पर इल्तजा न करे। चलिए इन्हीं जज्बात को समेटे हुए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में उनकी गाई ये बेहद मकबूल गजल।

कतील साहब ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के सिनेमा जगत के लिए भी काफी गीत लिखे जो बेहद मकबूल हुए। फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई का कुमार सानू की आवाज में गीत तेरे दर पर सनम चले आए और इसी फिल्म का अलका याग्निक की आवाज में गीत बादलों में छुप रहा है चांद क्यों और नाराज फिल्म का कुमार सानू की आवाज में संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को कतील शिफाई नहीं लिखे, जिनको लोग आज भी पसंद करते हैं और मोहब्बत से सुनते हैं।

दोस्तों, 90 की दहाई में जब भारतीय फिल्मेकर महेश भट्ट ने अपनी फिल्मों के लिए गाने लिखने के लिए सरहद पार कतील साहब को याद किया तो वो तारीख बन गई। इसके अलावा मेहंदी हसन, जगजीत सिंह, पंकज उदास जैसे गुलकारों ने कतील साहब की शायरी को आवाज़ दी।

सुकूत मर्ग तारी है, सितारों तुम तो सो जाओ, हंसो और हंसते हंसते डूबते जाओ खलाओं में, हम ही पे रात भारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। हमें तो आज की शब पौ फटे तक जागना होगा, यही किस्मत हमारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। तुम्हें क्या आज भी कोई अगर मिलने नहीं आया, ये बाजी हमने हारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। कहे जाते हो रो रो कर हमारा हाल दुनिया से, एक ऐसी राजदारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। हमें भी नींद आ जाएगी, हम भी सो ही जाएंगे, अभी कुछ बेकरारी है, सितारों तुम तो सो जाओ।

0: अतील साहब का मानना था कि शायरी दिल का मामला है और दिल की कोई सरहद नहीं होती। 11 जुलाई 2001 को इस अजीम शायर ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके लिखे नगमे आज भी हमारे मोबाइल की प्लेलिस्ट में हैं और हमारे दिलों में महफूज हैं। सामईन, आज के हमारे इस सफर को रोकने का वक्त आ गया है। दोस्तों, कतील शिफाई साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जब तक दुनिया में मोहब्बत रहेगी, जब तक टूटे दिलों को सहारा देने के लिए लफ्जों की जरूरत होगी, कतील साहब अपनी शायरी के जरिए जिंदा रहेंगे। आपको कतील साहब का कौन सा शेर, गजल या गाना सबसे ज्यादा पसंद है, हमें जरूर बताइएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7991778157। अब अपने दोस्त आसिफ इकबाल को नगमगी प्रोग्राम से दें इजाजत। सुनते रहिए उर्दू प्रोग्राम, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए कतील साहब की शायरी। आकाशवाणी लखनऊ आपके साथ है। आदाब।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत।
2: जिंदगी बहुत कीमती है,
3: उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा।
5: डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं।
6: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
7: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
1: सुगम संगीत में आज की कलाकार हैं वनीता सिंह।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये बारा।
3: डॉल कर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B Pharma M Pharma और D Pharma में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
6: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं।
7: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
6: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
7: स्वच्छता की आदत, स्वस्थ जीवन की शुरुआत।

0: इसके साथ ही आज का सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की कलाकार थी वनीता सिंह। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप दिल्ली से सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
2: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र। ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का भी दौरा किया। दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी किया। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष

0: एंगस टेलर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, शिक्षा, हिंद प्रशांत सुरक्षा, निवेश और जनसंबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया के मजबूत संबंधों के लिए द्विपक्षीय समर्थन की पुष्टि की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। ये समिति अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा के दोनों सदनों के समक्ष एक समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने पर विचार कर रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के लिए उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामेनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करी। इस वर्ष 28 फरवरी को अमरीका इसराइल के हमलों में आयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी, जिसके बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में संघर्ष तेज हो गया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल की तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3-4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश के आसार हैं। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सबका अपने कार्यक्रम गाते गुनगुनाते में। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपसे है, आपकी फरमाइशों से है, आपके मनपसंद सदाबहार गीतों की फरमाइशें इस कार्यक्रम को और भी सुरीला बनाती हैं। आज की पहली फरमाइश है जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल, शनि बाजार उगैती से प्रभाकर गुप्ता, अवधेश गुप्ता, सचिन गुप्ता, देव गुप्ता, परियाल और कायरव गुप्ता। आपने फरमाइश की है फिल्म आया सावन झूम के का ये गीत सुनने का, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

अगले गीत की फरमाइश है फिल्म क्रांति से, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में। गीतकार संतोष आनंद हैं और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने जनकपुरी सहारनपुर से जान डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर फिल्म क्रांति का ये गीत।

इस गीत के बाद अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म गुमराह से महेंद्र कपूर की आवाज़ में। गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं रवि। इस गीत की फरमाइश की है आप सबने, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, ग्राम दूल्हापुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म गुमराह का ये गीत।

0: से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार।
1: श्रोताओं, गीत संगीत का ये सफर जारी रहेगा इस संदेश के बाद।

0: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म मधुमती से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, गीतकार शैलेंद्र है और संगीत दिया है सलील चौधरी ने। इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने अक्षय कॉलोनी गोंदूर रोड धोलिया महाराष्ट्र से मनोहर मगर यामिनी उदयन अर्पिता और इंद्रप्रस्थ सदरा जिला धनवंतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत सीमा साहू सूर्यकांत राकेश साहू शुभम सावित्री और शिखा शेफाली। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

गीतकार हैं समीर और संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने। इस गीत को सुनना चाहा है सियेरा लियोन वेस्ट अफ्रीका से शेख जियाउर रहमान, जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी ने। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत आपकी फरमाइश पर है। जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद और कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल। आपने सुनना चाहा है यशुदास की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है चितचोर। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

0: कार्यक्रम का अगला गीत इस संदेश के बाद।
1: Hey girls, congratulations! आज तो पार्टी चाहिए।
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीडा।
5: BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA D-Pharma B-Pharma और M-Pharma में एडमिशन्स शुरू हो गए हैं।
4: 300 कंपनीज में प्लेसमेंट्स, स्कॉलरशिप और इजी फी इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी।
5: विजिट KIPM गीडा गोरखपुर।

स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है। आकाशवाणी गोरखपुर से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। कार्यक्रम का अगला गीत ये सुनते हैं फिल्म फूल और कांटे से कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी नौशाद बेबी आलिया और आयान बाबू। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म मिलन से। इस गीत को सुनना चाहे आप सबने साउथ दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता, गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला विशाल और निशा राठौर। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर फिल्म मिलन का ये गीत।

रे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

आकाशवाणी गोरखपुर से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म चुपके चुपके से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने ग्राम जरबोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और पूजा खटक। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर फिल्म चुपके चुपके का ये गीत।

0: इसके साथ ही आज का फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम गाते गुनगुनाते अब समाप्त होता है। चंदनलता को दीजिए अनुमति, आप अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर पोस्टर कमेंट बॉक्स में गाने के बोल और अपने दोस्तों के नाम के साथ भेजिए और सुनिए अपनी पसंद के गीत कार्यक्रम गाते गुनगुनाते में। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम गाते गुनगुनाते, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज पर और साथ ही एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी गोरखपुर है। थोड़ी देर में आप दिल्ली से सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, शिक्षा, हिंद प्रशांत, सुरक्षा, निवेश और जनसंबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया के मजबूत संबंधों के लिए द्विपक्षीय समर्थन की पुष्टि की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों तथा भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न कर ली है। इस यात्रा ने भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को भविष्य के अनुरूप एक नई दिशा और मजबूत आधार प्रदान किया है। यात्रा के दौरान उच्च स्तरीय कारोबारी बैठकों से लेकर प्रतिष्ठित स्थलों तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। इससे पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त की। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
2: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
1: प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड

0: के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ओमान पहुंच गए हैं। ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्कारी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है।
1: विगत 12 साल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सीमा सुरक्षा के लिए काम हुआ है। सबसे पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजस्व खर्च होना, इसकी प्रायोरिटी चिन्हित करना और चिन्हित प्रायोरिटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2013 का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% का परिवर्तन है। बॉर्डर सुरक्षा की पहली जो रिक्वायरमेंट थी, बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक एक दिवसीय टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 से खेला जाएगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: जी, आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही देर में लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीडा,
6: BTech पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, D-Pharma, B-Pharma और M-Pharma में एडमिशन्स शुरू हो गए हैं।
5: 300 कंपनीज में प्लेसमेंट्स, स्कॉलरशिप और इजी फी इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी।
6: विजिट KIPM गीडा गोरखपुर।
7: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते।
2: लोकगीतों के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं अशोक कुमार यादव और साथी। आइए सुनते हैं इनके स्वर में सबसे पहले देवी गीत।

0: मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details log on to www.ddindia.com।

तनिके सपूत सरवन दुनिया के देखलाई दिहले बनके सपूत सरवन दुनिया के देख।

0: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
1: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
0: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पे।

लोकगीतों के कार्यक्रम में आज के कलाकार थे अशोक कुमार यादव। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। कोलाहल से भरे जीवन में संगीत से बेहतर शायद ही कोई और विकल्प हो। सिर्फ संगीत सात सुरों में बधा नहीं होता, संगीत में दुखी से दुखी व्यक्ति को भी प्रसन्न करने की सामर्थ्य होती है। यदि आप महसूस करें तो दैनिक जीवन में संगीत ही संगीत भरा है। जीवन के इस संगीत से चलते हैं सुरों की संगीत की ओर और सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

0: छिछोरे फिल्म से अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह को, संगीत प्रीतम का था और गीत लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा।
3: जानो फिर मानो।

0: पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
1: अगला गीत हमने लिया है दबंग फिल्म से। जावेद अली की आवाज़ है, संगीत दिया है साजिद वाजिद ने और गीत लिखा है दानिश सबरी।

0: नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

0: पागलपंथी फिल्म में अभी आप सुन रहे थे नेहा कक्कड़ को और मीका सिंह। संगीत अनीस बागची का था और गीत लिखा था शब्बीर अहमद ने।
1: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
2: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
1: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
2: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
1: गाने के बोल,
2: गीतकार
1: और संगीतकार
2: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
1: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
2: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
1: गाते गुनगुनाते
2: सुनिए सुबह 10:05 पर।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
3: अभी जो गाना सुना आपने वो हाउसफुल 4 का गाना सुहेल सीन और अल्तमस फरीदी की आवाज़ थी। संगीत था सुहेल सीन का और गीत लिखा था समीर अनजान ने। अगला गीत है तानाजी फिल्म से, हर्षदीप कौर की आवाज़ है, संगीत है सचेत परंपरा की।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: माँ पिता भगवान का वो अनमोल उपहार हैं जिनका प्रेम और आशीर्वाद जीवन को हर कठिनाई से पार करा देता है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, इसके लिए आपका धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 18 तारीख को चिड़िया की बच्ची कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए NCERT उमंग के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
3: और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी।
2: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर।
3: और गांव बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और वर्मा परिवार के सभी सदस्य।
2: और कुतुबपुर तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा।
3: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों को भेजने के लिए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आपकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में कुछ और नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। जैसा कि हमने इस सप्ताह की पहली कड़ी में सुना था, पेड़ सिर्फ पेड़ ही नहीं, वे इस धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं। उनके आने के बाद ही दूसरा जीव जगत शुरू हो सका, क्योंकि वे वर्षा, भोजन, औषधि और श्वसन के मुख्य स्रोत हैं।
3: श्रोताओं, क्या आप जानना चाहेंगे कि पेड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए आपको बताते हैं।
2: पेड़ों की उत्पत्ति पृथ्वी के इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। कहते हैं लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पेड़ नहीं थे, केवल सूक्ष्म जीव थे। कालांतर में समुद्रों में शैवाल जैसे जीव विकसित हुए जो तैरते थे और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे।
3: धीरे धीरे ये शैवाल जैसे जीव समुद्र से निकलकर भूमि पर आए। इन्हीं से प्रथम स्थलीय पौधों का विकास हुआ।
2: प्रश्न ये है कि इन पौधों ने क्यों बढ़ना शुरू किया? इसका कारण ये था कि जीने के लिए वे अधिक सूर्य का प्रकाश पा सकें और दूसरे पौधों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी क्रम में ये पौधे बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए। ध्यान दें तो इस प्रक्रिया में विकासवाद का सिद्धांत काम करता है, यानी सफलतम ही टिका रहता है।
3: तो

0: और ये थी पेड़ों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कथा। अब जरा ध्यान दें, गर्मी का मौसम है, राह चलते चलते जब बहुत गर्मी लगती है तो आप किसी पेड़ की छाया में शरण लेते हैं
1: जी।
0: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ठीक उस समय जब आप उसकी छाया का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय वो पेड़ क्या क्या कर रहा होता है?
1: ध्यान से सुनिए मित्रों, उस समय वो हवा को ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा एक प्रकार से प्राकृतिक एसी की तरह काम कर रहा होता है।
0: श्रोताओ, ठीक उस समय वो हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित कर रहा होता है जो हमारे लिए हानिकारक है।
1: उस समय वो शोर को कम कर रहा होता है, क्योंकि पत्तियां और शाखाएं प्रदूषित वायु को ही नहीं शोर को भी अवशोषित करती हैं। तभी तो कहते हैं पेड़ों के नीचे या जंगलों में एक शांति का आभास होता है।
0: श्रोताओ, एक बात और, ठीक उस समय वो पेड़ वर्षा और जल संरक्षण में योगदान दे रहा होता है, जिससे भविष्य में हमें भूजल और वर्षा का जल लगातार मिलता रहे।
1: उस समय वो हजारों कीटों, कवकों, पक्षियों और जीवों को आश्रय देकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा होता है।
0: सचमुच श्रोताओं, एक पेड़ हमारे और दूसरों के लिए मौन रहकर भी इतनी सेवा कर रहा होता है। वह बेशक मौन है, लेकिन मानो कहता है, मैं तुम्हारे लिए हवा को शुद्ध कर रहा हूँ, धरती को ठंडा करके जलवायु परिवर्तन की गति को यथासंभव रोक रहा हूँ,
1: स्वयं धूप सहकर तुम्हें छाया दे रहा हूँ, वर्षा लाने में सहायता कर रहा हूँ, मिट्टी के कटाव को रोक रहा हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे और अन्य पेड़ों को जीवित रहने दो। हम सभी पेड़ धरती के फेफड़े हैं।
0: जी हाँ श्रोताओ, अब जब किसी पेड़ को देखें तो इन बातों को जरूर स्मरण कीजिएगा। पेड़ वास्तव में हमारे लिए प्रकृति के मौन लेकिन सबसे बहुमूल्य उपहार हैं।
1: तो ये थी पेड़ों के बारे में हमारी रोचक जानकारी इस सप्ताह की श्रृंखला में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो उस समय वो क्या क्या कर रहा होता है? कोई दो या तीन कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो उस समय क्या क्या कर रहा होता है? कोई दो या तीन कारण बताइए।
0: 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जो एक गीत के रूप में देश को समर्पित है। शीर्षक है प्यारा भारत।
1: ये कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक सितार की एक नज्म पर आधारित है। श्रोताओं, ये खूबसूरत नज्म आपको ले जाएगी भारत के गगनचुम्बी पर्वतों, कलकल करती नदियों, लहलहाती फसलों के मैदानों, घाटियों और फलों के बगीचों में।
0: तो आइए करते हैं भारत भ्रमण इस नज्म के साथ। शीर्षक है भारत प्यारा।

0: भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे गीत भारत प्यारा,
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मौर्य कालीन पाटलिपुत्र।
1: इस कार्यक्रम में मौर्य साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेषकर ये उल्लेख किया गया है कि उनके शासनकाल में जनतांत्रिक मूल्य कितने

मेरा नाम है पाटलिपुत्र। अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास बहुत पुराना है। इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं जब एक छोटा सा गांव था मैं। नाम था पाटली। यहां वहां कुछ खेत, कुछ झोपड़ियां, पास में कल कल करती गंगा की निर्मल धारा। एक घाट था गंगा पार जाने के लिए। वहां एक दो नौकाएं खड़ी रहती। उसी घाट से महात्मा बुद्ध ने नदी पार की थी वैशाली जाने के लिए।

0: महात्मा बुद्ध का नाम मशहूर हो रहा था।
1: उन दिनों मगध पर मौर्यों का राज्य था, जो बिहार के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था। मगध की सीमाओं को बढ़ाया बिंबिसार ने। एक बार वहां भयानक आग लग गई। इसके बाद बिंबिसार ने पास ही में नई राजधानी राजगृह का निर्माण करवाया।

0: राजा बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा अजात शत्रु। महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजात शत्रु ने घोषणा करवाई,
1: सुने सुने सुने सभी ग्रामवासी सुने, सम्राट अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में ये घोषणा की है कि आज से पाटली दुर्ग का मुख्य द्वार गौतम द्वार और गंगा नदी का घाट गौतम घाट कहलाएगा। सुने सुने सुने सुने सुने सुने।

महात्मा बुद्ध ने पाटली के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पाटली एक प्रमुख नगर और व्यापार का बड़ा केंद्र बन जाएगा।

जब बुद्ध पाटलीग्राम आए थे तो वे 79 वर्ष के थे। इसके एक वर्ष बाद ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

0: अजात शत्रु ने वैशाली को जीत लिया। उसके बाद पाटली दुर्ग का महत्व और भी बढ़ गया।
1: अजात शत्रु के बाद राजा बना उसका पुत्र उदाई भद्र। उदाई भद्र अपने पिता अजात शत्रु की तरह विजेता तो न था, पर उसे नए नए राजमहल बनवाने का शौक था। उदाई भद्र ने ही मुझे मगध की राजधानी बनाया।

0: वो 16 वर्षों तक मगध का राजा बना रहा।
1: समय बदला, मगध का सिंहासन महापद्म नंद के पास चला गया। इसी ने नंद वंश चलाया था।
0: पर मैं खुश नहीं था। मैं एक बड़ा नगर जरूर बन गया था। मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था, लेकिन मगध की जनता दुखी थी। महापद्म नंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे।

0: अरे अरे भागो
1: भागो जाओगे अरे भागो रे अरे सिपाही आ गए अरे अरे भागो जाओ जाओ
0: भागो भागो अरे
1: छुप जाओ छुप जाओ
0: अरे यहां यहां नहीं मिलेगा
2: अरे मैंने कुछ नहीं किया
0: भागो आया काबू
3: महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धननंद। बड़ी सेना अपार धन संपत्ति थी उसके पास, मगर था वो बहुत ही घमंडी। धननंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी। उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया। अपमानित कौटिल्य ने प्रतिज्ञा की

0: अत्याचारी धननंद, मैं कौटिल्य आज प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सर्वनाश करूंगा, सर्वनाश।
1: और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना। मौर्य कुल का वो वीर युवक अपना देश छोड़कर भटक रहा था। कौटिल्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी।
2: और उधर भारत से बहुत दूर मैसिडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था। समय था ईसा से 336 वर्ष पूर्व। सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। उसकी आंधी सारी दुनिया पर छा जाने के लिए उमड़ने लगी।
3: सिकंदर
4: बढ़े चलो बढ़े।

0: सिकंदर बढ़ता गया, उसकी आंधी बढ़ती गई। 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ। छोटे छोटे राज्यों में बटा था तब का भारत। लोग वीर थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। अभिसार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, लेकिन राजा पुरु ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया।
1: अरे

पोरू की पराजय हुई। सिकंदर जीत तो गया, परंतु अब उसके सैनिक थक गए थे। उनका मनोबल गिरता जा रहा था। उन्हें कदम कदम पर कड़ी टक्कर मिल रही थी। आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो रही थी।

0: गजब हो गया। सेना आगे बढ़ने से मना कर रही है वीर से गद्दार।
1: क्या आगे बढ़ने से मना कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैसिडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा?
2: वीर सिकंदर, आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते?
1: मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ, सारे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो। ये सिकंदर का आदेश है।
3: जी सम्राट, ऐसा ही होगा।
2: ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा।
1: मेरे वीर सैनिकों, क्या मैंने ठीक सुना है कि मैसिडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और वो वापस लौटना चाहती है? मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों? जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी, आज उसी काम से तुम सब भागना चाहते हो? याद है तुम्हें, हमारी आंधी के सामने बड़े बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर का डंका बज रहा है। चुप क्यों हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है? क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है? ये व्यास नदी देख रहे हो ना, इस नदी को पार करते ही
3: हम वापस लौटना चाहते हैं।
1: सुनो मेरे वीरों, व्यास नदी को पार करते ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा।
3: हमें कुछ नहीं चाहिए, हम
0: मैसिडोनिया चलो,
3: वापस चलो, चलो
4: अरे कुछ तो सबर करो साथियों, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए? अगर मैसिडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सम्राट की बात नहीं टाल सकते।
1: शाबाश मेरे वीरों, मुझे तुमसे यही आशा थी।

0: तुम सब सैनिकों के घेरे में हो। इस निर्जन खंडहर में आधी रात को क्या षड्यंत्र हो रहा था हम जान चुके हैं।
1: महाराज चंद्रगुप्त आप?
0: हाँ
2: महाराज, देखिए आचार्य कौटिल्य भी आ रहे हैं।

0: आचार्य प्रणाम, आप इस वक्त यहाँ?
1: आश्चर्य न करो चंद्र, मगध को असंख्य नेत्रों वाली गुप्तचर व्यवस्था चाहिए, मैं सावधान हूँ।
0: धन्य हो आचार्य, मौर्य साम्राज्य को आपकी बहुत आवश्यकता है।
2: धन्य हो आचार्य,
3: धन्य हो,
4: धन्य हो,
3: धन्य हो।
5: मगध सुखी था, चंद्रगुप्त प्रजा की भलाई करने वाला न्यायप्रिय शासक था, मगर एक बार फिर संकट सिकंदर के सेनापति निकेटर सेल्यूकस के रूप में बढ़ा आ रहा था।

0: सेल्यूकस भारत को जीतने का सपना लेकर आ रहा था, लेकिन अब भारत बदल चुका था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया।
1: बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेगस्थनीस सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। वो 4 वर्ष तक दरबार में रहा।

0: समय बदला। चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदुसार राजा बना और फिर बारी आई उसके मझले बेटे अशोक मौर्य की। अशोक बहुत वीर था। उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया और फिर हुआ कलिंग युद्ध।
1: ये क्या कर डाला मैंने, इतना रक्तपात सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए? नहीं नहीं, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूं, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, अब कभी युद्ध नहीं करूंगा।
0: कलिंग ने अशोक का जीवन बदल डाला। उसकी रुचि अहिंसा में, बौद्ध धर्म में हो गई।

उसने बौद्ध विहार बनवाए, शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक का स्तंभ लेख न होता तो हम कभी न जान पाते कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तभी श्रीलंका के राजा तिस का मैत्री संदेश आया तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसी तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा एशिया के और हिस्सों में भी हुआ। अशोक के बाद मौर्य वंश सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिखरता चला गया। सम्राट आए, सम्राट गए, किसी को ऐश्वर्य मिला, किसी की सत्ता छीनी, पर मैं

0: मौर्यकालीन पाटलिपुत्र अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं इसी कार्यक्रम के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते गाने सुहाने। श्रोताओं, कोयल की कूक, पानी की कलकल से लेकर हवा की सरसराहट तक हर जगह संगीत ही तो है। आवश्यकता है तो इसे अनुभूत करने की। संगीत प्रकृति का अनुपम वरदान है। यह ना सीमाओं में कैद होता है और ना भाषा विशेष में बंधता है। भले ही हर देश में भारी विशेषताएं हों, लेकिन संगीत में सभी सात सुर एक जैसे होते हैं और लय ताल भी एक जैसी होती है। तो चलिए चलते हैं सुरों की सफर पर और सुनते हैं कार्यक्रम गाते गुनगुनाते।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: अगला गीत है सिलसिला फिल्म सिलसिला है प्यार का, फिल्म से अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ में।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details log on to www.ddindia.com।

0: कली।
1: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
2: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
1: करिए अपने मनपसंद फिल्म

0: ये गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर
1: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
0: गाने के बोल
1: गीतकार
0: और संगीतकार
1: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम
0: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
1: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ यादें बन जाएंगी खास। गाते
0: गुनगुनाते
1: सुनिए सुबह 10:05 पर
0: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है, सुगम संगीत। सुगम संगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं जगजीत सिंह।

0: आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551220536। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 2205386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के लिए।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया। 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

सुगम संगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार थे जगजीत सिंह। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही देर में इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से।

0: ये सभी अयोध्या की पहचान बन रहे हैं। जो सिंगल लेन था, जो फोर लेन और सिक्स लेन की सड़कें हैं, चारों ओर से एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी आज अयोध्या को नई पहचान दिला रहा है। स्वाभाविक रूप से अयोध्या को पहचान मिलेगी तो बीकापुर को भी, रुधौली को भी, मिल्कीपुर को भी, गोसाईगंज को भी उसका लाभ प्राप्त होगा।
1: पुलिस की एक खसूसी टीम ने अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के नजराने में बेजाबतगियों की तहकीकात को तेज कर दिया है। पुलिस ने 8 मुलजमीन के तकरीबन 30 बैंक अकाउंट्स को सीज कर दिया है। साथ ही उनके खानदान के अफराद और रिश्तेदार भी शक के दायरे में हैं। पुलिस ने कई दीगर अफराद को भी हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस दरमियान श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खजांची गोविंद देवगिरी ने कहा कि ट्रस्ट अब ऐसे इंतजाम कर रहा है ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात रूनुमा न हों। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए जारी VIP पास सिस्टम में भी तब्दीलियाँ की गई हैं। खसूसी पासेस के लिए नई रेफरेंस ID अभी जारी नहीं की गई है, इसलिए पहले से जारी किए गए खसूसी पासेस की तौसीक की जा रही है, लेकिन नए पासेस नई रेफरेंस ID जारी होने के बाद ही जारी किए जाएंगे। मरकजी वजीर में ममलकत बराए ख़जाना और भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर पंकज चौधरी ने कल मिर्ज़ापुर में पार्टी ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों के साथ मीटिंग की ताकि तंजीमी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया जा सके। मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब चौधरी ने कहा कि अयोध्या के श्रीराम मंदिर में नजराने की चोरी की तहकीकात में जो भी कसूरवार पाया गया उसे सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। रियासती हुकूमत ने कल देर रात 20 IAS अफसरान का तबादला कर दिया, जिसके नतीजे में मेडिकल एजुकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में बड़ा रद्दोबदल हुआ है। मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर जनरल और मेडिकल एजुकेशन की सेक्रेटरी डॉक्टर सारिका मोहन को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन बनाया गया है। नेहा शर्मा जो इस ओहदे पर काम कर रही थी उनको DGME और सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन का चार्ज दिया गया है। इटावा के चीफ डेवलपमेंट अफसर अजय कुमार गौतम का तबादला करके उन्हें एडिशनल कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स गाजियाबाद फर्स्ट बनाया गया है। मुजफ्फरनगर में ADM एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर तैनात संजय कुमार सिंह को इटावा का नया CDO मुकर्रर किया गया है। एक मुल्क एक इंतखाब पर मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी आज से 15 जुलाई तक लखनऊ का दौरा करेगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस अध्ययन दौरे का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना तथा विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श करना है। PP चौधरी की अध्यक्षता में गठित संयुक्त संसदीय समिति इस अध्ययन दौरे के दौरान उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों, राज्य प्रशासन, वित्तीय एवं शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षाविदों, राज्य बार परिषदों, संबंधित उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संघों, विभिन्न पेशेवर संगठनों तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करेगी। समिति के अध्ययन दौरे में विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक और सार्थक विचार विमर्श होने की अपेक्षा है। लखनऊ से मुमताज अली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: रियासती हुकूमत 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधे लगाएगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक मीटिंग में खसूसी हिदायत दी थी कि इस मुहिम को अवामी नुमाइंदों की मौजूदगी में आवाम की शिरकत के साथ मनाया जाए। इसको जहन में रखते हुए मरकजी और रियासती हुकूमतों के वज़रा मुख्तलिफ अज़ला में जाएंगे और पौधे लगाएंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में एक पेड़ माँ के नाम लगाएंगे, जबकि नायब वज़रा आला केशव प्रसाद मौर्य झांसी में और ब्रजेश पाठक लखनऊ में एक दरख्त लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर पंकज चौधरी भी लखनऊ में एक दरख्त लगाएंगे। रियासत के कई अज़ला में कल से वक्फे से बारिश हो रही है। कुछ अज़ला में मूसलाधार बारिश से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई हैं। लखनऊ, फर्रुखाबाद, मुजफ्फरनगर, संभल, नोएडा, हापुड़, अयोध्या, चित्रकूट, बिजनौर और बस्ती समेत कई अज़ला में कल हल्की से भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुईं।
3: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अपराजिता।

0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत कुछ ही देर में।
1: आज तो पार्टी चाहिए,
2: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी,
1: पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना।
6: टोल कर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं।
7: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
8: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
9: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
10: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
9: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
10: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
9: गाने के बोल,
10: गीतकार
9: और संगीतकार,
10: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
9: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
10: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
9: गाते
10: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
9: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

नारी जगत की सभी सखियों को रागिनी श्रीवास्तव का नमस्कार। बहनों, कहते हैं खुशहाल परिवार ही खुशहाल समाज की नींव होता है, और जब परिवार छोटा, स्वस्थ और शिक्षित होता है तो परिवार के हर सदस्य को आगे बढ़ने का अवसर भी मिलता है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आज हम नारी जगत कार्यक्रम में बात करेंगे छोटा परिवार बेहतर जीवन, साथ में जानेंगे परिवार नियोजन से जुड़े कुछ आम मिथक और सही तथ्य। इसके अलावा परिवार कल्याण कार्यक्रमों की उपयोगी जानकारी भी हम आपके साथ साझा करेंगे, और साथ में सुनहरे

गुनगुनाते गीतों की झनकार भी देंगे और इसको सुन के आप ज़रूर गुनगुनाएंगे। बहनों, हमारा कार्यक्रम सप्ताह के 5 दिन प्रस्तुत होता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार। तो हमसे जुड़ी रहिए इस कार्यक्रम में दोपहर 1:15 से 1:45 पर, और कार्यक्रम है हमारा नारी जगत। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस से। विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को बढ़ती आबादी, परिवार नियोजन, लैंगिक समानता और मातृ स्वास्थ्य जैसे गंभीर मुद्दों के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की गवर्निंग काउंसिलिंग द्वारा 1989 में की गई थी। इसे पहले मनाने की प्रेरणा 11 जुलाई 1987 को मिली थी, जिसे फाइन बिलियन डे कहा जाता है, क्योंकि इस दुनिया की आबादी 5 अरब का आंकड़ा पार कर गई थी। और बहनों, मुख्यतः ये बात इन विषयों पर ध्यान दिलाता है, लोगों को परिवार नियोजन के लाभों और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करना, तेजी से बढ़ती जनसंख्या का पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करना, महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और समान अधिकारों को बढ़ावा देना, इन्हीं सब बातों की जागरूकता बढ़ाने के लिए जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और ये तो रही जनसंख्या दिवस की बात। और बहनों, आज मौसम बहुत सुहाना है, तो आपके लिए भी पेश है ये सुहाने मौसम की सौगात।

बहनों, गीत तो आपको बहुत प्यारा लगा होगा। और अभी हम बात कर रहे थे परिवार के बारे में, तो इसी कड़ी में बात करते हैं छोटे परिवार के बारे में। बहनों, छोटा परिवार माता पिता और एक दो बच्चे इसलिए बेहतर माना जाता है क्योंकि ये बच्चों को बेहतर शिक्षा, माता पिता का पर्याप्त ध्यान और भावनात्मक जुड़ाव प्रदान करता है। सीमित सदस्यों के कारण परिवार का आर्थिक बोझ कम रहता है, जिससे जीवन स्तर ऊंचा उठता है और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। छोटे परिवार को सुखी और बेहतर मानने के ये कारण हैं। बहनों, जैसे कम बच्चे होने के कारण माता पिता प्रत्येक बच्चे को पर्याप्त समय और ध्यान दे सकते हैं, जिससे बच्चों का भावनात्मक और शैक्षणिक विकास बेहतर होता है। और छोटे परिवार में आय के साधन कम बच्चों में बंटते हैं, इससे माता पिता बच्चों को अच्छी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च आसानी से उठा सकते हैं। इसके अलावा बड़े परिवारों की तुलना में छोटे परिवार के सदस्यों के बीच टकराव, प्रतिस्पर्धा और मनमुटाव की संभावना कम होती है, जिससे घर का माहौल शांतिपूर्ण रहता है। और कम बच्चों में परवरिश में माता पिता दोनों की भागीदारी समान होती है, इसलिए महिलाओं को अपने कैरियर और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देने का अवसर अधिक मिलता है। इस और बहनों, परिवार के संसाधन सीमित न होने के कारण सभी बच्चों को समान अवसर और सुविधाएं मिलती हैं, जो बड़े परिवार के सभी बच्चों के लिए संभव नहीं है। तो बहनों, ये तो थी छोटे और बड़े परिवार की बात। तो अभी मैंने कहा ना, आज मौसम अच्छा और खुशनुमा बारिश का है, तो फिर से आपके लिए एक प्यारा सा गीत।

और बहनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं परिवार नियोजन के बारे में। परिवार नियोजन से जुड़े कई गलतफहमी और अंधविश्वास आज समाज में फैले हुए हैं। वैज्ञानिक और चिकित्सा तथ्यों के आधार पर इन मिथकों और सच को समझना हर जोड़े के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए हम बताते हैं कि सच और मिथक में क्या अंतर है। मिथक मतलब गर्भ निरोधक बांझपन का कारण बनते हैं, और सत्य ये है कि आधुनिक गर्भ निरोधक स्थायी रूप से प्रजनन क्षमता को नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे ही आप हार्मोनल गोलियों का या उपकरणों जैसे IUD का उपयोग बंद करते हैं, आपकी प्राकृतिक प्रजनन क्षमता वापस आ जाती है और आप गर्भधारण कर सकती हैं। दूसरा मिथक है, गर्भ निरोधक गोलियां लेने से हमेशा वजन बढ़ता है, और सत्य ये है कि वजन बढ़ने का डर मुख्य रूप से दशकों पुरानी उच्च खुराक वाली गोलियों से जुड़ा था। आधुनिक गर्भ निरोधक दवा

हैं बहुत कम हार्मोन वाली होती हैं और इनसे सभी का वजन नहीं बढ़ता। तीसरा मिथक है आपातकालीन गर्भ निरोधक। इसका सत्य है कि आपातकालीन गर्भ निरोधक जैसे आई पिल या प्लान बी गर्भावस्था को रोकते हैं। ओवेल्युएशन में देरी करके वे पहले से स्थापित गर्भावस्था को समाप्त नहीं करते। दूसरी ओर गर्भपात की गोलियां अबॉर्शन पिल्स स्थापित गर्भावस्था को समाप्त करती हैं। मिथक चौथा, परिवार नियोजन केवल महिलाओं की जिम्मेदारी है। और इसका सत्य यह है कि परिवार नियोजन महिला और पुरुष दोनों की समान जिम्मेदारी है। पुरुष नसबंदी के माध्यम से इसमें प्रभावी योगदान दे सकते हैं। मिथक पांचवा, गर्भ निरोधक यौन संचारित संक्रमणों से भी बचाते हैं। और सत्य यह है कि हार्मोनल गोलियां IUDS और नसबंदी अनचाहे गर्भ को रोकने में अत्यधिक प्रभावी है, लेकिन ये किसी भी यौन संचारित संक्रमण से सुरक्षा नहीं देते। तो बहनों, इन मिथक यानी अंधविश्वास से बचकर सही चीज़ का चुनाव करें और सही निर्णय लेके अपने परिवार को सुव्यवस्थित और खुशहाल बनाएं। बात परिवार की खुशहाली की होती है तो खुशहाली में तो एक गीत जरूरी होता है, तो पेश है आपके लिए।

बहनों, अब बात करते हैं परिवार कल्याण के महत्व का। तो बात परिवार की चल रही है तो परिवार कल्याण का महत्व तो बनता ही है, भला इसे कैसे हम छोड़ सकते हैं। तो बहनों, परिवार कल्याण कार्यक्रम 1951 से भारत सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य तेजी से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करना और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार करके परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य एवं विशेषताएं इस तरह हैं कि भाई, छोटे परिवार के मानदंडों को बढ़ावा देना और दो बच्चों के बीच उचित अंतर रखना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य जिसमें सुरक्षित प्रसव, टीकाकरण, स्तनपान को बढ़ावा देना और बच्चों में कुपोषण को रोकना, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजनन स्वास्थ्य, छोटे परिवार के लाभों और लड़कियों की शिक्षा के प्रति जागरूक करना। और बहनों, इतनी जानकारी के बाद तो अब एक और प्यारा सा गीत आप लोगों के लिए बनता ही है, तो पेश है ये गीत इसी पे।

बहनों, हमारा आज का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है, तो रागिनी श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
2: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
1: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
2: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
1: गाने के बोल,
2: गीतकार
1: और संगीतकार,
2: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
1: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
2: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
1: गाते
2: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
6: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
7: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
7: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
7: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
6: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार प्लास्टिक का

0: अगर सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाए, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
0: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। खेती किसानी कार्यक्रम में आज का विषय है समेकित खेती। वार्ताकार हैं डॉक्टर कुलदीप सिंह।
3: बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है, परंतु एक तरफ औद्योगिकीकरण, शहरीकरण एवं लगातार जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि के क्षेत्रफल में लगातार कमी होती जा रही है, वहीं दूसरी ओर बढ़ती हुई जनसंख्या के पोषण हेतु खाद्यान्न उत्पादन की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस मांग की पूर्ति के लिए यह नितांत आवश्यक है कि हमारे किसान भाई एक ऐसी कृषि प्रणाली अपनाएं जिसमें कम लागत पर अधिक उत्पादन हो, आमदनी साल भर होती रहे, ताकि बच्चों की पढ़ाई, शादी, स्वास्थ्य एवं सामाजिक रस्मों पर होने वाले खर्च को आसानी से कर सकें। इन सारी समस्याओं के निदान हेतु किसान भाइयों को समेकित कृषि प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है। समेकित कृषि प्रणाली खेती की एक ऐसी विधि है जिसमें फसल उत्पादन के साथ साथ अन्य विभिन्न उद्यम जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, रेशम पालन, मशरूम उत्पादन, कृषि वानिकी, सब्जियों की खेती, फूलों की खेती, कंपोस्ट उत्पादन, बायोगैस इत्यादि को जब एक दूसरे के साथ इस प्रकार समायोजित करते हैं कि वे एक दूसरे के पूरक हों, जैसे पशुओं के प्राप्त गोबर को कंपोस्ट बायोगैस बनाने में किया जाता है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए, कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए, उत्पादन लागत में कमी लाने में समेकित कृषि प्रणाली बहुत ही सहायक है। किसान भाइयों, समेकित खेती के उद्देश्य छोटे किसानों के लिए लाभदायक एवं अनुकूल समेकित कृषि मॉडल का विकास करना है, किसानों में सहभागिता का भाव जागृत करना, मृदा सुधार के साथ साथ जल की उर्वरता एवं भूमि की उर्वरता तथा ऊर्जा के प्रयोग की दक्षता को लगातार बढ़ाना है, प्रति इकाई उत्पादन के लागत को कम करना है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और शोध के कार्यक्रमों को लगातार बढ़ावा देना है। समेकित खेती में होने वाली जो विशेषताएं हैं उनके बारे में, समेकित प्रणाली एक दूसरे के घटक की आवश्यकता को पूरा करते रहते हैं, जिससे बहुत ही कम लागत में पूरे वर्ष भर उत्पादकता बढ़ती रहती है, सकल उत्पादन में वृद्धि होती है तथा लागत मूल्य कम हो जाता है, बाजार पर निर्भरता कम हो जाती है। पारंपरिक खेती की अपेक्षा वर्ष भर निरंतर रूप से आय होती रहती है। समेकित कृषि प्रणाली में विभिन्न घटकों के विवरण के बारे में, पशुपालन, इस घटक में किसान अपनी आय के हिसाब से निवेश कर सकते हैं। गाय भैंस के अलावा बकरी, भेड़ इत्यादि का भी पालन आसानी से किसान भाई कर सकते हैं। इस घटक से उत्पन्न गोबर, मूत्र मत्स्य पालन में बहुत ही सहायता करते हैं तथा मत्स्य पालन की लागत को कम करते हैं। गोबर का प्रयोग कंपोस्ट खाद एवं बायोगैस में भी करते हैं। मत्स्य पालन यह घटक समेकित कृषि प्रणाली का मुख्य घटक है। इसके लिए एक तालाब की आवश्यकता होती है और किसान भाई ये ध्यान देना चाहिए कि जो तालाब हो बहुत छोटा ना हो। सामान्यतः जो भूमि कम उपजाऊ हो उसका उपयोग तालाब बनाने में करना चाहिए। तालाब को चूने से उपचारित करवाने के बाद उसमें पानी भर दें। तालाब में किसान भाई तीन प्रकार की मछलियां पाल सकते हैं, पहली जो सतह पर रहती हैं, दूसरी जो मध्य जल में एवं तीसरी जो गहरे जल में रहती हैं। समेकित कृषि प्रणाली में मछली पालन लगभग कुल भूभाग का 10% क्षेत्रफल तालाब में उपयोग में लाया जा सकता है। मुर्गी पालन यह घटक वर्ष भर आमदनी का मुख्य स्रोत है। किसान भाई मुर्गी, बत्तख, बटेर इत्यादि का पालन कर सकते हैं। यह घटक मत्स्य पालन में बहुत ही सहयोगी भूमिका निभाता है।

0: तथा मत्स्य घटक की लागत को 25 से 40% तक कम कर देता है। फसल मौसम आधारित फसल जैसे धान, गेहूं, मक्का, बाजरा इत्यादि जिससे अनाज प्राप्त होते हैं, लगभग 10% से 40% क्षेत्रफल में धान, गेहूं, मक्का, गेहूं, सोयाबीन, मक्का, अरहर, सरसों, मक्चरी इत्यादि फसल प्रणाली में लगाकर मुनाफा कमाया जा सकता है एवं पशुपालन की लागत को भी यह कम कर देता है। चारा उत्पादन समेकित खेती मॉडल में यह सम्मिलित बड़े पशुओं को वर्ष भर हरे चारे की पूर्ति करने के लिए लगभग 20% क्षेत्रफल में बरसीम, जई, मक्का, बाजरा, चरी इत्यादि उगा सकते हैं, जिससे वर्ष भर बड़े पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता बनी रहती है। साग सब्जियां एवं बागवानी, इसके अंतर्गत सब्जियां, फल एवं फूलों की खेती की जा सकती है, जैसे टमाटर, बैंगन, परवल, मिर्च, अदरक, घिया, खीरा, भिंडी इत्यादि की बुआई कर सकते हैं। बाजार में सब्जियों की कीमत को ध्यान में रखते हुए उन्हें उचित समय पर लगाया जाता है। फलों की बात की जाए तो सबसे अच्छा उदाहरण केला एवं अमरूद है। इन फलों के अलावा कोई भी फल तथा औषधीय पौधों को भी किसान भाई चयनित कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन, मौन पालन जमीन के एक छोटे भूभाग पर सामान्यतः एक कोने में भी किया जा सकता है। मशरूम उत्पादन यह बहुत ही लाभकारी व्यवसाय है। अगर हम इसमें समेकित खेती में शामिल करें तो प्रबंधन पर आने वाली लागत को 50% तक कम किया जा सकता है, जिससे 2 गुने से लेकर 3 गुने तक अधिक लाभ कमाया जा सकता है। कंपोस्ट खाद का उत्पादन, किसान भाई गाय भैंस के गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाकर पशुपालन के घटक को और भी लाभकारी बना सकते हैं। छोटे छोटे कंपोस्ट यूनिट बनाकर उनमें केचुए की मदद से लाभकारी खाद बनाकर जिसका हम प्रयोग जैविक खेती में भी कर सकते हैं और या इसे महंगे दामों में बेचा जा सकता है। सौर ऊर्जा उत्पादन, खाली पड़े स्थान तथा पशु बाड़ों, कुक्कुट इकाई के ऊपर सौर ऊर्जा का प्लांट लगाकर बिजली के खर्च को बचा सकते हैं और अतिरिक्त बिजली होने पर इसे आसपास के घरों में बेचा जा सकता है, जिससे आमदनी हो सकती है। समेकित खेती में एक बार में किसान भाई सारा निवेश न करें, इसे अपनाने के लिए चरणबद्ध तरीके अपनाएं। सभी पशुओं की खरीदारी एक साथ न करें, तालाब का रोज निरीक्षण करें और समय समय पर तालाब की सफाई भी करवाते रहें। चारे की उपलब्धता बनी रहे इसके लिए मौसम के अनुसार चारे की फसल लगाएं। साग सब्जियां एवं फलदार पेड़ों का समय समय पर बदलते रहें। पशुओं के घर की साफ सफाई करते रहें। पशु चिकित्सक एवं कृषि विशेषज्ञ का समय समय पर सलाह लेते रहें। बाजार मूल्य के हिसाब से अपनी लागत का समय समय पर आकलन भी करते रहें। समेकित खेती आज के आधुनिक कृषि एवं पशुपालन की मांग है। बदलते परिवेश में लोगों को यह ध्यान में रखते हुए उचित प्रबंधन एवं चरणबद्ध तरीके की समेकित खेती की जाए तो यह निश्चित ही बहुत ही लाभकारी है। मत्स्य पालन, पशुपालन, कुक्कुट पालन, रेशम पालन, बागवानी, गोबर गैस उत्पादन, अपशिष्ट निस्तारण इत्यादि को एक साथ उचित अनुपात में शामिल करते हुए समेकित खेती को आधुनिक रूप दिया जा सकता है और अधिक से अधिक धनोत्पादन किया जा सकता है।
1: समेकित खेती, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर कुलदीप सिंह की वार्ता। इसी के साथ खेती किसानी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
2: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
3: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
2: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
3: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
2: गाने के बोल,
3: गीतकार
2: और संगीतकार
3: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
2: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
3: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
2: गाते गुनगुनाते
3: सुनिए सुबह 10:05 पर।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्स और FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे समाचार दिल्ली केंद्र से अंग्रेजी और हिंदी में।

0: At UNSC describes it as tool of war and terrorism. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall in Uttarakhand today. In FIFA World Cup, Spain to face Belgium in second quarter-final tonight. And in women's cricket, India to take on England in historic one-off test match at Lord's Cricket Ground in London this evening. The details of these stories and more log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की। इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई यह यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी।
3: Indian teams that came here 100 years ago.
2: 100 वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं, बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
4: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की

0: सफलता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा सीआरएसवी की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह की हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमेरिका तथा इजरायल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमेरिका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमेरिकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधीय उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण, एकीकरण, एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र, एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
2: Today, Bharat is marching confidently towards the vision set by our Honorable Prime Minister, a Viksit Bharat by 2047. National integration, cooperative federalism and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patel ji believed for a rich, diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
1: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
3: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनाव का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पंजी से महेश सोपड़े।
1: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है।

0: इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने शत प्रतिशत डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 1 महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
1: 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम 2 दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल है। कल भी जो है यही पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहां पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
0: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की भावना जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक कलाकार। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कलाकार और मैं हूं आपकी रेडियो हमसफर निधि वर्मा। आज हम जिस कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं ये तो हम आपको बताएंगे, इससे पहले हम आपको सुनवाएंगे एक बहुत ही प्यारा सा गीत और ये अंदाजा आप जरूर लगाइएगा कि आज हम किस कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं।

03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्स और FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। इस वक्त अपराह्न के 4 बज रहे हैं। हमारी आज की ये सभा यहीं समाप्त होती है। विविध भारती का कार्यक्रम FM 100.1 पर जारी रहेगा। शाम 5 बजे अपनी सायंकालीन सभा के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

यश घंटों वहां बैठकर लोगों और ट्रेनों की आवाजाही निहारा करता था, किंतु आज उसे लग रहा था कि जैसे सबकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, केवल उसकी ही रुक गई है।

इसी तरह उदास यश रोज वहाँ बैठा करता। एक दिन स्टेशन पर उसकी मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई। वो अपने हाथों से बने अचार और पापड़ बेचने दूसरे शहर जा रही थी। बातचीत में पता चला कि उनके पति का कई वर्ष पहले निधन हो गया था और उन्होंने अकेले ही अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उन्होंने यश को अपने हाथों से बने अचार भी चखाए और ये भी बताया कि किस प्रकार उन्होंने जीवन की हर कठिनाई का सामना करते हुए ये छोटा सा व्यवसाय खड़ा किया था। उनकी बातों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर एक अलग ही संतोष झलक रहा था। यश ये समझ ही नहीं पा रहा था कि जीवन में इतनी परेशानियां झेलने के बाद भी कोई इतना प्रसन्न और उत्साही कैसे रह सकता है। वो इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने की उद्घोषणा हुई। यश ने सोचा कि उनका भारी सामान होगा, इसलिए उनकी सहायता कर दे। जैसे ही वो सामान उठाने के लिए झुका, महिला ने मुस्कुराते हुए उसे रोक दिया और बोली, बेटा ये तो मेरा रोज का काम है, मैं इसे स्वयं संभाल लूंगी। ये सुनकर यश स्वयं को रोक न सका। उसने संकोच भरे स्वर में पूछा, माताजी, यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं, जीवन में इतनी कठिनाइयां आने के बाद भी आप इतनी प्रसन्न कैसे रहती हैं? क्या कभी आपका मन हार मान लेने का नहीं हुआ? यश के प्रश्न को सुनकर पहले तो महिला मुस्कुराई। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई और चेहरे पर वर्षों के संघर्ष से उपजा आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जीवन में मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं। अगर मैं हार मान जाती तो मेरे बच्चों का भविष्य भी हार मान जाता, इसलिए मैं चलती रही। और एक बात मैंने जीवन में और सीखी है, जब तक हम चलते रहते हैं जिंदगी भी चलती रहती है।

अपनी बात कहकर उन्होंने यश के सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और वो मुस्कुराते हुए अपनी ट्रेन की ओर बढ़ गईं। लेकिन उनके शब्द यश के मन में देर तक गूंजते रहे। जब तक हम चलते रहते हैं, जिंदगी भी चलती रहती है।

अगले दिन यश फिर उसी रेलवे स्टेशन की बेंच पर आकर बैठ गया। तभी एक मनमोहक धुन ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वो धुन स्टेशन के प्रथम श्रेणी विश्राम गृह से आ रही थी। सुरों में ऐसी मिठास थी कि कुछ क्षणों के लिए यश अपनी चिंताएं भूल गया और उस संगीत के स्रोत की ओर बढ़ चला। उनकी मधुर आवाज सुनकर अनेक यात्री मंत्रमुग्ध हो गए थे और आसपास खड़े थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कुछ क्षणों के लिए पूरे स्टेशन का वातावरण ही बदल गया हो। यात्रियों की भागदौड़, ट्रेनों का शोर और प्लेटफॉर्म की चहल पहल सब उस संगीत के सामने फीके पड़ गए।

संगीत थमा तब तक यश उस विश्राम गृह के कमरे के बाहर पहुंच चुका था। वो दरवाजे पर खड़ा होकर उस कलाकार को निहार रहा था। तभी भीतर से आवाज आई, कौन हूँ भाई, क्या मेरा खाना आ गया? अचानक आवाज सुनकर यश थोड़ा घबरा गया और वहाँ से जाने के लिए मुड़ा। तभी उस व्यक्ति ने फिर बड़े स्नेह से कहा, अरे रुकिए, क्या मेरा खाना आ गया है? तभी यश को एहसास हुआ कि वो व्यक्ति दृष्टिहीन था। ये जानकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा और उसे देखता रहा। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए फिर पूछा, खाना आ गया? उसकी खुशबू तो नहीं आ रही। इस बार यश ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं, मैं खाना लेकर

ही आया हूँ। दरअसल आपकी धुन सुनकर यहाँ चला आया था। मैं तो बस एक राहगीर हूँ। ये सुनकर वह व्यक्ति कुछ क्षण शांत रहा, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। अच्छा, तो संगीत तुम्हें यहाँ तक खींच लाया, उसने हंसते हुए कहा। फिर उसने यश को पास बैठने का इशारा किया। हाँ बैठो, मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ। मेरे साथ ही भोजन लेने गए हैं, उनके आने में भी थोड़ा समय लगेगा, तब तक तुम ही मेरा साथ दे दो। यश बिना कुछ कहे उनके पास चुपचाप बैठ गया। उसे पता नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में होने वाली ये बातचीत उसके जीवन को एक नया दृष्टिकोण देने वाली थी। बातचीत के दौरान यश को महसूस हुआ कि सामने बैठा व्यक्ति न केवल एक असाधारण संगीतकार था, बल्कि एक अत्यंत विनम्र और सकारात्मक सोच वाला इंसान भी था। उसकी बातों में आत्मीयता थी और चेहरे पर एक अजीब सा संतोष। यश के मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था कि इतना प्रतिभाशाली और अच्छा इंसान होने के बावजूद भगवान ने इसके साथ ऐसा क्यों किया होगा। ये प्रश्न उसके मन में लगातार उठता रहा। अंततः वो स्वयं को रोक न सका और संकोच भरे स्वर में बोला, यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। संगीतकार हल्के से मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल पूछो बेटा। यश कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आप इतने अच्छे इंसान हैं, इतना सुंदर संगीत रचते हैं, फिर भी भगवान ने आपसे आपकी दृष्टि छीन ली। क्या आपको कभी अपनी किस्मत से शिकायत नहीं हुई। यश के प्रश्न के बाद कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। संगीतकार के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी, मानो उसने ये प्रश्न पहले भी अनेक बार सुना हो। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, पहले बहुत होती थी, मैं हमेशा यही सोचता था कि भगवान ने मुझसे मेरी आंखें क्यों छीन ली। लेकिन एक दिन मेरे गुरु ने मुझसे पूछा, क्या हुआ। मैंने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपसे क्या छिपा है, आंखों के बिना अब ये सब कैसे संभव होगा। मेरी बात सुनकर गुरुजी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, बताओ संगीत के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है। मैं कुछ समझ नहीं पाया। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उत्तर दिया, संगीत का वाद्य यंत्र। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं। फिर मैंने कहा, आवाज। उन्होंने फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं। मैंने तीसरी बार उत्तर दिया, संगीत की शिक्षा। इस बार भी उन्होंने कहा, नहीं। संगीतकार कुछ क्षणों के लिए रुक गया, मानो वो उस दिन को फिर से जी रहा हो। फिर गुरुजी ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा ये तो बाद में सोचेंगे कि संगीत के लिए सबसे जरूरी क्या है, पहले ये बताओ कि जिन चीजों को तुम सबसे आवश्यक मानते हो क्या वे अभी भी तुम्हारे पास हैं। मैंने बिना सोचे उत्तर दिया, हाँ वे सब तो मेरे पास ही हैं गुरुजी। ये सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तो फिर शुरुआत कर दो। कुछ पलों तक तो मैं उनकी बात का अर्थ समझ ही नहीं पाया, लेकिन जब मैंने अपने ही दिए हुए उत्तरों के बारे में सोचना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी दृष्टि चली गई थी, पर मेरे वाद्य यंत्र मेरे पास थे, मेरी आवाज मेरे पास थी और वर्षों की साधना से प्राप्त संगीत की शिक्षा भी मेरे पास थी। मैं उस एक चीज के शोक में डूबा हुआ था जो मुझसे छिन गई थी, और उन अनमोल चीजों को भूल चुका था जो अभी भी मेरे पास थी। ये कहते हुए संगीतकार के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। उसने आगे कहा, उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी कमी को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। ये कहकर उसने हारमोनियम पर एक मधुर सुर छेड़ा और कहा, जब मैंने अपनी कमी के बजाय अपनी क्षमता पर ध्यान देना शुरू किया, तभी मेरी जिंदगी बदल गई। और वो गाने लगा।

तभी उनके साथी भोजन लेकर कमरे में आ गए। बातचीत का सिलसिला वहीं थम गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मेरा इंतजार अब खत्म हुआ। फिर उन्होंने अपने साथी का परिचय करवाया और कहा, बेटा जीवन में खुश रहने का सबसे आसान तरीका है, जो नहीं है उसकी चिंता कम करो और जो है उसका सदुपयोग अधिक करो। यश जाने लगा तो उनके साथी ने मुस्कुराते हुए बताया, शायद आपको पता नहीं है लेकिन आप जिनसे बात कर रहे हैं वे देश के एक प्रतिष्ठित संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। इनके शिष्यों में कई प्रसिद्ध गायक और संगीतकार शामिल हैं। ये सुनकर यश कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। जिस व्यक्ति ने अपनी दृष्टि खो दी थी उसने हार मानने की बजाय अपने जीवन को इस तरह संवारा था कि आज वो न जाने कितने लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। यश वहां से लौट तो आया लेकिन उस सज्जन के शब्द और उनकी मुस्कान देर तक उसके मन में गूंजती रही। उसके मन में विचारों का एक नया द्वार खुल चुका था। उसे लगने लगा कि शायद समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उन्हें अपनी सोच में बना लेते हैं। विचार बदल रहे थे लेकिन निराशा ने अब भी यश का साथ नहीं छोड़ा था। एक सप्ताह बाद स्टेशन की उसी बेंच पर एक सैनिक आकर यश के बगल में बैठ गया। यश के चेहरे पर छाई निराशा को देखकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है जवान, इतने हताश क्यों दिखाई दे रहे हो? यश ने अपनी नौकरी छूटने से लेकर भविष्य की चिंताओं तक सारी बातें उसे बता दी। सैनिक शांत भाव से उसकी बातें सुनता रहा, फिर वो बस मुस्कुरा दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। यश ने जब ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो हाथ असली नहीं बल्कि कृत्रिम था। वो सैनिक लगभग उसी की उम्र का था। सैनिक ने धीमे स्वर में कहा, ये हाथ मैंने सीमा पर एक युद्ध के दौरान खो दिया था। कुछ पल रुककर वो आगे बोला, उस दिन दुश्मन लगातार हमला कर रहा था, मेरे कई साथी घायल हो चुके थे। मैंने अपना एक हाथ खो दिया और असहाय होकर अपने साथियों को संघर्ष करते हुए देख रहा था। उस समय मुझे लग रहा था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी आंखों में उस युद्ध की यादें छलकने लगी थीं। तभी मेरी नजर अपने एक साथी पर पड़ी। उसने अपनी एक आंख खो दी थी, खून बह रहा था, फिर भी उसने कपड़े से घाव बांधा और अपनी दूसरी आंख से दुश्मन पर नजर टिकाए रखा। वो लगातार जवाबी हमला कर रहा था। सैनिक ने गहरी सांस ली और कहा, उस जांबाज को देखकर मेरे मन में एक विचार आया, यदि वो एक आंख खोने के बाद भी लड़ सकता है तो मेरे पास तो अभी एक हाथ बाकी है। मैंने बिना देर किए दूसरे हाथ से बंदूक उठाई। उसे संभालना आसान नहीं था लेकिन मैंने हार नहीं मानी। किसी तरह उसे सहारा देकर निशाना साधा और दुश्मन पर हमला शुरू कर दिया।

उस पल की बात याद करते हुए सैनिक के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान उभर आई। उस दिन हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, बल्कि अपनी परिस्थितियों के सामने हार ना मानने का संकल्प भी जीत लिया था। फिर उसने यश की ओर देखते हुए कहा, जवान, इंसान तब नहीं हारता जब वो कुछ खो देता है, वो तब हारता है जब जो बचा है उसकी कीमत भूल जाता है। मैंने एक हाथ खोया था, लेकिन दूसरा हाथ अभी भी मेरे साथ था। तुम्हारी नौकरी चली गई है, तुम्हारी योग्यता और हिम्मत नहीं। उस रात यश बहुत देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हो चुका था कि वो अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान बना चुका था। सैनिक ने युद्ध में अपना एक हाथ गवाया था, अपने कई साथियों को खोया था, फिर भी उनके चेहरे पर संतोष था। उन माताजी ने भी जीवन की असंख्य कठिनाइयों का सामना किया था, फिर भी उनके चेहरे की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी थी, और उस दृष्टिहीन संगीतकार ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, फिर भी उसके जीवन में आशा और उसके सुरों में उत्साह का प्रकाश आज भी विद्यमान था। इन तीनों ने कुछ न कुछ खोया था, फिर भी वे जीवन से नाराज नहीं थे। शायद समस्या मेरी परिस्थितियों में नहीं, मेरी सोच में थी। जीवन में मुश्किलें सबके हिस्से में आती हैं। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग उनसे हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उनसे सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही यश ने ये सोचा, उसने ठान लिया कि उसे कुछ करना है। अगले दिन जब यश स्टेशन पर बैठा लोगों को देख

यश ने अपनी बची हुई थोड़ी सी पूंजी इकट्ठा की और स्टेशन के बाहर एक छोटी सी मेज और कुर्सी लगाकर सूचना एवं सहायता केंद्र शुरू कर दिया। उसने एक साधारण सा बोर्ड बनवाया जिस पर लिखा था यात्री सहायता केंद्र, सही जानकारी, उचित मार्गदर्शन। शुरुआत आसान नहीं थी, कई दिनों तक मुश्किल से कोई ग्राहक आता। कभी कभी पूरे दिन की कमाई इतनी भी नहीं होती कि उसका खर्च निकल सके। कई लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया, नौकरी नहीं मिली तो अब ये काम शुरू कर दिया। कुछ लोग ताना मारते, लेकिन इस बार यश पहले वाला यश नहीं था। उसने हार मानने के बजाय धैर्य रखना सीखा था। वो मुस्कुरा कर लोगों की सहायता करता रहता। फिर धीरे धीरे यात्रियों को उसकी ईमानदारी और विनम्र व्यवहार पर भरोसा होने लगा। जो लोग उसकी मदद से संतुष्ट होते वो दूसरों को भी उसके बारे में बताते। कुछ ही महीनों में उसका छोटा सा सहायता केंद्र यात्रियों के लिए भरोसे का नाम बन गया। समय बीतता गया, यश ने अपने काम का विस्तार किया। उसने होटल बुकिंग, स्थानीय परिवहन, पर्यटन मार्गदर्शन और आपातकालीन सहायता जैसी सेवाएं भी शुरू कर दी। बढ़ते काम के साथ उसने कुछ बेरोजगार युवाओं को भी अपने साथ जोड़ लिया। कुछ वर्षों बाद वही छोटा सा सहायता केंद्र एक सफल ट्रैवल और यात्री सेवा संस्थान में बदल चुका था। वहां कई लोगों को रोजगार मिल रहा था और प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों की सहायता की जा रही थी। एक दिन यश अपने कार्यालय की खिड़की से बाहर देख रहा था और दूर उसे वही रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा था और उसके सामने रखी वही पुरानी बेंच भी। अनायास ही उसके कदम वहां की ओर बढ़ गए और जाकर खड़ा हो गया। उसने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान उभर आई। वही बेंच जो कभी उसकी निराशा की साक्षी थी, अब उसके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक बन चुकी थी। उसे एहसास हुआ यदि उस दिन वो निराशा में डूबकर हार मान लेता तो शायद ये सब कभी संभव नहीं हो पाता। उस दिन स्टेशन पर एक ट्रेन सीटी बजाती हुई आगे बढ़ गई। यश ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी भी इसी ट्रेन की तरह फिर से चल पड़ी है।

यश कुछ देर तक उसी बेंच के सामने खड़ा रहा। उसके मन में अतीत की अनगिनत यादें उमड़ पड़ी, वृद्धा की मुस्कान, संगीतकार के शब्द और सैनिक का साहस। तभी एक युवक आकर उसी बेंच पर बैठ गया। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। वो बार बार अपना सिर झुकाकर गहरी सांसें ले रहा था। यश ने उसे कुछ देर तक देखा। उसे लगा मानो वो वर्षों पहले के स्वयं को ही देख रहा हो। यश धीरे धीरे उसके पास गया और बेंच पर उसके बगल में बैठ गया। कुछ पल तक दोनों के बीच मौन छाया रहा। फिर यश ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है जवान, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? युवक ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसके भीतर दबा हुआ दर्द शब्दों में निकलने लगा। उसने अपनी असफलताओं, बेरोजगारी और भविष्य की चिंताओं के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसकी बातें सुनकर यश की आंखों के सामने अपना ही अतीत घूम गया। वो हल्का से मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें तीन लोगों की कहानी सुनाता हूँ। और फिर उसने उस वृद्धा, उस दृष्टिहीन संगीतकार और उस सैनिक की कहानी सुनानी शुरू कर दी, जिन्होंने कभी

उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। कहानी समाप्त होते होते युवक के चेहरे पर भी आशा की एक हल्की सी किरण दिखाई देने लगी। यश बेंच से उठा और मुस्कुराते हुए बोला, याद रखना दोस्त, जीवन में अंधेरा स्थायी नहीं होता, बस चलते रहना पड़ता है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। कुछ कदम चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो युवक अब पहले की तरह निराश नहीं लग रहा था। उस पल यश को एहसास हुआ कि वर्षों पहले जिन तीन अनजान लोगों ने उसकी मदद की थी, आज वही कहानी किसी और के जीवन में आशा जगा रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, शायद सकारात्मक सोच की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जल उठता है।

जीवन में सभी कुछ ना कुछ खोते ही हैं, परंतु जो बचता है उसी से नया भविष्य बनाना हमारे हाथ में है। सकारात्मक सोच परिस्थितियों को नहीं बदलती, लेकिन परिस्थितियों का सामना करने की हमारी शक्ति को बदल देती है, और यही शक्ति हमें सफलता तक पहुंचाती है।

0: तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि टुडे इन हिस्ट्री में क्या हुआ था। 10 जुलाई 2015 को माहिष्मति साम्राज्य के दो भाइयों अमरेंद्र बाहुबली और भल्लाल देव के बीच सिंहासन के संघर्ष और पारिवारिक प्रेम विश्वासघात की एक महाकाव्य गाथा है। इस दिन की सबसे बड़ी घटना ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग का साल 2015 में रिलीज होना है, जिसने भारतीय सिनेमा के पैमाने और कहानी कहने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया।
1: आज ही के दिन मोहिनी 1962 में दुनिया का पहला सक्रिय संचार उपग्रह यानी सैटेलाइट टेलस्टार 1 लॉन्च हुआ। अटलांटिक महासागर के पार पहला टेलीविजन लाइव प्रसारण हुआ।
0: सोचने वाली बात यह है कि हमें सिर्फ बनाते वक्त नहीं

0: सोचना कि हम क्या कंटेंट बना रहे हैं, बल्कि चुनते वक्त भी चुनना है कि हमें क्या देखने जा रहे हैं, क्योंकि उससे हमारे मस्तिष्क, हमारे व्यवहार, हमारी भावनाओं पर बहुत असर पड़ता है।
1: मोहिनी, मुझे लगता है आज कितनी ही वेब सीरीज है जिनके प्रोडक्शन डायरेक्शन में सालों लग जाते हैं, क्योंकि अब निर्माता भी समझ गए हैं कि जरूरी है क्वालिटी सीरीज बनाना, व्यूअर्स को अब क्वालिटी चाहिए।
0: अभी ना जाओ छोड़ कर के, दिल अभी भरा नहीं।
1: मैं पृथ्वीराज,
0: और मैं मोहिनी, अब लेते हैं आपसे विदा। आप
1: नमस्ते।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी का युववाणी कार्यक्रम 4:15 से 5 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

नमस्कार। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज पर तथा FM 14.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने वाले हैं। हम हाजिर हैं अपने सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। सभा का आरंभ समाचारों के साथ। समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य पुरावशेषों की सफल वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पुरावशेषों की वापसी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में

0: महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहर को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां भारत लौट चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता शाखाएं बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा का निर्माण किया गया है और अगले चरण में इसके अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद भवन परिसर में आगामी मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। संसद का सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के दौरान निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को लागू करने के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी वाले रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। दिल्ली मंडल के रेवाड़ी दिल्ली और शाकुरबस्ती भटिंडा खंडों पर कवच प्रणाली का चौथा चरण लागू किया जाएगा। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र लोकोमोटिव के तय समय पर होने वाले सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल के लिए जिम्मेदार होता है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि छत्तीसगढ़ के बालोद जिले ने पिछले एक वर्ष में वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 285,000 जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचना स्थापित की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कैच द रेन अभियान की गति को बनाए रखने के आह्वान किया था, जिसके बाद बालोद जिला जल संचयन जन भागीदारी के दूसरे चरण के अंतर्गत सामुदायिक जल संरक्षण का एक उल्लेखनीय उदाहरण बनकर उभरा है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने प्रस्तावित 8 वनों से कम 20% वृक्षारोपण औषधीय पौधों की प्रजातियों के लिए समर्पित करने या 2 वनों को समर्पित औषधीय वनों के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ विशेष श्रृंखला के अंतर्गत पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ परिचर्चा प्रसारित होगी। ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड पर आज शाम 5:10 पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुना जा सकता है। इसका पुनर्प्रसारण कल सुबह 9:10 पर होगा। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 101 रन बना लिए हैं। यह पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान महिला टेस्ट मैच की मेजबानी कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में आज ब्रिटेन के आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज़ेरेव और यानिक सिनर का मुकाबला नोवाक जोकोविच से होगा। कल कैरोलिना मखोवा और लिंडा नुस्कोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय।
2: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं देशगान।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा।
5: टोल कर ही नहीं,
4: किनकर भी मिलता है,
5: बच्चे भी खरीद सकते हैं।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
6: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
7: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

देश गान आप सुन रहे थे आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से, मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज पर तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ न्यूज आने IR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोरखपुर के प्रसारण। शाम के 5:10 होने वाले हैं। आप सुनेंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: आकाशवाणी है प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ आज विशेष मेहमान है आशीष अग्रवाल जी, जो हम सबको राह दिखाते हैं कि अपनी जीवन शैली को सरल बनाकर ही कितना फायदा हमें हो सकता है और हमारी प्रकृति को भी कितना फायदा हो सकता है। सो आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में। आशीष जी, सर्वप्रथम जो आपका एक मुहिम है उससे ही शुरुआत करते हैं, सस्टेनेबिलिटी माइंडफुल कंजम्पशन अ वे टू मिनिमलिस्टिक लिविंग। ये जो आपका तथ्य है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप अगर हमें सरल शब्दों में समझा सकें जो हमारे श्रोता सभी समझ पाए कि क्या है ये कॉन्सेप्ट और इसके पीछे की मूल सोच क्या है।
2: तो मैं इसके वाई से शुरू करता हूँ कि ये पूरा मुहिम शुरू क्यों हुआ। तो आज के डेट में समाज में तीन तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पर्सनल लेवल पे अगर देखा जाए तो तनाव बहुत बढ़ गया है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। सोशल लेवल पे देखा जाए तो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे देश में सिविक सेंस की थोड़ी कमी है। और अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज, वातावरण का जो बदलाव हो रहा है वो बहुत ही तेजी से हमारे सामने आ रहा है। तो ब्रिज फॉर चेंज एक मिशन पर है जहाँ वो यस आई एम माइंडफुल मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें माइंडफुल कंजम्पशन को एज अ प्रोफाउंड टूल हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जिससे हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी। और हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी, हमारे एक्शंस इंप्रूव होंगे, तो आसपास होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप मिटिगेट होना शुरू हो जाएंगे
1: जी।
2: जिसमें हम लोग कहते हैं युवाओं से कि छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं, जहां पॉसिबल हो वहां एक्शंस लेने हैं, जितना पॉसिबल हो उतना करना है। तो इसको हम लोग टर्म देते हैं PRR, कि क्या हम लोग कभी पॉज लें, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रिफ्लेक्ट करें और जिस भी पैरामीटर्स पे, चाहे वो फूड है, फैशन है, टेक्नोलॉजी है, रिलेशन है, प्रोफेशन है, किसी भी आयाम पे जहां उनको लगता है रेगुलेट कर सकते हैं उस चीज को रेगुलेट करें। और ये एफर्टलेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो वही 2 दिन 4 दिन 10 दिन करेंगे, उसके बाद फिर हमारा मोटिवेशन कहीं ना कहीं लैक करने लगता है। तो छोटे छोटे स्टेप्स, टाइनी एक्शंस कैन ब्रिंग जाइगेंटिक रिपल्स, तो वो हमारा ध्येय है। और सरल जीवन जहां आपको सही लगता है और उसमें छोटे छोटे स्टेप्स, तो यही पूरा मूवमेंट का थॉट प्रोसेस है।
1: आशीष जी, आप जो बात कर रहे हैं माइंडफुल कंजम्पशन की, वही धुरी है आपके पूरे जो मुहिम की। उसको और गहराई से समझने के लिए अगर हम ये आपसे जानना चाहें कि माइंडलेस कंजम्पशन क्या होती है, जिसको काउंटर करने के लिए आप ये जो माइंडफुल कंजम्पशन लेके आए हैं, ताकि हम बेहतर समझ पाए कि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है।
2: जो माइंडलेस कंजम्पशन की बात करें तो जो नीड वर्सेस वांट जो बोलते हैं
1: जी,
2: कि हम लोग सबको कहीं ना कहीं पता है कि हमारी नीड तो इतनी ही है, लेकिन कई बार हमारी चाहते होती हैं, पीयर प्रेशर होता है, समाज का स्टेटस होता है, उस चीज को अकॉम्प्लिश करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज ऐसी खरीदते हैं, बहुत सारी चीज ऐसी इस्तेमाल करते हैं, एक लाइफस्टाइल ऐसा फॉलो करते हैं जिसकी शायद हमें उतनी जरूरत नहीं हो। और उस जर्नी में फिर बहुत सारे अलग अलग माध्यम से हम लोग ओवर कंजम्पशन करते हैं, अनरियलिस्टिक एम्बिशंस सामने रखते हैं। तो उस चीज को ही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस अनरियलिस्टिक जो हमारे एम्बिशन है उसको कैसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, थोड़ा सा बेहतर और मोर रिस्पॉन्सिबल लाइफस्टाइल की तरफ युवाओं का, हमारे जो भी ऑडियंस है उनका ध्यान लाया जाए।
1: तो आपने जो नीड्स और वांट्स की बात करी कि एक तो है हमारी जरूरत और एक है हमारी ख्वाहिश,
2: बिल्कुल,
1: ये नीड और वांट का जो अंतर है, क्या आप हमें और गहराई से इसको समझा सकते हैं?
2: ये बहुत मुश्किल है। नीड का तो हमारा मानना है कि सॉफ्टवेयर ही हमारा वैसा डेवलप है कि हमें पता है कि ये हमारी जरूरत है, कब वो जरूरत वांट हो रही है उतना हमें अंदर से आवाज आ जाती है। लेकिन चूंकि हम लोग इतने कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में रहते हैं, इतने फास्ट इवॉल्विंग सोसाइटी में, कि वांट का कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है और वहीं पे फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम इसलिए शुरू होती है कि सपोज मैं आज आशीष एक्स पर हूँ, मुझे वहाँ 5x तक पहुँचना है, जस्ट बिकॉज मेरे पीयर ग्रुप में कोई वहाँ पर है, तो मैं ये नहीं देखता कि मेरे स्किल्स क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, राइट टाइम राइट प्लेस पे मैं हूँ कि नहीं। मैं बस भागता रहता हूँ कि मुझे 5x तक पहुँचना है, क्योंकि मेरे चाचा का बेटा या XYZ इन माई फैमिली इज एट दैट पॉइंट। तो उसमें दो चीजें होती है। पहला तो होता है कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन सही समय पे सही जगह पे नहीं था, तो मैं x से 3x तक पहुंचा। तो सोसाइटी इतनी कॉम्पिटिटिव है, इतनी शॉर्ट साइटेड है कि वो उस चीज के लिए मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगी 3 गुना आगे बढ़ा, बट उस चीज के लिए रेडिक्यूल करेगी कि देखो अभी भी वो इंसान तुमसे कितना आगे है। तो वो जो स्यूडो कमी है ना, जो समाज बताता है कि तुम में कुछ कमी है, तुम इतने स्मार्ट नहीं हो, तुम इतने स्किल्ड नहीं हो, उस कमी को छुपाने के लिए हम लोग माइंडलेस कंजम्पशन करते हैं, उस भड़ास को दबाने के लिए। किसी का वो भड़ास, फ्रस्ट्रेशन, वो वॉइड खाने पे निकलता है, किसी का फैशन पे निकलता है, किसी का रिलेशन पे निकलता है, किसी का दिन भर इंस्टाग्राम और ये सब पे निकलता है। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं x से 5x पहुंच भी गया, राइट टाइम राइट प्लेस, बहुत मेहनत की, सही लोग मिले, तो भी अगर मैं 5x पे पहुंचा तो ये समाज मुझे शांति वाली जिंदगी, एक सिंपल जिंदगी जीने के लिए प्रेरित नहीं करता है। वो बोलता है अब

0: तुम सिक्स फिगर सैलरी कमा रहे हो तो तुम्हें इस तरह का मोबाइल, इस तरह का घर, इस तरह के वेकेशंस होने चाहिए। तो हमने जो रिसर्च किया उसमें यही पाया कि वेदर वी आर सो कॉल्ड सक्सेसफुल और नॉट, दोनों ही केस में मैं माइंडलेस कंजम्पशन करता हूँ बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर,
1: जी
0: और वही सारे स्ट्रेस की, वही सारे नॉइस की जड़ है। इसीलिए माइंडफुल कंजम्पशन के प्रति हम लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं डेटा की मदद से।
1: जी, तो कैसा डेटा, किस तरह से फायदा, जब आप कह रहे हैं कि माइंडफुल कंजम्पशन होती है, जितनी आपको जरूरत है उसके अनुसार आप कंज्यूम करते हैं, तो इसका जैसा आप कह रहे हैं कि आपको खुद को फायदा होता है, क्लटर कम हो रहा है,
0: बिल्कुल
1: आप एक पीसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, उसके अलावा पर्यावरण को भी इसका लाभ होता है, जो आप डेटा की बात कर रहे हैं उसको आप हमें थोड़ा समझा सकते हैं?
0: तो कोई भी चीज जब हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी यूज होती है किसी भी फॉर्म में, और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ एमिशंस, कुछ पॉल्यूशन हुआ, उस पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के मेजरमेंट में नापा जाता है। जैसे हम लोग होते हैं दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, वजन को किलोग्राम्स में नापते हैं, वैसे पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, कार्बन फुटप्रिंट जो बोलते हैं हम लोग। तो कोई भी काम करते हैं उसका कुछ ना कुछ कार्बन फुटप्रिंट है। तो ये एक अच्छी बात भी है और मुश्किल भी है कि हर चीज का इमिशन हो रहा है तो मैं कंट्रोल कैसे करूं, लेकिन हर चीज का इमिशन हो रहा है तो वहां अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग चूंकि सैकड़ों चीजें अपने दिन में कंज्यूम करते हैं, तो जहां जहां हमें पॉसिबिलिटी लगती है हम लोग अगर उसको थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा इनडायरेक्ट पॉल्यूशन बचाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम में से सब लोग भारत में है तो चाय पीना पसंद करते हैं, तो अगर मैं हर दिन सुबह 1 कप चाय पीता हूँ तो हफ्ते में मैंने 7 कप चाय पिए, तो डेटा बताता है, जैसे उसका सोर्स है आवर वर्ल्ड इन डेटा, तो डेटा बताता है कि 1 लीटर दूध बनाने के लिए 3 किलोग्राम कार्बन इमिशन होता है, और अगर 1 लीटर दूध में 10 कप चाय बनते हैं तो इसका मतलब हर कप का करीब 250 ग्राम हुआ। तो हम लोग जब इंगेज करते हैं अपने ऑडियंस के साथ तो ये नहीं बोलते कि आप चाय पीना बंद कर दो, हम लोग बोलते हैं कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो हफ्ते में 1 कप कम कर सकते हैं, तो अगर हफ्ते में 1 कप भी कम किया गया तो साल में 250 ग्राम इंटू 52 करीब 12-13 किलो कार्बन एमिशंस बच जाए। तो ये सिर्फ एक पैरामीटर है, ऐसे हजारों चीज हम लोग अपने अंदर ले रहे हैं, तो जहां जहां हम लोग कंफर्टेबल हैं वहां अगर थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा एमिशंस बचाया जा सकता है।
1: इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में जो शुरू किया था मिशन लाइफ,
0: बिल्कुल
1: लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो उसमें भी उन्होंने हर एक नागरिक की सक्रिय भागीदारी को एक महत्वपूर्ण बताया था, जो पर्यावरण संरक्षण है उस दिशा में। तो वहां पर आप हमें बताएं कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं, किन किन आदतों से हम हमारा जो भी वातावरण है उसको हम ज्यादा शुद्ध करने में या उसके संरक्षण में हम अपना योगदान कर सकते हैं।
0: तो इसको शेयर करने के लिए मैं 5 R का यूज करूंगा, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकिल। तो 5 R में सबसे पहले वही रिड्यूस आता है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो कितना भी पेड़ लगाएं, कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, एमिशंस कम नहीं होंगे तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफस्टाइल को, जीवन शैली को थोड़ा बदलना ही पड़ेगा, जो कि मिशन लाइफ का भी देह है कि अपने लाइफस्टाइल को एनवायरमेंट से कैसे अलाइन किया जाए। तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में जैसे यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का डेटा बताता है कि हर साल करीब 50 किलो खाना हर भारतीय वेस्ट करता है ऑन एन एवरेज। तो फूड वेस्ट एक ऐसी चीज है जो हमें इमीडिएटली रोक देनी चाहिए अगर अभी तक हम लोग के जीवन शैली में वो चीज नहीं आई है। तो वैसे ही एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स का कार्बन फुटप्रिंट बहुत होता है, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो मीट बेस्ड चीजें हो, जो भी चीज एनिमल से आ रही है, तो उसको हम लोग थोड़ा रेगुलेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे ही एयर ट्रेवल का कार्बन इमिशन बहुत होता है, तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में एक आम नागरिक जो करता है तो फूड वेस्ट ना करे और एयर ट्रेवल कम हो। रिड्यूस के बाद अगर रिप्लेस की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सा है, जैसे कपड़े का थैला यूज करें, तो आमतौर पर हर दिन अगर हम लोग सब्जी वब्जी लेने जा रहे हैं तो 3 प्लास्टिक 4 प्लास्टिक यूज हो जाता है, तो सिर्फ एक बैग यूज करेंगे तो साल भर में अगर 3 × 365 भी करें तो 1000 प्लास्टिक की बैग्स सिर्फ और सिर्फ सब्जी के मायने में कम हो सकती हैं। और वही वो प्लास्टिक भी जैसा हम लोग बोलते हैं ना, सिंगल यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो रिप्लेस के कॉन्टेक्स्ट में प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, आजकल टिश्यू पेपर को यूज करने का बहुत फैशन चला है तो टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रूमाल वगैरह से, जो हमारे घर में हमारे माता पिता और दादा दादी हमेशा ही करते आए हैं। तो इससे बहुत सिंपल सा एक्ट है लेकिन बहुत सारा पानी, बहुत सारा कचरा, बहुत सारा कार्बन इमिशन बच सकता है। रिपेयर, आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो गई है कि रिपेयर कराने का उतना टाइम नहीं है, तो अगर मैं 2 घंटे जाऊंगा रिपेयर कराने फिर वापस लेने आऊंगा, इतने में तो मैं नया सामान मंगा लूंगा, लेकिन रियल कॉस्ट हम लोग नहीं पे करते किसी भी चीज का। अगर इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी जोड़ा जाए, वेस्ट मैनेजमेंट का भी कॉस्ट जोड़ा जाए, तो किसी भी प्रोडक्ट का रियल कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो जहां जहां पॉसिबल हो रिपेयर कराएं। इन सब में जब सब हो गया, रिड्यूस हो गया, रिप्लेस हो गया, रिपेयर हो गया, तब जो बचा है उसको रिसाइकलिंग के लिए दें।
1: आशीष जी, युवाओं की अगर हम बात करें, आप युवाओं को प्रेरित करने पर काफी बल देते हैं। अब युवा महत्वाकांक्षी भी होते हैं और वो अपने जो स्वप्न है उनको भी बहुत गहराई से देखते हैं, गंभीरता से देखते हैं।

0: हैं और एक आधुनिक जीवन शैली भी वो जीना चाहते हैं, तो ऐसे में आप कैसे उनको कन्विंस करते हैं कि आप अगर साधारण अपनी जीवन शैली को करेंगे, मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे, तो उससे आपकी प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी बल्कि आपका जीवन बेहतर होगा। तो ये बताइए कितना चैलेंजिंग है और कैसे आप इसको अचीव करते हैं जो युवा है उनको इस दिशा में ले जाने की ओर।
1: थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बट इनफ रिपोर्ट्स आर देयर इन मार्केट जहाँ पे ये पता है कि हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है, जिसको अब अपर मिडिल क्लास बोलते हैं, उसके ऊपर फिर जो इलीट क्लास, एफ्लुएंट क्लास होता है, तो आज के डेट में जितनी भी मॉडर्न एज बीमारियां हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ओवरवेट हो, लोनलीनेस हो, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, ये सब उसी एफ्लुएंट क्लास में आ रहा है। तो इसलिए बहुत एविडेंट है कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल गेन करने से हमारा लाइफ की क्वालिटी ओवरऑल नहीं बढ़ सकती। उसके लिए अपने लिए समय निकालना जरूरी है, अपनों के लिए समय निकालना जरूरी है, सेहत पे ध्यान देना जरूरी है, रिलेशंस पे ध्यान देना जरूरी है। तो इस पूरे मुहिम में, इस पूरे मिशन में वही थॉट प्रोसेस होता है कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि बहुत जरूरी है, लेकिन अगर सादगी के साथ वो समृद्धि लाई जाए तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। और वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो अगर सादगी भरा जीवन रहेगा आपका, माइंडफुल अगर आप रहोगे जीवन में, तो आपका ही ये जो तनाव है, ये जो स्ट्रेस है, कम होगा, आपकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग इंप्रूव होगी, और आपकी अगर वेलबींग इंप्रूव हो रही है तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, जिससे आपका काम और बढ़ेगा। तो ग्रो करने के अगेंस्ट नहीं है कोई भी थॉट प्रोसेस, बट वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशंस। तो वही थॉट प्रोसेस है। और गांधी जी ने भी बोला है कि कैपिटल में बुराई नहीं है, उसका यूज किस तरीके से करते हैं वो डिफाइन करता है वेदर इट इज एनेबल और ब्लेसिंग। तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि और सादगी को साथ में लेके चलने की कोशिश करो।
0: कोई ऐसे डेटा पॉइंट्स भी हैं जिनसे उनको समझाते हैं कि कैसे आप एक इंडिविजुअल लेवल पर अगर माइंडफुल कंजम्पशन करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को मिनिमलाइज करते हैं जरूरत के अनुसार, तो किस तरह का फायदा होता है एनवायरनमेंट को, ये थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं एग्जांपल्स देके।
1: आज के यूथ बहुत इंस्पायर्ड हैं, बहुत मोटिवेटेड हैं, बहुत ब्लेस्ड भी हैं, और हमने देखा है कि दे वांट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, बस उन्हें थोड़ा सा नज की जरूरत है, थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है। तो अगर रैशनैलिटी बेस्ड बातें की जाए, लॉजिकल तरीके से कोई चीज पुट की जाए, तो उनका सपोर्ट काफी मिलता है। तो ये जो माइंडफुल लिविंग है, ये तो हमारे एंसेस्टर्स हमेशा से करते आए, कोई नई चीज नहीं, हमारे सभ्यता में, हमारे ट्रेडिशंस में है। बस डेटा की मदद से जब हम लोग पुट करते हैं उनके सामने, कीप इट, तो उनका इमोशंस एक्शन की जर्नी है बहुत इजी हो जाती है। अगर अभी कपड़े की बात करें, तो एक कंपनी का भी रिसेंटली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आया था, उसमें उनका कहना था कि जो वो एक जींस बनाते हैं उसके लाइफ साइकिल में, मतलब डेनिम बनाना, स्टिच करना, शॉप पे ले जाना, फिर हमारे जैसे लोग उसको परचेज किए, यूज किए, धोए, यूज किए, धोए और फाइनली फेंके, तो उस पूरे जीवन काल में एक जींस के करीब 3800 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि आपके प्रेजेंट लाइफस्टाइल जैसा भी हो बहुत बढ़िया है, क्या उसमें छोटा सा बदलाव ला सकते हैं।
0: सो आशीष जी, एक जो प्रोजेक्ट 333 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, शायद आपने उसको खुद अपनाया भी है, तो आप बता सकते हैं अपने अनुभव से कि किस तरह से ये बेनिफिट करता है, न सिर्फ पर्सनली जो भी उसको अपना रहा है, जो भी अडॉप्ट कर रहा है उस व्यक्ति के लिए वो लाभदायक है, हमारे पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है।
1: जब हम लोगों ने ये मूवमेंट शुरू किया 2021 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद उसकी शेयरिंग करें। तो उसमें जब रिसर्च किए तो ये एक इनिशिएटिव आया, प्रोजेक्ट 333, जहां पे पार्टिसिपेंट को इनवाइट किया जाता है कि वो 33 पर्सनल आइटम्स के साथ 3 महीने की जिंदगी जिए। वो पर्सनल आइटम्स मतलब जो आप अपने साथ कैरी करते हैं, जिसके बिना आपका जीवन नहीं हो सकता, आपका किचन वेयर, आपका सोफा, वो नहीं, आपका खुद का 33 आइटम्स।
0: कुछ अगर आप एग्जांपल दे सकते हैं।
1: जैसे मेरे कपड़े हुए, मेरे स्टेशनरी हुई, मेरा सैनिटरी किट हुआ, मेरा ट्रेवल बैग, लैपटॉप वगैरह हुआ, तो जो चीज अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो अपने साथ रखूंगा। तो वो चैलेंज हम लोगों ने लिया 2021 में, और आज 5 साल हो गए मैं उसी 33 सामान के साथ जिंदगी जीता हूँ। तो उससे बहुत वही लिब्रेशन हुआ, क्योंकि मुझे सोचना नहीं है कि मुझे क्या पहनना है, बहुत सारी चीज कैरी करने की जरूरत नहीं है, घर में बहुत सारा स्पेस होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा रिसोर्स मुझे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज, अगर अगेन 33 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट पुटिंग सम फिगर इज इम्पॉर्टेंट। तो जिसको जो इम्पॉर्टेंट लगता है, जिसको जो कम्फर्टेबल लगता है, वो एक दायरा बना ले कि मुझे 50 चीजें या 55 चीजें के साथ 3 महीना 6 महीना ट्राई करना है, तो वो एक जो फ्रीडम है उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो ये सारे तरीके होते हैं अपने क्लटर को कम करने का, जिससे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उस पर फोकस कर सके। आजकल ऑनलाइन ऑर्डर्स हमारे लाइफ का बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गई है, तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जितना भी कर रहे हैं उसमें क्या थोड़ा कम किया जा सकता है। तो 2 तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स आजकल हो रहे हैं, एक तो ग्रोसरीज वगैरह मंगाने में, तो उसमें भी अगर हम लोग बल्क में मंगाते हैं या खुद जाके ले आते हैं, तो अननेसेसरी जो पैकेजिंग है वो कम होगी
0: जी।
1: और उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट के दृष्टिकोण से, वेस्ट

0: मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से वो है पैकेज फूड, उसको कहीं ना कहीं कम करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें फिर जब सामान आता है तो वन टाइम प्लास्टिक, वन टाइम कटलरी, और उसमें फिर जो वो खाना लगा हुआ होता है उसको वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत होती है उसको रिसाइकिल करने में। तो क्या हम लोग इस तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स जो करते हैं उसको थोड़ा सा कम करें, एलिमिनेट कर पाएं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट शुरुआत तो करें, तो ये भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है।
1: तो इसी से जुड़ा है मेरा अगला सवाल कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें, एवरेज एक आम नागरिक कैसे ये पहचान करे कि क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, माइंडफुल कंजम्पशन के दायरे में आती है, और कौन सी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है जो माइंडलेस कंजम्पशन के दायरे में आती है और जिसको हम हटा सकते हैं।
0: तो इसमें दो तीन प्रश्न हमेशा मिलेंगे आपको जब भी हम लोग परचेज करने की सोच रहे हैं या शॉपिंग करने का या किसी भी तरीके का कंजम्पशन करने की सोच रहे हैं। तो क्या हमें इसकी जरूरत है इमिडिएटली, अगर मैं इसको 3 महीने बाद भी लूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो जो 3 महीने का गैप है या 2 वीक का गैप है उससे आपको इमिडिएटली पता चल जाएगा कि ये रियल में नीड है या वॉन्ट है। तो एक बार नीड वर्सेज वॉन्ट की चीज हो गई, तो जैसा बोलते हैं ना कि गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए, वैसे ही कंजम्पशन के कॉन्टेक्स्ट में भी इम्पल्स शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। तो जब हमें महसूस हो रहा है इम्पल्स है तो बोले कि चलो 2 घंटे बाद ही कर लेंगे, तो फिर हम लोग जजमेंट लेने के लिए बेहतर पोजीशन में होंगे कि ये सही में नीड है या वॉन्ट है। और फिर नीड है कि वॉन्ट है फिर वो क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि आज इसको मैं नहीं खरीदता हूँ या खरीदती हूँ तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, 2 हफ्ते बाद खरीदूंगा, तो फिर 2 हफ्ते कम से कम वो चीज टली, तो 2 हफ्ते तक तो कम से कम वो इमिशन इनडायरेक्टली बचे।
1: जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, वही वॉन्ट में ये भी आ जाता है कि आप अपने आसपास वाले जो लोग हैं उनके साथ कंपीट करना चाह
0: बिल्कुल
1: रहे हैं, उनके पास कोई चीज है तो आप भी वो ले लेते हैं हालांकि आपको उसकी जरूरत नहीं है।
0: बिल्कुल
1: तो ये भी बहुत सारे पहलू हैं वॉन्ट के,
0: बिल्कुल
1: जिसमें शायद अगर हम थोड़ा सा कहें कि हार्श वर्ड है लेकिन उसको लालच या ग्रीड भी कह सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो उससे हमें बचना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल ग्रीड का तो कोई एंड ही नहीं होता ना, देयर इज इनफ रिसोर्सेज फॉर नीड बट नॉट फॉर ग्रीड, वो तो हमने सुना ही है। और उसका वो रेस का एक स्पाइरल है, वो कभी खत्म नहीं होगा, और उससे स्ट्रेस ही होना है। जो पहले मैंने एक बार शेयर किया एक्स से 3x और 5x की बात, वो वही चीज है। तो हमें देखना है कि हमारी जर्नी क्या है, क्योंकि हम लोग सबकी ये जर्नी अपनी अपनी है, और हमारे कैनवास पे जिस चीज की जहां जरूरत है उस पे अगर फोकस करेंगे तो बहुत लाइफ सिंप्लीफाइड रहेगी और बहुत ही हेल्दी लाइफ जी पाएंगे हम लोग,
1: हेल्दी लाइफ भी जी पाएंगे। और शायद ये भी है कि आपका जो फिजिकल स्पेस जब फ्री होता है तो आपका मेंटल स्पेस भी फ्री होता है, आपको कम चीजों का ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो ऐसे में हम अपनी हॉबीज का या अपने रिलेशनशिप्स को ज्यादा टाइम दे सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनको ज्यादा टाइम दे सकते हैं। आपका क्या अनुभव रहा है?
0: 100% मैम। तो अभी हम लोग क्या है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज का जो लाइफस्टाइल है उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट इज ऑलवेज गुड, लेकिन उसी में डेटा भी बताता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ही बहुत ज्यादा लोनलीनेस है, वहां के बच्चों में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। तो हम लोग इतने स्मार्ट हैं कि वी नीड टू टेक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, तो हमारी जो अच्छी चीजें हैं उसको बनाकर वेस्ट की जो अच्छी चीजें हैं उसको इनग्रेन करनी है। तो बोलते हैं ना मॉडर्निटी और सभ्यता को मिलाने की जरूरत है।
1: तो जो एक सादगी वाला जीवन शैली है जिसे आप मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल कहते हैं, उसको लेकर अलग अलग धारणाएं हैं सबके बीच। सो आप हमें बताएं कि प्रमुख गलत फहमियां क्या हैं मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल को लेकर, और उनको दूर करना कितना इंपॉर्टेंट होता है जब आप युवाओं को कन्विंस करना चाहते हैं इस राह की ओर बढ़ने की तरफ।
0: तो जब भी हम लोग माइंड और सस्टेनेबल लिविंग की बात करते हैं ना, तो आम तौर पे ये धारणा बनी है कि हमें बहुत रिस्ट्रिक्टिव लाइफस्टाइल के लिए बोला जाएगा
1: जी।
0: बोला जाएगा ये मत करो वो मत करो, होता है ना साधु बन के हिमालय पे चले जाओ। तो उस कारण से क्या होता है कि लोग इस लाइफस्टाइल को, इस जीवन शैली को ट्राई नहीं करने चाहते, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन महसूस होता है शुरुआत में। तो ये जो मिथ है उसको हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि माइंडफुल होने के लिए डे 1 पे छोटे छोटे एक्शन लेने की जरूरत है, और वो छोटे छोटे एक्शन किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, इतनी सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, फूड, फैशन, ट्रेवल, टेक्नोलॉजी, किसी भी मायने में अगर आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रेगुलेट करती हैं तो आपकी वेलबींग बढ़ेगी, वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो उससे आपका प्रोफेशनल ग्रोथ होगा, वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी पर्सनल जर्नी, पर्सनल रिलेशंस इंप्रूव होंगे तो आपका पर्सनल ग्रोथ होगा। तो उस चीज को बताना कई बार होता है कि डे 1 पे हम लोग बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं, तो वो हम लोग कहते हैं कि मत कीजिए, और किसी भी चीज में वो हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि हमें अगर कुछ 6 महीने बाद कोई चीज अचीव करनी है तो हमें वी हैव टू ब्रेक डाउन दैट टारगेट, उस टारगेट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना जरूरी है। तो माइंडफुल लिविंग में भी वैसा ही है, एक छोटे सी चीज से शुरुआत करते हैं और वो चीज भी आपको डिसाइड करनी है। तो देयर इज नो फिक्स गाइडलाइन कि अगर आप एक्स करते हो तो आप माइंडफुल हो, अगर आप वाई करते हो तो माइंडफुल नहीं हो। ये एक्स और वाई हर इंडिविजुअल अपने लिए डिसाइड करे
1: जी,
0: कि वो सैकड़ों चीजें कंज्यूम कर रहा है उसमें कहां वो किस चीज को रेगुलेट कर सकता है, और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफस्टाइल, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग पीस, क्योंकि लाइफस्टाइल और पीस से कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो अगेन वो सस्टेनेबल नहीं होगा।
1: हमारे जो श्रोता है

0: ट्रेन ले लिया तो एयर ट्रैवल का बहुत ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट होता है।
1: यस,
0: वैसे ये टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज हर इंसान, चाहे वो युवा हो चाहे वो बड़े लोग हो, दिन भर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी से हमारा मिलना होता ही है, चाहे वो काम के कॉन्टेक्स्ट में हो या वो लेजर एक्टिविटीज के कॉन्टेक्स्ट में हो। तो डेटा बताती है कि एक आम हिंदुस्तानी करीब 3 घंटे रोज सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है। काम पे तो जो हम लोग करते हैं वो करते ही हैं, तो उस 3 घंटे को घटा के 2 घंटे भी किया जाए तो उसका भी बहुत बड़ा इमिशन है। तो अगर 1 घंटे भी कम किया जाए तो साल भर में 365 घंटे हमने स्ट्रीमिंग कम की तो उसका बहुत बड़ा इमिशन बचेगा। सिमिलरली जो वर्किंग लोग हैं हमारे मेल्स में, हम लोग बहुत सारे लोग को मैंने देखा है इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, तो वो अनरीड मेल क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो किसी कंपनी के सर्वर में सेव है, तभी तो आपके लिए वो जब आप खोलते हैं वहां अनरीड दिखाता है। तो हर मेल का 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम इमिशन है, कितना बड़ा मेल है, उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है। तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे इमिशंस बच सकते हैं। तो जो भी पहलू है हमारी जिंदगी का, किसी भी चीज को काम करने में चूंकि एमिशंस हो रहे हैं तो किसी भी चीज को में हम लोग थोड़ा माइंडफुलनेस लाते हैं तो एमिशन बचेंगे, चाहे वो फूड हो, फैशन हो, ट्रैवल हो, टेक्नोलॉजी हो।
1: कुछ और एग्जांपल्स भी आप बताना चाहेंगे?
0: तो जैसे IIT बॉम्बे के एक सर है सोलंकी सर, तो उनका बहुत सुंदर सा एक इनिशिएटिव है वाह का, रिंकल्स अच्छे हैं। तो उनका कहना है कि हफ्ते में एक दिन अगर हम लोग बिना आयरन किया हुआ कपड़ा पहने तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आयरनिंग का एमिशन बहुत है, 150 ग्राम, 200 ग्राम एक कपड़े को आयरन करने में एमिशन होता है। एनर्जी हमने यूज की बिजली को, बिजली उत्पन्न करने में जो इमिशन हुआ,
1: हाँ,
0: तो कार्बन इमिशन वैसे कैलकुलेट हुआ कि हमने डायरेक्ट इसके लिए तो बिजली यूज की
1: जी।
0: लेकिन ये बिजली को पहुंचाने में क्या इमिशन हुआ वो मेजर होता है। तो अगर एक कुर्ते में मैंने 100 ग्राम यूज किया एग्जांपल के लिए, तो 52 हफ्ते में मैं सिर्फ 52 कपड़े कम करूंगा तो 5.5 किलो इमिशन हमने कम किए। तो जहां पे भी पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो वो करने की जरूरत है। और वो जरूरत इसलिए कि कई बार हमें लगता है इस छोटे से एक्ट से बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आएगा, लेकिन 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग छोटा छोटा ही बदलाव लाएंगे तो कलेक्टिवली बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। और हर देश का चूंकि वर्ल्ड को एक कमिटमेंट है एमिशंस को लेके, तो उस कमिटमेंट में बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है वो।
1: एक तरह से आप कह रहे हैं कि हम सबके पास ये शक्ति है कि हम योगदान दें, जो हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करना चाहते हैं, एमिशंस कम करना चाहते हैं। एक और पहलू जिस पर हम आपकी राय चाहेंगे कि पिछले कुछ समय में किस तरह के बदलाव आए हैं, किस तरह के नवाचार आए हैं जो आपको प्रमुख लगते हैं, जिनसे ये उम्मीद जगती है कि हम सही दिशा में प्रगति कर रहे हैं।
0: सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये इंटरव्यू ही है कि इतने बड़े स्केल पे इतने सारे लोगों को आप बुला रहे हैं और इस पे चर्चा कर रहे हैं। देश की बात करें मिशन लाइफ के बारे में, ग्लोबल लेवल पे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17 गोल 2030 तक के लिए जो है, तो 17 में से 3 गोल, गोल नंबर 3, 12 एंड 13 सीधे सीधे जो हम लोग बातें कर रहे हैं उससे अलाइंड है। क्लाइमेट एक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, एंड गोल नंबर 3 इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो संयुक्त राष्ट्र मतलब पूरे विश्व ने भी इस चीज को समझा है कि वेलबींग और माइंडफुल लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज में आजकल ESG के ऊपर बहुत फोकस है कि उनकी सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, उनके जो ऑपरेशंस हैं वो एनवायरनमेंट से अलाइंड होने चाहिए। ई एनवायरनमेंट, एस सोशल एंड जी इज गवर्नेंस, तो इन तीनों ही मामले में उनको अलाइन होना चाहिए। तो उस पर बहुत सारा काम हो रहा है, हर कंपनीज पे फोकस करे कि उनके एमिशंस को वो लोग कैसे कम कर सके। सेम चीज अगर कॉलेजेस की बात की जाए तो कॉलेजेस में भी आज बहुत सारी रैंकिंग में होता है ना, गवर्नमेंट रैंकिंग देती है कि आपका ए है, ए प्लस है, बी है, तो उस रैंकिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है कि आपके कैंपस में क्या सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो इंसान के लेवल पे, इंस्टीट्यूशन के लेवल पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स पूरे देश में, पूरे विश्व में हो रहे हैं।
1: आशीष जी, जो भी युवा चाहें कि हम एक लॉन्ग लास्टिंग प्रभाव छोड़ें एनवायरनमेंट पर, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, अपनी जीवन शैली को साधारण करके खुद भी ज्यादा खुश हो, डीक्लटरिंग जैसा आप कह रहे हैं कि जब डीक्लटरिंग होती है तो फिजिकल स्पेस क्रिएट हो रही है, मेंटल स्पेस क्रिएट हो रही है, आप और चीजों के बारे में सोच सकते हैं, जो चीज जरूरी है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, तो इस पूरी जर्नी में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के यूथ को कि किस तरह के वो एक दृष्टिकोण अपनाएं, माइंडसेट अपनाएं, या कौन से ऐसे प्रमुख बदलाव लाएं ताकि वो बहुत ही सक्रिय भागीदार बने इस पूरी यात्रा में, इस पूरे मुहिम में?
0: तो इम्पॉर्टेंट बस वो है कि वी हैव टू डू आवर बिट, क्योंकि उस चीज को इनसिग्निफिकेंट हम लोग समझने की गलती नहीं कर सकते। या इस चीज को अगर मैं ऐसे प्रेजेंट करूं कि जब तक हर इंसान अपनी भागीदारी नहीं करेगा तब तक कोई भी पॉलिसी अपना जो डिजायर्ड इम्पैक्ट है वो नहीं ला पाएगी, क्योंकि पॉलिसी को धरातल में सक्सेस या अनसक्सेसफुल जनता करती है, इसलिए हमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत है। किस मायने में कर सकते हैं? तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जहां भी उस इंसान को, मुझे

0: मेरा पर्पस अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, किसी एक्स वाई जेड का अलग हो सकता है। अपनी अपनी जर्नी को मैं पॉज करें, रिफ्लेक्ट करें, और जहाँ लगता है कि हाँ ये चीज़ थोड़ी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को इम्प्रूव करें। जैसे मुझे मालूम है मुझे 2 किलो वज़न कम करना है, तो मेरा फोकस वेट पे होगा, मेरा फोकस थोड़ा एक्सरसाइज करने पे होगा। किसी को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है मोबाइल पे, तो उसका फोकस डिजिटल डिटॉक्स पे होगा। किसी को लगता है कि उसको बहुत इंपल्सिव आदत है वो शॉपिंग करने की। तो अपने हर अलग अलग इंसान का अलग अलग फोकस हो सकता है, और उसका जज वो खुद ही होगा। तो यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको ये ही करने की ज़रूरत है। जो भी आपको सही लगता है वो कीजिए, लेकिन करना ज़रूरी है। जब तक वो नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने जो रिसर्च किया था उसमें यही पाया कि इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज, बीइंग द चेंज वाला कंपोनेंट कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो हम लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन होने में थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। तो अभी भारत जिस स्टेज में है, हमें बदलाव होने की भी बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है।
1: सो आशीष जी, आप जो इस राह पर चले हैं, माइंडफुल कंजम्पशन को बढ़ावा देने की राह पर, आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा आपका अनुभव रहा जिसने आपको प्रेरित किया?
0: तो मैम, मैंने इरमा के बाद साबरमती गांधी आश्रम अहमदाबाद में पर्यावरण मित्र नाम की एक संस्था स्टैब्लिश की, जो कागज बिनने वाली बहनों के साथ काम करता है। तो इट इज ए कोऑपरेटिव ऑफ रैग पिकिंग सिस्टर्स। तो वो इनिशिएटिव अभी भी चल रहा है, 12 साल हो गए। लेकिन 2014 से 2020 की जर्नी में दो चीज बहुत सामने आई, बार बार आई, कि हमारे जो यूथ है, हमारे सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के अर्बन यूथ प्रिविलेज्ड सेक्शन में जो है, वो बहुत ज्यादा समय कम्युनिटी को नहीं दे पा रहे। वो आते हैं एज एन इंटर्न, अपना 2 वीक 4 वीक रहते हैं, चले जाते हैं। तो वो एक सवाल था कि सब कुछ है जिंदगी में, फिर भी गिव बैक क्यों नहीं कर पा रहे। और दूसरा सवाल था, 2020 की बात है ये, कि 75 साल हो गए आजादी को, लेकिन हम लोग अभी तक वो भारत क्यों नहीं बना पाए जिसको कल्पना हम लोग करते हैं, डिजायर्ड इम्पैक्ट क्यों नहीं आ पाया। तो 2021 में 15 महीने की एक यात्रा की मैंने, प्रोजेक्ट मंथन, जहां 2500 घंटे हम लोगों ने इन्वेस्ट किए 95 ऑर्गेनाइजेशंस विजिट करने में, जहां 8 अलग अलग डोमेन के लोगों से हम लोग मिले, किसान से, हाउसवाइफ से, वर्किंग प्रोफेशनल से, आईएएस, आईपीएस, एमएलए, सोशल चेंज मेकर, सब से ये समझने की कोशिश की कि ये जो इम्पैक्ट है उनके दृष्टिकोण में उनके काम का क्या रहा। तो उस पूरे 15 महीने की जो जर्नी थी उसका निचोड़ यही निकला, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज वी समटाइम्स फॉरगेट टू बी द चेंज। तो माइंडफुल लिविंग, माइंडफुल कंजम्पशन, सादगी भरा जीवन है उसका एक सार बन के निकला, कि ये जो चीज है वो इस दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हम लोग सब लोग बी द चेंज भी हो पाएंगे, और सादगी भरे जीवन से तनाव भी कम होगा। और इसीलिए फिर इस पूरे मूवमेंट को हम लोगों ने लॉन्च किया, और इस पे फिर ये थोड़ा सा समय लिया कि ये बातें अगर युवाओं तक पहुंचानी है तो उनकी भाषा में पहुंचानी होगी। तो वहां पे फिर डेटा बेस्ड अप्रोच हम लोगों ने लिया कि कैसे डेटा के माध्यम से, एक्सपीरियंशियल गेम्स के माध्यम से ये सारी बातों को सामने रखा जाए। तो यहां से शुरुआत की, और एक नंबर अपने आप को इंस्पायर करने के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ये नंबर लिया कि 10 लाख लोगों तक ये बात 2030 तक पहुंचानी है। तो इसीलिए ब्रिज फॉर चेंज उस मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जहां पे ये बातें हम लोग बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, इंटरैक्टिव तरीके से, गेम्स के तरीके से युवाओं तक पहुंचा सके।
1: आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस गहन बातचीत के लिए, और हमें बताने के लिए कि सादा जीवन शैली सभी के लिए कितनी फायदेमंद है, हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और हम सब उसमें अपना अपना योगदान करें, ये कितना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी सोनू सूद। आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्स पर तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: एहसास।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: पंचों जय हिंद। हाँ भैया, देखा नारा लगल और अपन बैठकी शुरू भइल।
4: हाँ भैया, बैठकी शुरू भइल और सबसे अपन पंच भाई लोग भी अपने कार्यक्रम के सुने लें। हाँ। और उनके ये उम्मीद रहला कि यह कार्यक्रम के माध्यम से कुछ नई जानकारी मिली, कुछ नई योजना के बारे में जानकारी मिली, सरकार के जो कल्याणकारी योजना बा ओकरे बारे में जानकारी मिली। भैया, हमन के आज चर्चा करे एक बार तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन। भैया, तकनीकी शिक्षा जोन है वो बहुत जरूरी है अगर ओके लेवल जा शिक्षा के क्षेत्र में, और अध्यापक लोग अगर अपने विद्यार्थियों के भी तकनीकी शिक्षा दी हैं तो उनके कौशल उन्नयन हो। भैया
3: बिल्कुल सही कहला भैया, और देखा कहल भी जाला कि अगर तकनीकी शिक्षा के बात करल जा तो एकरे माध्यम से जन तू बात कहला कौशल उन्नयन, एकर अर्थ ये हवे कि सैद्धांतिक ज्ञान के साथे साथे व्यवहारिक और आधुनिक व्यवहारिक ज्ञान विज्ञान के प्रशिक्षण देवल, जैसे शिक्षा के माध्यम से शिक्षा और रोजगार के बीच के जौन खाई बा वो कम होके। एक बात और भैया, कहल भी जाला कि शिक्षित समाज ही स्वस्थ समाज के निर्माण करेला। व्यक्ति जब शिक्षित होखेला तो वो अपन का अच्छा बा का बुरा बा ओके बेहतर तरीका से समझेला और ओके समझ बूझ के ऊपर ठीक ठाक से कार्य करेला, और शिक्षित भइला पर अपने साथे साथे अपने परिवार और अपने आसपास के लोगन के भी समाज के भी शिक्षित करेला, जैसे खुद के साथे साथे समाज के भी विकास होखेला, नतीजा स्वस्थ समाज के निर्माण होला। ऐसे में भैया जो बात कहला कि तकनीकी शिक्षा, तो तकनीकी शिक्षा के द्वारा रोजगार के अवसर में तो वृद्धि होबे करेला, साथे साथे व्यवहारिक ज्ञान और उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षित करल जाला, जैसे ये पता चल जाला कि असल कार्यस्थल पर काम कैसे होखेला। कहे से भैया, जौन चीज़ किताब से ना ही आदमी सीख पावेला वो यहाँ जा कर के यह माध्यम से कौशल उन्नयन के माध्यम से सीखेला। अपने देश में कौशल उन्नयन के खातिर केंद्र सरकार भी कई योजना चला रहल बा, जिनमें कौशल भारत मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसन कार्यक्रम भी शामिल बा।
4: भैया देखा, अमन के बातचीत तो होते रही लेकिन पहले पंच भाई लोगन के एक गो झलकी सुनवा देवल जा तमाशा।
5: पापा, ओ पापा, ओहो, आपको तो अखबार पढ़ने की सुबह कुछ आता ही नहीं।
6: क्या बात है रमोला बेटी, तुम आज अपनी अम्मा के सुर में क्यों बोल रही
5: हो? आज संडे है कि नहीं?
6: अरे संडे ही तो अखबार पढ़ने का दिन होता है बेटी।
5: हाँ हाँ, बाकी दिन तो रामायण महाभारत पढ़ते हो ना?
6: समझ में नहीं आता रमोला की अम्मा कि तुमको मेरे अखबार पढ़ने से जलन क्यों होती है। देश विदेश की खबरें पढ़ता हूँ।
5: ओफो, आप लोग फिर लड़ने लगे पापा। देखिए, आपने पिछले हफ्ते सिनेमा चलने का वायदा किया था या नहीं?
6: सिनेमा? हाँ,
5: तो क्या नहीं चलिएगा?
6: चलूंगा क्यों नहीं बेटी, भला तेरी बात मैंने कभी काटी है? ये तो तुम्हारी अम्मा है जो हर बात तरकारी की तरह काटती रहती है। देखा देखा मेरी बात पे कैसे भैंस की तरह हुंकारी मार रही है तुम्हारी अम्मा। अरे पूर्वजन्म के संस्कार कभी जाते हैं
5: क्या? पापा पापा जल्दी करिए, नहीं तो चक्रवर्ती जी आ जाएंगे अपने साले को फोन करने। पापा बड़ी अच्छी फिल्म लगी है, चलिए ना।
6: पहले अपनी अम्मा को तो मना ले।
5: अम्मा? अम्मा को आप ही मनाइए ना पापा, मैं तब तक आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। हाँ

0: ए जी सुनो जी,
1: क्या है?
0: पिक्चर चलोगी जी?
1: मुझे नहीं देखनी अंग्रेजी फिल्म।
0: अरे वैसी फिल्म नहीं है भाई,
1: फिर?
0: अरे अच्छी फिल्म है, तुम चलो तो सही।
1: अच्छा, लेकिन कान खोलकर तुम अच्छी तरीके से सुन लो। यदि चलना हो तो भाई कोई भगवान भगवान जी वाली फिल्म चलो, तब तो हम
0: अरे
1: चलें।
0: वो तो तुम पड़ोस वाली बरमाइन जी के टेलीविजन पर हर इतवार को देखती ही हो।
1: देखो, हम कह देते हैं कुछ भी हो, हम तो वही फिल्म देखेंगे।
0: ठीक है, न रमोला की पसंद न तुम्हारी, मैं आज तुम दोनों को अपनी पसंद की एक महान एक्शन सोशल फिल्म दिखाऊंगा।
1: अरे तो जाओ जहन्नुम में, मैं नहीं देखूंगी। हाँ
0: तुम्हारी अम्मा की वजह से मुझे अपना हर फैसला बदलना पड़ता है। इनकी जिद है कि ये तुम्हारी नहीं अपनी पसंद की फिल्म देखेंगी, तो मेरी भी जिद है कि मैं इनकी नहीं अपनी पसंद की देखूंगा। बस
1: देखिए पापा, आप लोगों के झगड़े में कभी भी मेरी कोई बात पूरी नहीं होती।
0: ठीक है, हम तीनों का टेस्ट अलग अलग है ना, लेकिन समय हम तीनों के पास एक ही है। ऐसी हालत में मैं तीन अलग अलग पर्चियों में तीनों के टेस्ट की फिल्मों के नाम अलग अलग लिख देता हूं। जिस फिल्म की पर्ची पहले निकल आएगी वही चला जाएगा। क्यों, ठीक है ना?
1: ठीक है, लेकिन पर्ची मैं ही निकालूंगी।
2: नहीं, मैं निकालूंगी।
1: नहीं, मैं
0: मैं
1: निकाल नहीं
0: बाप
1: मैं निकालूंगी।
0: हूं, मैं बाप हूं, पर्ची मैं निकालूंगा।
2: हे भगवान, आप पर्ची निकालने पर भी झगड़ा। अच्छा पापा, पहले मैं तीन अलग अलग पर्चियों पर तीनों के नाम अलग अलग लिख देती हूँ। उसमें जिसका नाम पहले निकलेगा, सिनेमा वाली पर्ची पहले वही उठाएगा। क्यों पापा? क्यों माँ? ठीक
0: ठीक
2: है,
0: है,
2: लीजिए। अब मैंने तीनों पर्चियां मोड़कर मिला दी। अब इसमें से एक पर्ची, हाँ एक पर्ची उठाई तो पापा।
0: उठाता हूं। अरे ये तो तेरे नाम की पर्ची है रबुला।
2: वेरी गुड, यानी सिनेमा वाली पर्ची मैं उठाऊंगी। अब मैं तीन पर्चियों पर तीनों फिल्मों के नाम लिख देती हूँ।
1: लेकिन अभी से मैं तुम्हें कह देती हूँ, अगले इतवार को मैं बिना पर्ची निकलवाए अपनी पसंद की ही फिल्म देखूंगी।
0: अरे देख लेना भाई, अब साड़ी बदल ले तो जाओ। गई?
2: मैं भी जाती हूँ कपड़े बदलने पापा।
0: अरे तू जरा रुक तो, पापा की बच्ची।
2: अब क्या है पापा?
0: ये क्या चमत्कार है, दोनों पर्चियां तेरे ही मतलब की निकली।
2: चमत्कार? चमत्कार कैसा पापा? अरे ये तो न्याय की बात है, मेरे नाम की पहली पर्ची तो आप ही ने निकाली थी पापा।
0: सच बोल, वरना वीटो पावर लगाकर तीनों सिनेमा कैंसिल कर दूंगा।
2: वो पापा, मैंने आपका फार्मूला लगाया था।
0: आए, यानी तूने
2: पहली तीनों पर्चियों पर मैंने अपना ही नाम लिखा था, दूसरी तीनों पर्चियों पर भी अंग्रेजी फिल्म का ही नाम लिखा था मैंने।
0: फिल्म तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी।
1: अरे आ रही हूँ भाई, अभी तो 12 ही बजे हैं,
0: पता
1: चौपाल
0: नहीं
1: का।
0: तुम्हारा 12 कितने बजे बजता है, मेरा
1: लीजिए,
0: तो बज गया।
1: मैं आ गई।
0: ठीक है, तुम रमोला को लेकर बाहर आओ, मैं तब तक बाहर रिक्शा विक्शा देखता हूं।
1: ठीक है।
0: अरे ए रिक्शा वाले,
3: अरे कहाँ है बाबू जी?
0: खाली हो?
3: अरे लौके लाना है बाबू। अरे खाली रिक्शा देख के पूछा धब्बा कि खाली है कि नहीं। अरे खाली ना है तब भरल है का?
0: मेरा मतलब है, नए सिनेमा हॉल चलोगे?
3: अरे चलब काहे ना बाबू जी, अरे रिक्शा गाड़ी तक चलवे खातिर न चलावल जाला है। अब ये बतावा, पूरा रिक्शा चलवा कि आधा?
0: अरे पूरा नहीं चलूंगा तो क्या, अपना आधा धड़ यहाँ छोड़कर जाऊंगा?
3: अरे बुजिया भार मचिन बतकत काहे हुआ। अरे हमार मतलब रहे कि पूरा रिक्शा होई कि आधा।
0: पूरा पूरा, मुझे तुम्हारा समूचा रिक्शा लेकर सिनेमा चलना है, सिर्फ रिक्शे की हैंडल पैडल लेकर नहीं।
3: देखा बाबू, 4 रुपया हुई। अरे हन्न दे बैठा, दन्न दे पहुंचाई तो के। अरे
0: अरे जल्दी जल्दी आ भाई।
3: अरे काबू हो, सब चलिए का?
0: तो क्या मैं पूरे रिक्शे पर अकेले 4 रुपये में बैठूंगा?
3: अरे एक रिक्शा पर 3 फुल सवारी और वो 4 रुपया में? अरे हमार रिक्शा हो कि सगड़? अरे दूसर देखा दूसर? अरे हमरा के रिक्शा जमा करेंगे हवा।
0: रुको भाई रुको, तुम रिक्शे वालों में यही बुरी आदत होती है, जनानी सवारी देखी नहीं कि लगे हाथ पैर फैलाने, सिर्फ अकेली सवारी बैठा कर
4: जिंदगी बहुत कीमती है।
0: लेना चाहते हो है? 3 सवारी है तो 1 रुपया और ले लेना। अब यहां और कोई रिक्शा तो है नहीं, देर अलग हो रही है, पहुंचा दो भैया।
3: ठीक है, अच्छा भैया अगर कहा तो हुआ था, हम देखा 10 रुपया में पहुंचावे खातिर राजी हैं। तू राजी हुआ कि नहीं? हाली बोला, हमके बहुत जल्दी हो वहाँ।
0: दस

0: हाँ पंच भाई, झलकी के शेष भाग आगे सुनल जाई, उसे पहले आई सुनल जाए एक गो संदेश।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा, डॉलकर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242।
5: रुपया यहाँ से नए सिनेमा हॉल तक का 10 रुपया लोगे? जनानी सवारी देखकर मौके का फायदा उठाते हो, शर्म नहीं आती?
6: अरे हमारा के रिक्शा ही चमे शर्म नहीं लगे, तो किराया ही चमे का है शर्म लगी बाबू जी। अच्छा एक काम करे तो बेशरम बन के दूसरा रिक्शा देख ला। अरे हम जा रहे हैं।
7: कर लीजिए ना पापा, देर हो रही है।
5: क्या मुसीबत है, सिनेमा देखने से पहले दुनिया भर का खर्चा। चलो बैठो। अरे तुम बीच में बैठो ना रमोला की अम्मा, हम और रमोला किनारे बैठते।
6: अरे थाम के बैठी है बाबू जी। अरे नहीं तो रास्ते में रह गई तो हमारा के दोष मत दी। अरे हम रिक्शा रेल का माफिक चलावे ली समझ लिया, हमके नाक मतिन जाम हो गई।
7: अब क्या होगा पापा, ये तो बहुत दूर तक भीड़ रुकी हुई है।
5: ये सब तुम्हारी अम्मा की वजह से हुआ है, जल्दी तैयार हो जाती तो हम पैदल ही सिनेमा हॉल तक पहुँच जाते।
8: अब सड़क पर अटर पटर मत बको जी, रास्ता जाम हो गया तो उसमें मेरी क्या गलती है?
6: खैनी खा ला बाबू जी।
7: पापा रिक्शा छोड़ दीजिए, हम भीड़ में पैदल जल्दी पहुंच जाएंगे।
5: ठीक है, ये लो भाई रिक्शा वाले 2 रुपए, हम पैदल चले जाते हैं।
6: 2 रुपया? अरे आधा दूर आयल है यहाँ, 5 रुपया दब, 5
7: दे दीजिए पापा, अभी सिनेमा हॉल तक भी तो पहुँचना है।
5: लो भाई 5 रुपया लो, आप खुश हो?
6: अरे मर्दवा मेहनताना जे था वह की बछिया दान कर रहा हुआ, ये मन खुश हो के कौन बात कहिल है? अरे देखा सुना ये रावा, अब कौन ने अतरे से निकल जाइया, हम तो जाते रिक्शा पर सुते।
5: अरे रमोला तुम्हारी अम्मा कहाँ गई भाई, जरा सी चूक हुई कि भीड़ में मटर के दाने की तरह खो गई। अरे रमोला की अम्मा, अरे कहाँ हो भाई?
8: अरे पीछे तो खड़ी हूँ भाई, चिल्लाते क्यों है?
5: पीछे तो भीड़ में पीछे खड़ी क्या कर रही हो भाई, आगे रहो, दिखाई तो पड़ोगी, देखती नहीं कितनी भीड़ है?
8: अरे पीछे रमोला भी तो है, उसको छोड़ दूं क्या भाई?
5: रमोला तुम अपनी अम्मा का हाथ पकड़ो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, छोड़ना मत अपनी अम्मा का हाथ, नहीं तो इस भीड़ में खो गई तो ढूंढने के लिए टेलीविजन पर देने के लिए इसकी कोई तस्वीर भी नहीं है मेरे पास।
8: देखो मेरी चिंता मत करो, मुझे पूरे बनारस का रास्ता अच्छी तरह से मालूम है।
5: अरे रास्ता दिखाई पड़ेगा तब ना मालूम पड़ेगा।
8: सुनो भीड़ में मैं कहती हूँ लड़ो मत। अरे भाई तुम लोग भीड़ में लड़ते वड़ते क्यों हो, हटो जरा भाई, उधर हटो ना, जरा निकलने तो दो।
5: जल्दी जल्दी पड़ जाओ रमोला, तुम्हारी अम्मा है ना?
8: है पापा है, आप जल्दी आगे तो निकलिए। अरे मैं अरे, निकल रही हूँ भाई।
5: अरे हटिए भाई, रास्ते में खड़े हैं, आओ रमोला आओ। उफ, ये भीड़ है कि तमाशा है, आगे खिसक ही नहीं रही है।
8: धीरे से
5: जरा आगे बढ़िए भाई, कि जिंदगी भर यही पेड़ की तरह अड़े रहिएगा। आओ रमोला अम्मा को पकड़े रहना है।
8: अरे अरे अरे अरे मेरी ना पैर पिस गया भाई। अरे अपना पैर अपने पैर पर रखिए, औरतों का जरा भी ख्याल करते ही नहीं। अरे अम्मा भीड़ में हाथ पैर मत देखो, जल्दी चली आओ जल्दी जल्दी। अरे ये क्या, ये तो हाउसफुल है पापा।
5: हाउसफुल? पता नहीं बनारस में कितने लोग हैं कि सिनेमा में भी हाउसफुल कर देते हैं, ऊपर से सरकार को दोष देते हैं कि महंगाई है।
7: पापा ये फिल्म बहुत अच्छी है पापा, ब्लैक ले लीजिए ना।
5: ब्लैक? इस महंगाई में सिनेमा ब्लैक का टिकट खरीद कर देखोगी
7: तो क्या?
5: भैया सुनो ना, अब मेरी नहीं तो लड़की की ही बात मान लीजिए आप है?
7: अब जो भी मांग रहा है दे दीजिए ना पापा।
5: अच्छा बाबा लो। अरे
7: अब क्या हुआ पापा?
5: अरे बेटे भीड़ में मेरी जेब किसी ने काट ली।
7: जेब काट ली?
5: हाँ।
8: ओ, 1000 दफे कहा है कि होश में रहा करो, भीड़ है भीड़ है।

0: अरे देरी करके बेहोश तो तुम कर देती हो, अब कहती हो होश में रहो। अब चलो वापस घर, पैर घसीटते हुए। अरे
1: हाँ पंच भाई, देखल जा ई झलकी सुनल गई तमाशा, और एमे पुरहर तमाशा भइल जोन की झलकी के माध्यम से पता चलल। और देखिए, हम अपन सरकार जोन बा लोक कल्याण करतीन, तमाम तरह के योजना चलावल करल करे, जोने से देश के समाज के हर वर्ग के बराबर अवसर मिले, समान उत्थान के लिए अवसर मिले। यही से संबंधित एक अल्पसंख्यक छात्रन खरतीन, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना भी सरकार चलावे ले, जोने में अल्पसंख्यक छात्र लोगन के उनके समुचित और अच्छा शिक्षा देवे खातिर सरकार व्यवस्था कैले बा, उनके सुविधा देले बा, जोने से उनके शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक रूप से कोनो कमी नहीं आवे पावे, ओकरे नाते वो शिक्षा में पिछड़ल नहीं रह जाए। एक खरतीन सरकारी योजना बनौले बा, और हम अपने अल्पसंख्यक भाई लोगन से कहब भी, जे भी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा लेता, अगर वह योजना के लाभ नहीं उठा पौले बा, तो आगे एकरे बारे में विधिवत जानकारी लेकिन एकर लाभ उठा के और अच्छा शिक्षा ग्रहण कैके अपन तरक्की तो करबे करे। जब वो अच्छा शिक्षा लिए, अच्छा ज्ञान हुई, तो देश के बारे में भी उनके अच्छा सेवा मिली और देश के भी लाभ मिली, तो ओकर लाभ उनके साथे साथे देश के भी मिली, और देश के लाभ मिली तो पूरे दुनिया में अपने देश के नाम भी रोशन हुई। तो यह योजना के लाभ उठावे खातिर छात्र लोग जरूर कोशिश करें और लाभ उठावें। भैया देखा, घड़ी के सुई कहतिया कि कितनों मन करत का बतियावे के, अब न बतियाओ। और पंच भाई लोगन से लबिदा, कार्यक्रम का समय पूरा भइल। पंचो
2: पंचों जय
1: जय हिंद।
2: हिंद।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत, मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ पर तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं, आप सुनेंगे समाचार।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में 432 करोड़ रुपया से बेसी के लागत का 217 परियोजनन का लोकार्पण आ शिलान्यास कैले। अपने संबोधन में श्री योगी कहने कि डबल इंजन का सरकार अयोध्या में विकास का नया इबारत लिखले हो। वहां के कहने कि आज अयोध्या सोलर सिटी के रूप में स्थापित हो चुकल बा।
1: आज अयोध्या में भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, ये सभी अयोध्या की पहचान बन रहे हैं। जो सिंगल लेन था, जो फोर लेन और सिक्स लेन की सड़कें हैं, चारों ओर से एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी आज अयोध्या को नई पहचान दिला रहा है।
0: मुख्यमंत्री अजुए बस्ती में 504 करोड़ रुपया से बेसी की लागत का 77 विकास परियोजनन के लोकार्पण आ शिलान्यास कार्यक्रमों में शामिल भइले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहने गोरखपुर में कई गो कार्यक्रमन में हिस्सा ली हैं। ओजा का मंडल आयुक्त अनिल ढिंगरा और डीआईजी एस चेन्नप्पा आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के तैयारियन का जायजा लेने।
2: मंडलायुक्त और डीआईजी ने गोरखपुर के भटहट स्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम का निरीक्षण किया। वहां संबंधित अधिकारियों को मंडलायुक्त ने 1000 व्यक्तियों की क्षमता

0: इस ऑडिटोरियम के निर्माण कार्य में तेजी लाकर इसे शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने कल मुख्यमंत्री के प्रस्तावित भटहट बांस स्थान फोर लेन मार्ग के लोकार्पण कार्यक्रम के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल का भी जायजा लिया। वहां चल रही तैयारियों की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि जनसभा स्थल पर मौसम को देखते हुए आवागमन, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वहाँ डीआईजी एस चेन्नप्पा ने पुलिस अधिकारियों को कार्यक्रम के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए। आकाशवाणी समाचार के लिए जीएन चौबे, गोरखपुर।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी इथेनॉल मिलल पेट्रोल से इंजन के नुकसान पहुंचले आ गाड़ियन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ले से जुड़ल आशंका के खारिज कर दिए हैं। एगो निजी समाचार चैनल के दिहल इंटरव्यू में श्री पुरी कहल कि सरकार E85 ईंधन शुरू कैले के योजना पर कार कई रही हो। वहाँ के कहल कि ईंधन मानक E20 पेट्रोल के तुलना में करीब 20 रुपया प्रति लीटर सस्ता होई। केंद्र सरकार एल्कोहल के ढेरे मात्रा वाली दवाइयन के नियमन के और यो सख्त करे बदे औषधि नियम 1945 में संशोधन कैले हो। एगो रिपोर्ट।
2: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीमीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधि उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: प्रदेश सरकार बीतल रात 20 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिहलस। स्थानांतरित होखे वाले अधिकारियों में बलिया, आजमगढ़ आ इटावा जिला का मुख्य विकास अधिकारी CDO भी शामिल हमें। राकेश कुमार पटेल के आजमगढ़, आलोक कुमार के बलिया और संजय कुमार सिंह के इटावा का नया CDO बनावल गई बा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सतही कई गो औरियो जिलन में आज रुक रुक के बरखा का सिलसिला जारी बा। भिनहिये से आसमान में बादल छौले बाटे आ कहीं कहीं बूंदाबांदी का क्रम आज पूरा दिन जारी रहल। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ से जुड़ल मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह बतौलें कि मौसम विभाग बिहने तक खातिर प्रदेश में कई जगहिन पर भारी बरखा का ऑरेंज अलर्ट जारी कैले हवे।
3: अगर आगे आने वाले दिनों में बात करें तो ये उत्तरोत्तर मध्य उत्तर प्रदेश और उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ेगा। यद्यपि यह उत्तरोत्तर कमजोर होता जाएगा, परंतु इसके प्रभाव से सेंट्रल यूपी की तरफ आने पर और थोड़ा कमजोर होने पर वर्षा की मात्रा में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई को भी जारी रहेगा और इसके बाद 11 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसमें व्यापक तौर पर कमी आ जाएगी और तराई इलाकों में यह कहीं कहीं भारी वर्षा तक सीमित हो जाएगा।
1: मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के पूर्वी जिलन में 14 जुलाई ले कहीं कहीं भारी बरखा का संभावना बा। समाचार पूरा भइल, नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में 432 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 217 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने अयोध्या में विकास की एक नई इबारत लिखी है। उन्होंने कहा कि आज अयोध्या सोलर सिटी के रूप में स्थापित हो चुकी है।
4: आज अयोध्या में भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, ये सभी अयोध्या की पहचान बन रहे हैं। जो सिंगल लेन था, आज वो फोर लेन और सिक्स लेन की सड़कें हैं। चारों ओर से एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी आज अयोध्या को नई पहचान दिला रहा है।
1: मुख्यमंत्री आज ही बस्ती में 504 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 77 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।

0: वहाँ के मंडलायुक्त अनिल ढिंगरा और डीआईजी एस चेन्नप्पा ने आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया।
1: मंडलायुक्त और डीआईजी ने गोरखपुर के भटहट स्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम का निरीक्षण किया। वहां संबंधित अधिकारियों को मंडलायुक्त ने 1000 व्यक्तियों की क्षमता वाले इस ऑडिटोरियम के निर्माण कार्य में तेजी लाकर इसे शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने कल मुख्यमंत्री के प्रस्तावित भटहट बांस स्थान फोर लेन मार्ग के लोकार्पण कार्यक्रम के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल का भी जायजा लिया। वहां चल रही तैयारियों की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि जनसभा स्थल पर मौसम को देखते हुए आवागमन, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वहां डीआईजी एस चेन्नप्पा ने पुलिस अधिकारियों को कार्यक्रम के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए। आकाशवाणी समाचार के लिए जीएन चौबे, गोरखपुर।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी आशंकाओं को खारिज किया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। एक रिपोर्ट।
2: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीमीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधीय उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: प्रदेश सरकार ने बीती रात 20 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। स्थानांतरित होने वाले अधिकारियों में बलिया, आजमगढ़ और इटावा जिले के मुख्य विकास अधिकारी CDO भी शामिल हैं। राकेश कुमार पटेल को आजमगढ़, आलोक कुमार को बलिया और संजय कुमार सिंह को इटावा का नया CDO बनाया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सहित कई अन्य जिलों में आज रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं बूंदाबांदी का क्रम आज पूरे दिन जारी रहा। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ से जुड़े मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मौसम विभाग ने कल तक के लिए प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
3: अगर आगे आने वाले दिनों में बात करें तो ये उत्तरोत्तर मध्य उत्तर प्रदेश और उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ेगा। यद्यपि यह उत्तरोत्तर कमजोर होता जाएगा, परंतु इसके प्रभाव से सेंट्रल यूपी की तरफ आने पर और थोड़ा कमजोर होने पर वर्षा की मात्रा में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई को भी जारी रहेगा और इसके बाद 11 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसमें व्यापक तौर पर कमी आ जाएगी और तराई इलाकों में यह कहीं कहीं भारी वर्षा तक सीमित हो जाएगा।
0: मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के पूर्वी जिलों में 14 जुलाई तक कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।

मीडियम है 330.032 मीटर यानी 900 किलोहर्ट्ज़ पर तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। किसान भाइयों के लिए उनका कार्यक्रम खेती बारी बस कुछ ही पलों में।

0: आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551220536। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 2205386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत, हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: पंचों जय जवान जय किसान। हाँ भैया, यही नारा के साथ अपन बैठ के शुरू भेल। और भैया देखिए, किसान भाई लोग इस समय तरह तरह के अपने, चाहे धान हो चाहे और भी कई तरह के जो है खरीफ के फसलन के इसमें बो रहा हुई है,
4: वही में तेलहन के भी खेती किसान भाई लोग
3: कर रहे बाटे। इसमें में भैया एक सोयाबीन भी तरह के फसल है, उसको भी बुआई लोग कर रहे हैं। और जो सबसे उपयुक्त समय कहा जाला भैया, ये समय चल रहा बा कहाँ से एक मानल जाला कि जून के तीसरा सप्ताह से लेके जुलाई के मध्य मतलब तक ये जो है
4: सोयाबीन के उपयुक्त समय है भैया। यह समय में जेके भी सोयाबीन के खेती करे बा, ओके खातिर ये समय उपयुक्त बा अपने खेती के तैयारी कैले और अच्छे बीज के चयन कैले। और जे भी किसान भाई लोग तेलहन के एकर देखी दोहरा फायदा, तेलहन के भी काम में आवला और सब्जी के भी उपयोग सोयाबीन के में कई जला
3: भैया।
4: और स्वास्थ्य खर्तिन भी बड़ा लाभदायक।
3: हाँ भैया, बहुत जनित एक प्रोटीन के लिए भी इस्तेमाल करे ला।
4: हाँ तो भैया,
3: बहुत अच्छा प्रोटीन माना जाला है।
4: भैया देखी, आम तो आप लोग खाते बाटी, बाग बगीचा भी बहुत से किसान लोग लगौले बाटे, लेकिन बगीचा का होला फरेला, सीजन समाप्त हो जाला फल के, तो ओकरे बाद भी हमारी जिम्मेदारी होला कि बाग के देख रेख कैसे करी। अगर ओकर पुरहर देख बार ठीक ठाक होकर फल तोड़ले के बाद से तो अगला पैदा और अगले फसल के समय में भी बाग से अच्छा उत्पादन पावल जा सकेला।
3: तो एक बात और भैया कि इतने नहीं, जैसे बाग में फसल तोड़ने जोन आप बोल रही हैं आम के तोड़ने के बाद, वहाँ पे तरह तरह के जो है जो कि बारिश वरिश थोड़ा बहुत हो जाला, आम उसे पकेला भी मानल जाला, तो नीचे इतना खंजास जम जाला, तो का साफ सफाई बाग के पूरा बढ़िया से रख रखाव, ये सब चीज़ मतलब समय पे करल बहुत जरूरी हो खेला।
4: और भी बहुत वैज्ञानिक तरीका है और भी बहुत चीज़ उपयोगिता है जोने के बारे में हम चाहब अपने किसान भाई लोगन के जानकारी के माध्यम से जानकारी देवल जा कि फल तोड़ाई के बाद बाग का प्रबंधन कैसे करें। ये जानकारी देता है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह और आपसे बतिया होता है विनय कुमार।
5: किसान भाई, आप लोग बागवानी का काम करे ली, आज सब लोग सोचेला कि बाग बगीचा से बढ़िया फल मिले, काहे से कि नगद आमदनी का सबसे बढ़िया स्रोत बागवानी है। लेकिन बहुत किसान भाई ऐसा होला जौन बागवानी का काम तो करे ला, वो में खूब मेहनत करी है, कब तक, जब ले फर रही तब तक। लेकिन आज अपने साथ फोन लाइन से जुड़ल है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, आप है उप निदेशक शोध औद्यानिक फल शोध केंद्र बस्ती में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे यह कार्यक्रम में स्वागत बा।
6: जी नमस्कार।
5: डॉक्टर साहब, ये बताएं कि फल तोड़ला के बाद बाग का प्रबंधन कैसे करे के चाहिए।
6: जी, बहुत अच्छा सवाल, सामयिक सवाल आपने उठाया है। आम तौर पे हम देखते हैं कि जब भी, ये सामान्य सी बात है, जब किसी भी चीज से पैदावार लेते हैं हम, जब कोई चीज पैदा होती है तो इसके बाद ये मान के चलते हैं कि उसके अंदर कमजोरी आ गई है, जो उसकी क्षमता थी उसमें थोड़ी सी गिरावट हुई है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, मतलब जमीन हो, तो उसमें कुछ न कुछ कमी आती है। जैसे हम सामान्य तौर पे देते हैं घर में माँ बहनों के जब बच्चा होता है, तो बच्चे होने के बाद लोग सोचते हैं कमजोरी आ गई तो

0: उसकी खूब खातिरदारी करो, मायके से भी ससुराल से भी दोनों तरफ से लड्डू बन के बढ़िया घी के आते हैं और उनकी
1: बिल्कुल
0: सेवा की
1: बिल्कुल
0: जाती है,
1: हाँ
0: उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। ठीक इसी
1: जी
0: तरह से जब हमारे यहाँ जानवर बच्चे देते हैं, गाय बछड़ा पैदा होता है, तो इसके बाद उसको तेल सोंठ और गुड़ ये सब चीजें खिलाई जाती हैं कि इसके अंदर कुछ कमजोरी आ गई है, इसकी ताकत बनी रहे। इसके ठीक विपरीत हम देखते हैं कि किसान भाई जब अपने बाग से फल ले लेते हैं और इसके बाद जैसा आपने बताया उसको छोड़ देते हैं अन्ना की तरह से, उसकी कोई देखभाल नहीं करते, ये बहुत गलत है। इस पे वही सिद्धांत लागू होता है जो हमारे जानवरों पे इंसानों पे लागू होता है, उसी तरह से पेड़ों की भी देखभाल फल तुड़ाई के बाद करनी चाहिए। अब इसमें जो मोटी मोटी चीज आती है कि क्या कर सकते हैं किसान भाई, कि जैसे ही फल तुड़ाई करते हैं तो सलाह देते हैं कि भाई डंठल सहित तोड़ना चाहिए फल को, लेकिन ज्यादातर किसान भाई डंठल सहित नहीं तोड़ते हैं, फल तो तोड़ लेते हैं लेकिन जिसमें आम लगा रहता है वो टेमुआ उसी में लटका रहता है अगले 3-4 महीने तक। इससे क्या नुकसान होता है कि आप सभी किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि अगली जो फसल आती है वो करीब 6 महीने पुराने कल्ले पे ही उस पे बौर आता है और फलत आती है। अगर डंठल तुरंत नहीं तोड़ा गया आम तोड़ने के साथ ही और वो डंठल लगा रहा तो वो फिर गिरेगा जाकर के 2-3 महीने बाद सितंबर में अक्टूबर में, तो 3 महीने जून से लेकर के जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने डंठल लगा रहता है हमारे ज्यादातर पेड़ों में। इस स्थिति में पौधे में नए कल्ले नहीं आते हैं और जब नए कल्ले जुलाई में नहीं आएंगे जून के बाद में तो उसमें अगले वर्ष की फसल नहीं आएगी, बौर नहीं आएंगे। इसीलिए जरूरी है कि उस डंठल को तुरंत किसान भाई तोड़ दें, जितने भी बाग में लगे हुए हैं लटके हैं, तो उससे नया कल्ला आएगा और नया बौर आएगा उसपे 6 महीने पुराने उसपे टहने पे, आगामी आने वाले सीजन में फसल आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। जब हम देखते हैं कि जैसे ही तो फल तोड़ लिया तो एक बूस्टर डोज जो जैसे कहते हैं ग्लूकोज, कोई बीमार हो गया एकदम से ग्लूकोज चढ़ा दो, उसी तरह ग्लूकोज के फार में पेड़ पौधों को भी एक पोषक तत्व जो नत्रजन फास्फोरस पोटास का मिक्सचर आता है 19-19-19% का, 19% नत्रजन 19% फास्फोरस 19% पोटास होता है, 19-19-19 के नाम से बनता है, इसका 5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बना करके किसान भाई आम तुड़ाई के बाद अगर स्प्रे कर दे डंठल वगैरह तोड़ने के बाद तो उस पेड़ को एक बूस्टर डोज मिल जाती है और उसमें थोड़ा सा नयापन आ जाता है, एक ताकत मिल जाती है तत्काल रूप से। दूसरा ये तो हुई वैसी बात जैसे ग्लूकोज चढ़ाने वाली की, कोई बीमार है एकदम से ग्लूकोज चढ़ा दो तत्कालिक राहत मिल जाएगी। दूसरा क्या होता है, अब हम पेड़ों के पास देखते हैं जब तुड़ाई कर लिए हैं तो उसकी निश्चित रूप से जुताई करवा दें, जुताई करवा दें और गुड़ाई करवा दें, थाले के पास जरूर उसकी सफाई कर दें, जो खरपतवार होते हैं जो कीड़ों बच्चों के अंडे बच्चे होते हैं बीमारियों के विषा वो होते हैं जीवाणु विषाणु होते हैं वो सब तने के पास ही इकट्ठा रहते हैं। किसान भाई पूरे खेत की जुताई करते हैं लेकिन तने के पास छोड़ देते हैं या बेड़ के पास छोड़ देते हैं, ये बहुत गलत है। इससे सारे हमारे जो परजीवी हैं जो आगे चल के पेड़ को नुकसान करेंगे उस पे कीड़े बच्चे अंडे पड़े रहते हैं और आगे चल के पेड़ पे चढ़ के नुकसान करते हैं, इसलिए बाग की जुताई करें और पूरे उसकी बेड़ की और थाले की भी सफाई अनिवार्य रूप से कर दें। और क्या कर सकते हैं किसान भाई, अगर नया बाग है 10 साल से 15 साल से नीचे का है तो उसमें स्थान बहुत ज्यादा होगा खुला, अच्छी धूप होगी, तो ऐसी स्थिति में उसमें हरी खाद में अगर ढैंचा और सनई इस तरह की कोई चीज बो देते हैं और 40-45 दिन बाद पलट दें उसको मिट्टी करके, तो एक बढ़िया सा ऑर्गेनिक मैटर उस बाग में हमारे तैयार हो जाएगा। नंबर 3, जुलाई में ही फल तोड़ने के बाद किसान भाइयों को सारी जो गोबर की खाद देनी है एक पौधे में 25 से 30 किलो के हिसाब से, जो 10 साल से ऊपर के पेड़ है वो अभी इसी समय पूरी मात्रा दे देनी चाहिए ताकि इसकी अच्छी तरह से उसमें मिला दें। खाद देने में 2-3 चीजें ध्यान देने होती है कि समय क्या होना चाहिए, मात्रा कितनी होनी चाहिए और कहाँ देना चाहिए। समय हमने बताया बरसात के तुरंत बाद गोबर की सारी खाद देनी है, मात्रा कितनी 25 से 30 किलो एक पेड़ में होनी चाहिए और कहाँ देनी चाहिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पेड़ के तने के पास नहीं देना है किसान भाइयों, ज्यादातर किसान भाई करते हैं कि तने के पास ही 4 जगह ले जाकर के गोबर डाल दिया, वो किसी काम का नहीं, बेकार है, बल्कि वो नुकसान करेगा, दीमक और पेड़ को लगने की संभावना रहेगी। इसलिए जो भी खाद देनी है वो पेड़ से कम 1.5 से 2 मीटर दूर पर देना है और उसको कायदे से मिला देना है। ये रही गोबर की खाद की बात। इसके बाद इसी समय क्या कर सकते हैं, पेड़ की जो घना बाग है मान लीजिए बहुत पुराना, तो जो पुरानी टहनियां हैं रोग ग्रसित हैं बीमार हैं जमीन में छू रही हैं मिट्टी से छू करके तमाम कीट बीमारियां जाती हैं, उनकी कटाई छटाई भी हल्की किसान भाई इस समय कर सकते हैं ताकि आपस में टहनियां ना छुए जमीन में ना छुए, रोग ग्रसित पुरानी सूखी टहनियों को काट के हटा दें। अब इसके साथ में ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी हम कटाई छटाई करते हैं कोई भी चीज की, चाहे वो आदमी का ऑपरेशन हो किसी का भी हो, जब ऑपरेशन करते हैं कटाई छटाई करते हैं पेड़ में घाव होता है तो घाव के बाद जाहिर सी बात है उसमें हम मलहम लगा करके और उसका प्लास्टर कर देते हैं ताकि बरसात का मौसम इस समय बहुत अनुकूल होता है बीमारियां और कीड़े को आकर्षित करने

0: निकले कटे हुए भाग पर, तो पेड़ की भी कटाई के बाद हम उसपे मलहम लगाएंगे और उसपे प्लास्टर करेंगे ताकि कोई बाहरी व्याधियों का प्रकोप, कीड़ों का प्रकोप कटे हुए भाग के माध्यम से ना हो सके। कैसे करेंगे मलहम? इसका बहुत आसान है। गाय का गोबर हर किसान भाई के यहाँ मिल जाएगा, ताजा गाय का गोबर ले लें और उसको जहां भी कटा हुआ भाग है उस पर लगा दें, आराम से बढ़िया मलहम हो जाएगा पेड़ का। इसमें और कोई बहुत ज्यादा तकनीकी की आवश्यकता नहीं है। अगर सक्षम है, गाय का गोबर नहीं मिल रहा है और आपको बाजार से सक्षम है, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये फफूंदी नाशक है, इसको लेकर के किसान भाई अरंडी के तेल, अरंडी का तेल इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें घोल बना लें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का, ब्लाइटॉक्स का, और इसको गाढ़ा घोल बना करके जो कटा हुआ भाग है उस पर लगा दें कायदे से। तो क्या होगा, जब बरसात होगी तो ये पानी से धुलेगा नहीं, इसीलिए मैं अरंडी का तेल कह रहा हूँ, अरंड कहते हैं, उसके तेल में गाढ़ा घोल मिला करके कटे हुए भाग में लगा दें और जिससे कि कोई व्याध बीमारियां नहीं आएंगी और पानी से ये धुलेगा नहीं। और इसके साथ ही अब बात आती है, जब ये सारी चीजें कर लेंगे हम, गोबर की खाद मिला दिए, कटी हुई टहनियां हटा दिए, और इसके बाद फिर आती है पोषक तत्व प्रबंधन की। आगे चल के हमको आगे वाली अच्छी फसल लेनी है, बढ़िया बौर आए, बढ़िया देखभाल हो, अच्छी फसल आवे, तो इसके लिए जरूरी है कि 10 साल से ऊपर के जो पौधे हैं हम बताते हैं किसान भाइयों को, उसमें एक पेड़ में 2.25 किलो यूरिया, 3 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 2.25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास, ये खाद की मात्रा है, उर्वरक की मात्रा है, जो रासायनिक उर्वरक के रूप में एक पेड़ में देनी है। 2.25 किलो यूरिया, 3 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 2.25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये मात्रा एक पेड़ में देनी होती है जो 10 साल से ऊपर का है। हम किसान भाइयों को सलाह देंगे कि इस मात्रा को 2 बार में दें, एक पहली जो मात्रा है रासायनिक उर्वरक की, ये हम बरसात के बाद यानी कि सितंबर के बाद अक्टूबर के महीने में दें, और वही देना है जो हमने बताया 1.5 से 2 मीटर दूर, और आधी मात्रा इसकी फरवरी के महीने में जब आम लग जाए, टिकोरा बन जाए, उस समय देना है तो ज्यादा अच्छा रहता है। ये मुख्य पोषक तत्व हैं। इसके साथ ही साथ हम सलाह देते हैं कि किसान भाई समय समय पर साल डेढ़ साल में मिट्टी की जांच भी करा लिया करें। अगर कोई बहुत ज्यादा पोषक तत्व की कमी है तो उसकी संस्कृति के अनुसार भी पोषक तत्व दिए जाने चाहिए। इसके साथ आम के बागों में मुख्य पोषक तत्वों के अलावा कापर, जिंक और बोरान, कैल्शियम, इन 3 चीजों की भी कमी बहुतायत रूप में देखी जा रही है, जिसकी वजह से तमाम सारी बीमारियां, तमाम सारी नई नई व्याधियां, गमोसिस है, डाईबैक है और तमाम तरह के रोग उसमें पौधे में लगते हैं और फलत पैदावार अच्छी नहीं आती है। तो कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, बोरेक्स और चूना, ये 4 चीजें और देनी चाहिए किसान भाइयों को आम के बाग में, ताकि उसकी अच्छी बढ़वार, अच्छी देखभाल, अच्छी ग्रोथ हो सके। कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और बोरेक्स, तीनों की मात्रा 250-250 ग्राम एक पेड़ के लिए। बुझा हुआ चूना, यहाँ पर हम कहेंगे चूना जो बुझा हुआ होता है, जिसको हम पुताई के काम लाते हैं, पाउडर फार्म में होता है, वो चूना डालना है किसान भाइयों को, 150 ग्राम एक पेड़ में डालना है।
1: डॉक्टर साहब, जब इतना कुल प्रबंधन हो जाएगी
0: जी,
1: तो बरसात में तो वैसे भी पानी बरसल रहेला, जमीन के निचले सतह तक पानी रहेला, एमें
0: जी
1: सिंचाई का कोनो जरूरत तो पड़ी नहीं।
0: हाँ, कोई जरूरत नहीं है इस समय सिंचाई की। आमतौर पे जो नए बाग लगाते हैं उसमें थोड़ा सा किसान भाइयों को देखना है कि नए पेड़ लगाए हैं उसमें हो सकता है कभी 15 दिन 20 दिन का इंटरवल हो जाए, ऐसी बीच मध्यावधि आ जाएगी, 20 दिन तक पानी नहीं गिरता है, जमीन झिटक जा रही है, तो ऐसी दशा में जरूर उसकी गुड़ाई करके हल्का सा पानी लगा सकते हैं, लगाना पड़ सकता है, वरना बरसात अच्छी हो रही है तो पानी की जरूरत नहीं है। पानी कम लगे इसके लिए किसान भाई एक चीज जरूर कर सकते हैं, मल्चिंग कर दें पेड़ों के नीचे, पॉलीथीन बिछा दें, मल्चिंग माने पतावर बिछाना, जो जमीन है उसको ढक देना। इससे 2-3 फायदे होते हैं, एक तो पानी कम लगता है, दूसरे उसके नीचे खरपतवार नहीं उगते हैं, तीसरे जो पानी आपने लगाया है वो ज्यादा दिन तक जमीन में रुका रहता है, मॉइस्चर कैपेसिटी जमीन में रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। तीसरा, जो अभी भारत सरकार द्वारा एक बढ़िया योजना चल रही है, पूरे प्रदेश में हर जनपद में चल रही है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पर ड्राप मोर क्राप, एक बूंद की पानी से अधिकतम पैदावार प्राप्त करना, इसको टपक सिंचाई विधि कहते हैं। ये हमारे उद्यान विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में चलाई जा रही है, इसपे 90% सब्सिडी है, छूट है। किसान भाई जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क करके आम का बाग अगर लगाए हैं, नया लगाना चाहते हैं या पुराना लगा है, या सब्जी की खेती है, उसमें सब में टपक सिंचाई जो विधि है प्रणाली की स्थापना करा लें, 90% सब्सिडी का लाभ उठाएं। इससे क्या होगा, इस प्रणाली को लगाने से एक तो कम से कम 50% तक पानी की बचत होगी, दूसरा ये होगा कम से कम 25 से 30% पैदावार में बढ़ोतरी होगी, इसको जरूर अपनाएं।
1: डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, उपनिदेशक शोध औद्यानिक शोध केंद्र बस्ती, आप इतना अच्छा जानकारी दे

0: कि फल
1: जी
0: तोड़ाई कईला के बाद बाग का प्रबंधन कैसे करे के चाही, एकरे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद। पंच भाई देखी इतना निमन जानकारी यह बातचीत के माध्यम से सुने के मिलल। फल तोड़ाई के बाद बाग के प्रबंधन जानकारी देते रहें डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, आपसे बतियात रहें विनय कुमार। अब आई लगले हाथे पहले सुनल जाए एगो गीत, फिर बत कही आगे बढ़ी।
2: हो सुन सजा।

0: हाँ भैया देखा,
1: बहुत
0: भानु
1: बढ़िया मन में
0: प्रताप और
1: साहेब।
0: उनके साथी लोगन ये गीत सुनौलें, एक एक खातिर इनके दिहल जा धन्यवाद। और आइए अभी गौर जानकारी लेवल जा
1: बैकयार्ड
0: डॉक्टर।
1: मुर्गी पालन का होखेला, ये पर जानकारी देते हैं डॉक्टर लालचंद्र वर्मा।
2: ग्रामीण भारत में घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन एक पुरानी परंपरा है। इस तकनीक में स्वदेशी पक्षियों के कारण उत्पादन अच्छा नहीं होता है, क्योंकि देसी मुर्गियों की अंडा उत्पादन क्षमता 70 से 80 अंडा प्रति पक्षी प्रतिवर्ष है और मांस का उत्पादन भी बहुत कम है। मुर्गियों की उन्नत नस्लों का चुनाव करके मांस और अंडे का अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। किसान की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए यह एक कम निवेश का आसान सा उद्यम है। इससे गरीबों के बच्चों में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के साथ ही शुद्ध आय भी प्राप्त होती है। घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्रारंभिक निवेश कम एवं शुद्ध आय अधिक प्राप्त होती है। मुर्गी की एक छोटी इकाई को कम से कम 2 मुर्गियों के साथ काम शुरू किया जा सकता है। कृषि उप उत्पाद या बचे हुए खाद्य और अनाज के टुकड़ों का बेहतर उपयोग करने से फीड की लागत भी कम हो जाती है। स्थानीय बाजार में देसी अंडा एवं मुर्गा अच्छा मूल्य पर बेचा जा सकता है। श्रमिक परिवार के होने के कारण परिवार की आय में और आमदनी में अच्छी वृद्धि होती है। घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन एक एटीएम के रूप में कार्य करता है, क्योंकि मुर्गे एवं अंडे को नगदी के रूप में बेचा जा सकता है। देसी मुर्गा एवं अंडे की गुणवत्ता जैविक खेती की अपेक्षा अधिक बेहतर है। पिछवाड़े मुर्गी पालन के लिए मुर्गियों का चुनाव करते वक्त हमें ध्यान देना चाहिए कि देसी मुर्गी और आम तौर पर अंडा उत्पादन एवं मांस उत्पादन में खराब प्रदर्शन करती है। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए मुर्गियों की उन्नत नस्लों का चुनाव करना आवश्यक होता है। बेहतर परिणाम के लिए मुर्गियों में कुछ गुण होने आवश्यक हैं, जैसे स्थान विशेष के अनुसार उनकी अनुकूलन क्षमता अच्छी होनी चाहिए, शारीरिक संरचना अच्छी हो, प्राकृतिक रूप से वो कठोर हों, आकर्षक एवं रंगीन पंख वाले हों, शत्रुओं से बचने की उनमें असीम क्षमता हो और रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होनी चाहिए। इन सब विशेषताओं को ध्यान में रखकर घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन के लिए ग्राम प्रिया, वन राजा, गिरिराज, गिरी रानी, कृष्णा एवं कड़कनाथ मुर्गियों का चुनाव करना अति आवश्यक होना चाहिए। ग्राम प्रिया मुर्गी से वार्षिक अंडा का उत्पादन 220 अंडा प्रति मुर्गी प्रतिवर्ष है एवं बनराजा मुर्गी से 200 से 230 अंडे प्रति मुर्गी प्रतिवर्ष है। ये मुर्गियाँ 200 से 230 दिन पर अंडा देना शुरू कर देती हैं। इनके अंडे का वजन 55 से 60 ग्राम तक होता है तथा इनके शरीर का वजन भी 2.5 से 3.5 किलो तक होता है। लेकिन व्यावसायिक कुक्कुट पालन में फीड की लागत का कुल खर्च का करीब 70% होती है, लेकिन घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन में फीड की लागत को न्यूनतम माना जाता है। इस विधि में मुर्गी को खुली जगह में चरने के लिए छोड़ देते हैं और ये आवश्यक प्रोटीन, ऊर्जा, खनिज और विटामिन आदि कीड़े, घोंघे, दीमक, घास और इनके बीज, बचे हुए अनाज, फसलों के अवशेष एवं घरेलू कचरे से भी इकट्ठा कर लेते हैं। चावल एवं गेहूं के टूटे हुए टुकड़े, राइस पॉलिश, राइस ब्रान जैसी फीड सामग्री भी मुर्गियों को दी जा सकती है। बरसात के मौसम में राशन को अधिक समय तक घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, जिससे एफ्लाटॉक्सिन या जैसे कवक से बचा जा सकता है। घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन में आमतौर पर 2 बार भोजन दिया जाता है, एक बार सुबह एवं एक बार शाम को। मुर्गियों के अच्छा प्रदर्शन के लिए

0: राशन 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन प्रति पक्षी देना उचित रहता है। संतुलित राशन यदि तैयार करना है तो उसके लिए पिसा हुआ मक्का 70%, राइस पॉलिश 10%, राइस ब्रान 10%, सोयाबीन की खली 5%, नमक 1% एवं पत्थर का पाउडर 2% तथा खनिज एवं विटामिन के साथ उचित रूप से तैयार किया जा सकता है। मुर्गी दाना में स्टार्टर राशन में कम से कम 20% प्रोटीन एवं 2800 किलो कैलोरी ऊर्जा होनी चाहिए। जो आखिरी राशन होता है उसे फिनिशर राशन कहते हैं, उसमें 16% प्रोटीन एवं 2600 किलो कैलोरी ऊर्जा होना आवश्यक होता है। इन सब के साथ एक समस्या मुर्गी पालन में आती है जिसे हम स्वास्थ्य के नाम से जाना जाता है। यदि मुर्गियों का स्वास्थ्य अच्छा है तो उससे अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुर्गियों का समय समय पर टीकाकरण करना बहुत जरूरी होता है। उसका पहला टीका पहले ही दिन होता है, जिसे मेरेक्स वैक्सीन कहते हैं। इसका 2 ml का डोज गर्दन की चमड़ी के नीचे लगाया जाता है। दूसरा टीका 5 से 7 दिन पर रानी खेत एफ1 वैक्सीन का लगाया जाता है, जो 2 बूंद, 1 बूंद आँख में और 1 बूंद नाक में ड्रापर के माध्यम से दिया जाता है। IBD इंटरमीडिएट स्ट्रेन एक वैक्सीन है जो मुर्गा में 14 दिन के बाद लगाई जाती है। इसका 2 बूंद, 1 बूंद आँख में और 1 बूंद नाक में दिया जाता है। RDF स्ट्रेन का वैक्सीन का प्रयोग 28 दिन बाद किया जाता है। इसका भी 2 बूंद की मात्रा 1 बूंद आँख में और 1 बूंद नाक में करना जरूरी रहता है। IBD इंटरमीडिएट स्ट्रेन वैक्सीन मुर्गों में 35 दिन के बाद लगाना चाहिए। इसका भी 2 बूंद की मात्रा 1 बूंद आँख में और 1 बूंद नाक में किया जाता है। एक वैक्सीन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे फाउल पॉक्स वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। इसे मुर्गों में 42 दिन के बाद लगाते हैं। 1 ml की मात्रा पंख की चमड़ी के माध्यम से दिया जाता है।
1: बहुत निम्न जानकारी देना डॉक्टर लालचंद वर्मा कि बैकयार्ड मुर्गी पालन का होखेला, और किसान भाई लोग निश्चित तौर पर जानकारी से सुनले हुई हैं और लाभ उठे हैं।
2: भैया वर्मा जी के दिहल जा धन्यवाद। और घड़ी कहतिया कि हमनों के अब समय भाई किसान भाई से लेवे के विदा। तो पंचों
1: जय जवान जय किसान।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details log on to www.ddindia.com।

0: कली कली।
1: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
2: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
1: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
2: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
1: गाने के बोल,
2: गीतकार
1: और संगीतकार,
2: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
1: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
2: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
1: गाते गुनगुनाते
2: सुनिए सुबह 10:05 पर।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551-220-5386। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 220-5386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत, हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: लोकगीतों के कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी।

0: के साथ लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
3: लोकगीतों के कार्यक्रम आइए सुनते हैं भजन।

0: इस लोक भजन के साथ ही लोकगीतों का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। भोजपुरी कार्यक्रम देसमार, इसके अंतर्गत आइए सुनते हैं भोजपुरी काव्य पाठ। कवि हैं अरुण कुमार शर्मा।
1: आज बीज अंगना से आयल दलानी, पीतर की झुलनी पर झूमे जेठानी। लाज बीज अंगना से आयल दलानी, पीतर की झुलनी पर झूमे जेठानी। लाज बीज अंगना से प्रीत की पोखरिया के पानी झुराइल, गोड़े में काट गड़ल आँख बढ़ी आइल। प्रीत की पोखरिया के पानी झुराइल, गोड़े में काट गड़ल आँख बढ़ी आइल। बिकेले बिके

लाज बीज अंगना से आयल दलानी, पीतर की झुलनी पर झूमे जेठानी। ज्योति ज्योति सड़की पर सरसो छींटाता, टूटहा कटोरा में घी परोसाता। ज्योति ज्योति सड़की पर सरसो छींटाता,

ई परोसाता कर में पर अपनी रोवे देवरानी, पीतर की झुलनी पर झूमे जेठानी, लाज बीज अंगना से बांसे की पटरी पर दौरती बारेल, बांसे की पटरी पर दौरती बारेल, छछु नर की माथे चमेली के तेल, ताल ठोके बरखा से टूटही पलानी, पीतर की झुलनी पर झूमे जेठानी, लाज बीज अंगना से आयल दलानी, पीतर की झुलनी पर झूमे जेठानी। नहिया पीरितिया के भीति भहराइल, भूजा के जैसन बा हसरा छीटाइल, नहिया पीरितिया के भीति भहराइल, भूजा के जैसन बा हसरा छीटाइल, बसुला मुरहाइल तरोवे रुखानी, पीतर की झुलनी पर झूमे जेठानी। आखिरी बंद कर लो। सोमे के बासोम दाता के दाता, राजा के रानी से बनल बनाता, सोमे के बासोम दाता के दाता, राजा के रानी से बनल बनाता, ए जग के इहे बा आपन कहानी, पीतर की झुलनी पर झूमे जेठानी, लाज बीज अंगना से आयल दलानी, पीतर की झुल

0: जेठान।
1: एकरे बाद एगो बासंती गीत देखल जाओ। मनवा खींचे मोजरे मस्त हमराई के, मन हर साई के ना। मनवा खींचे मोजरे मस्त हमराई के, मन हर साई के ना। छुअलस पौन बसंती खेतन के दुलराई के, मन हर साई के ना। सन सन पुरुआ कई के सोर देहिया तुरे पोरे पोर, सन सन पुरुआ कई के सोर देहिया तुरे पोरे पोर। मिसरी मुजर टपका के सबके रस में देला बोर, फागुन बिहसल देखा रंग बरसाई के, मन हर साई के ना। मनवा खींचे मोजरे मस्त हमराई के, मन हर साई के ना। कोयल का पुकार ले देखल जाओ। के आ जा हो राजा हो कह के,

के अपने प्रीतम के गोहरावे, अल्हड़ खोजति बाटे, अल्हड़ खोजति बाटे मृग नैनी बउराई के, मन हर साई के नाम। छुअलस पौन बसंती खेतन के दुलराई के, मन हर साई के ना। गीत के माध्यम से एगो संदेश देखल जाओ। पहले सब केहू इंसान, पीछे हिंदू मुसलमान। पहले सब केहू इंसान, पीछे हिंदू मुसलमान। बाटे जे अल्लाह भगवान, बुझिया ऊ बाटे नादान। सबसे मिलिया, सबसे मिलिया भैया।

रंग अबीर लगाए के मन हर साई के ना। मनवा खींचे मोजर मस्त अमराए के मन हर साई के ना। छुअलस पौन बसंती खेतन के।

भोजपुरी कार्यक्रम देश समार में अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी कविताएं। कवि थे अरुण कुमार शर्मा। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली।
2: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
3: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
2: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
3: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
2: गाने के बोल,
3: गीतकार
2: और संगीतकार
3: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
2: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
3: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
2: गाते गुनगुनाते
3: सुनिए सुबह 10:05 पर।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
4: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल

प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे थे राजस्थानी लोकगीत मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हम आपको आज प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

रात्रि 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता। अमरकांत का जीवन और उनकी कहानियां, वार्ताकार होंगे रजनीश पांडे।

शास्त्रीय संगीत के श्रोता आज सुनेंगे विदुषी श्रुति सडोलकर का गायन राग होगा नैकी कांगड़ा। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। सुगम संगीत में आज के कलाकार होंगे जगजीत सिंह। कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। करंट अफेयर्स कार्यक्रम, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रोजाना की तरह से आज भी स्पॉटलाइट का टाइम होगा रात्रि 9:15। फिल्म संगीत का वक्त होगा रात्रि 7:31

0: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
1: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
0: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
1: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
0: गाने के बोल,
1: गीतकार
0: और संगीतकार
1: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
0: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
1: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ यादें बन जाएंगी खास। गाते
0: गाते गुनगुनाते
1: सुनिए सुबह 10:05 पर।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज पर तथा FM 14.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जो हमारे लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और बस्ती को 936 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, प्रदेश में दिख रहा है विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान राशि की गिनती में लगे 23 कर्मचारियों का इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट चढ़ावा प्रकरण से जुड़ी याचिकाओं पर 13 जुलाई को करेगा सुनवाई। प्रदेश में कल से शुरू होगा दस्तक अभियान। संचारी रोग नियंत्रण के लिए घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें करेंगी जागरूक। और राज्य में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा देने के दिए निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या के सोहावल में 432 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने यहां पूर्व मंत्री मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिमा का अनावरण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में अब विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय हो रहा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में दर्शन करने के लिए देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालु यहां का विकास देखकर अभिभूत होकर जाते हैं।
1: आज अयोध्या में भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, ये सभी अयोध्या की पहचान बन रहे हैं। जो सिंगल लेन था, आज वो फोर लेन और सिक्स लेन की सड़कें हैं। चारों ओर से एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी आज अयोध्या को नई पहचान दिला रहा है। स्वाभाविक रूप से अयोध्या को पहचान मिलेगी तो बीकापुर को भी, रुधौली को भी, मिल्कीपुर को भी, गोसाईगंज को भी उसका लाभ प्राप्त होगा।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने

0: भदरसा नगर पंचायत का नाम भरत कुंड और ग्राम पंचायत खिरौनी सुचिता गंज का नाम मां ज्वाला देवी के नाम पर करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने आज बस्ती में 504 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने हरैया में 27 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के लिए भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक आदर्श मॉडल बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्ती में मखौड़ा धाम, भद्रेश्वरनाथ धाम और तपसी धाम में चल रहे विकास कार्यों के साथ साथ अब कर्ण मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य भी आगे बढ़ाया जाएगा।
1: ये जो विकास कार्य हो रहा है, मखौड़ा धाम का हो, भदेश्वरनाथ धाम का हो, तपसी धाम का हो, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आस्था का सम्मान करते हुए उसके लिए भव्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास भी करती है और इसीलिए तो 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग भव्य बन रूप से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी और अयोध्या धाम के रिंग रोड के रूप में भी वह काम करेगा, इस रूप में उसका विकास किया जा रहा है।
0: अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान राशि की गिनती के काम में लगे 23 कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। इन कर्मचारियों के इस्तीफे को चढ़ावे में अनियमितता का मामला सामने आने के बाद व्यवस्था में किए गए बदलावों से जोड़कर देखा जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को अब सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ड्यूटी करनी होगी। इसके साथ ही छुट्टियों में भी बदलाव किया गया है। इन कर्मचारियों के इस्तीफे के बाद अब दान राशि की गिनती के लिए 13 कर्मचारी शेष बचे हैं। वहीं चढ़ावे की गिनती को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त की जा रही है। अब इस काम के लिए अलग से विशेष कर्मचारी रखे जाएंगे। इन कर्मचारियों को पुलिस से सत्यापित कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा और बिना जेब वाली विशेष ड्रेस पहनकर काम करना होगा, जिससे दान राशि की निगरानी और पारदर्शिता बनाई जा सके। मामले की जांच कर रही पुलिस की विशेष टीम जांच का दायरा बढ़ाते हुए आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा से भी पूछताछ कर रही है। इस बीच राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र आज अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। इसके बाद राम जन्मभूमि परिसर में ट्रस्ट के पदाधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं के इंजीनियरों के साथ बैठक कर निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और नई व्यवस्थाओं की समीक्षा की। श्री मिश्र कल राम कथा संग्रहालय में निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में ट्रस्ट के नव नियुक्त अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन पहली बार आधिकारिक रूप से शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ के सामने प्रस्तावित है। इन याचिकाओं में घटना की सीबीआई जांच और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन का ऑडिट कैग से कराने का अनुरोध किया गया है। इस मामले में 7 जुलाई को अयोध्या की एक अदालत ने गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। स्थानीय अदालत ने पिछले महीने की 29 तारीख को सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर का 8वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यार्थियों को 1071 उपाधियां और 47 पदक प्रदान किए गए। कार्यक्रम में राज्यपाल ने 300 आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी किट का वितरण और 600 बालिकाओं का HPV टीकाकरण भी कराया। राज्यपाल ने कहा कि छात्राएं तकनीकी क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल कर देश का गौरव बढ़ाएं। प्रदेश भर में कल से संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत

0: 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों को मौसमी बीमारियों समेत अन्य बीमारियों के लक्षण और बचाव के बारे में जागरूक करेंगी। फतेहपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी उदय भान सिंह ने बताया कि इस अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभिन्न विभागों का सहयोग लिया जाएगा।
1: सारे ब्लॉकों में जो कार्यक्रम है हमारा, इसमें करीब 7-8 विभाग हमारे जुड़े हुए हैं और 7-8 विभाग का प्लान है। इस तरीके से बनाया गया है कि एक ही स्थान पे उसी दिन सारे लोगों का कार्यक्रम, तो उसमें ये रहता है कि कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि जो छूट जाए, जिससे कि वहाँ की सारी व्यवस्थाएं एक साथ ठीक हो सके। कार्यक्रम में जितना मलेरिया वर्कर है वो लगा है हमारे यहाँ से, HS लगे हुए हैं और नोडल ऑफिसर्स भी बनाए गए हैं और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और उनके अधीनस्थ जितने चिकित्सक हैं वो सभी लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
0: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हो रही भारी बारिश से हो रही जनहानि पशुहानि की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से नुकसान का आकलन कर 24 घंटे में मुआवजा देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: राज्य में लगातार हो रही बारिश के चलते लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। वहीं कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। भारी बारिश के कारण कई जिलों में आज स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। जिलाधिकारी बदायूं अवनीश राय ने कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को कल भी बंद रखने के निर्देश दिए हैं। उधर बिजनौर बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण अमरोहा में खादर क्षेत्र के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। क्षेत्र की कई बीघा फसलें जलमग्न हो गई हैं। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने बताया कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसको देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा के सभी उपाय कर लिए गए हैं। उन्होंने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पूर्वी जनपदों में भारी बारिश का ऑरेंज और पश्चिमी जनपदों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आगामी 48 घंटों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का अनुमान जताया है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और बस्ती को 936 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, प्रदेश में दिख रहा है विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान राशि की गिनती में लगे 23 कर्मचारियों का इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट चढ़ावा प्रकरण से जुड़ी याचिकाओं पर 13 जुलाई को करेगा सुनवाई। प्रदेश में कल से शुरू होगा दस्तक अभियान। संचारी रोग नियंत्रण के लिए घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें करेंगी जागरूक। और राज्य में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा देने के दिए निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
4: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज पर तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।
5: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
4: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
6: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
4: करिए अपने मन पसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
6: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
4: गाने के बोल,
6: गीतकार
4: और संगीतकार
6: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
4: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
6: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास।
4: गाते गुनगुनाते
6: सुनिए सुबह 10:05 पर।
4: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
7: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए।

0: फिल्म माय नेम इज़ खान के इस गीत के साथ ही इस फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ पर तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे वार्ता। अमरकांत का जीवन और उनकी कहानियां, वार्ताकार हैं रजनीश पांडे।
1: अमरकांत हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की यथार्थवादी परंपरा के एक सशक्त उत्तराधिकारी के रूप में उभरे हैं।
2: उनकी कहानियां न केवल सामाजिक यथार्थ को उजागर करती हैं, बल्कि मध्यवर्गीय जीवन की विसंगतियों, मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक परिवर्तनों की जटिलताओं को भी गहराई से चित्रित करती हैं। यशपाल ने उन्हें हिंदी साहित्य का मैक्सिम गोर्की कहा, जो उनकी रचनाओं में निहित सामाजिक संवेदना और यथार्थ के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अमरकांत का जन्म 1 जुलाई 1925 उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा गांव में एक साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम श्रीराम वर्मा था, लेकिन अपने साहित्यिक क्षेत्र में पहचान बनाने के लिए उन्होंने अमरकांत नाम अपनाया। यह नाम उनके बचपन में एक साधु द्वारा दिए गए अमरनाथ नाम से भी प्रेरित था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बलिया में हुई और बाद में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। बचपन से ही साहित्य के प्रति उनकी गहरी रुचि थी और किशोरावस्था में उन्होंने कहानी लेखन शुरू कर दिया। अमरकांत का जीवन स्वतंत्रता संग्राम के दौर से प्रभावित रहा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी ने उन्हें उनके व्यक्तित्व और लेखन को गहरे रूप से प्रभावित किया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके अनुभवों ने उनकी रचनाओं में सामाजिक यथार्थ और मानवीय संघर्ष को उकेरने की प्रेरणा दी। अमरकांत जी के व्यक्तित्व के निर्माण में उनके व्यक्तिगत संघर्ष की अहम भूमिका थी। उन्होंने कभी भी परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेके। हर हाल में वे एक आम व्यक्ति की तरह संघर्ष करते रहे, शोषण का शिकार होते रहे और पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन के लिए हर तरह के कष्टों को गले लगाते रहे। उनका यही भोगा हुआ यथार्थ उनके कथा साहित्य में अपनी पूरी समग्रता के साथ प्रस्तुत हुआ है। उनके व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण बात थी ईमानदारी। अमरकांत ने हमेशा अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया। वे कई पत्र पत्रिकाओं के संपादन कार्य से जुड़े रहे, इसके बावजूद वे अवसरवादी नहीं बने। वे अपने अंदर एक सीमा के निर्धारण के साथ जीते रहे। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने स्वयं भी कभी उस सीमा का उल्लंघन नहीं किया। अमरकांत बाहर से जितने सुलझे वह सहज लगते हैं, वास्तव में अंदर से वे उतने

उलझे और परेशान रहते थे। कारण यह था कि वे अपनी परेशानियों को अपने तक रखना पसंद करते थे और बाहर उसकी छाया भी नहीं पड़ने देना चाहते थे, पर यह प्रायः हो नहीं पाता था। उनके मित्र उनकी परिस्थितियों से अच्छी तरह परिचित थे, लेकिन वे यह भी जानते थे कि यह आदमी मर्यादाओं में रहने वाला है। अपने लाभ के लिए अमरकांत दूसरे का नुकसान नहीं कर सकते। अमरकांत सदैव ही एक संकोची व्यक्ति रहे। आम जनता से जुड़ी हुई कोई भी बात उन्हें साधारण नहीं लगती थी। देश में होने वाली हर महत्वपूर्ण घटना पर उनकी बारीक नजर रहती थी। वे खुद यह कभी भी पसंद नहीं करते थे कि वे चर्चा के केंद्र में रहें। इन सब बातों में उन्हें एक अलग तरह का संकोच होता था। सामान्य जनता उससे जुड़ी हुई परेशानियां, जीवन और साहित्य, इन सब में अमरकांत की गहरी संसक्ति थी। अमरकांत न केवल एक अच्छे साहित्यकार हैं, बल्कि उतने ही अच्छे व्यक्ति भी हैं। उनका व्यक्तित्व बिना किसी बनावट के एकदम साफ और सहज है। अमरकांत ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से की। आगरा में सैनिक समाचार पत्र और इलाहाबाद में मनोरमा पत्रिका के संपादकीय विभाग में काम करते हुए उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की गोष्ठियों में भाग लिया। इन गोष्ठियों ने उनके साहित्यिक दृष्टिकोण को निखारा। हालांकि 1954 में हृदय रोग के कारण उन्हें पत्रकारिता छोड़नी पड़ी, जिसके बाद वे लखनऊ चले गए। इस कठिन दौर में भी उन्होंने लेखन को नहीं छोड़ा। उनकी रचनाएं सामाजिक यथार्थ को और भी गहराई से उजागर करने लगीं। अमरकांत की रचनाएं हिंदी साहित्य में यथार्थवादी धारा की एक मील का पत्थर हैं। अमरकांत की कहानियां मध्यवर्गीय और निम्न वर्गीय जीवन की वास्तविकता को उनके केंद्र में रखती हैं। उनकी रचनाएं सामाजिक परिवर्तनों, आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार और मानवीय मूल्यों के ह्रास जैसे विषयों को गहराई से उजागर करती हैं। अमरकांत की कहानियां प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाती हैं, लेकिन उनकी अपनी मौलिक शैली है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अमरकांत प्रेमचंद को दोहराते नहीं, बल्कि उनसे एक कदम आगे की बात करते हैं। उनकी कहानी जिंदगी और जोंक इस बात का उदाहरण है कि वे कैसे सामाजिक यथार्थ को सूक्ष्मता से चित्रित करते हैं। इस कहानी में रजुआ पात्र के द्वारा निम्न मध्यवर्गीय समाज के मनोविज्ञान को दर्शाया गया है, जो पाठक को गहरे भावनात्मक स्तर पर प्रभावित करता है। राजेंद्र यादव ने इस कहानी के बारे में लिखा, मैं आज तक तय नहीं कर पाया कि जिंदगी और जोंक जीवन के प्रति आस्था की कहानी है या जुगुप्सा आस्थाहीनता और डिसगस्ट की। यह टिप्पणी उनकी कहानियों की जटिलता और गहराई को दर्शाती है। अमरकांत की कहानियां मध्य वर्ग के जीवन की विसंगतियों को उजागर करती हैं। उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी में नौकरी और सामाजिक प्रतिष्ठा की चाह में डूबे एक व्यक्ति की व्यथा को दर्शाया गया है। यह कहानी न केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को दर्शाती है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था की खामियों को भी उजागर करती है। उनकी कहानी हत्यारे में सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों के ह्रास को चित्रित किया गया है, जिसमें वे नेतृत्व और छात्र राजनीति की विडंबनाओं पर प्रश्न उठाते हैं। कहना न होगा कि भारतीय साहित्य और समाज के संदर्भ में अमरकांत ने नई कहानी लेखन में भारतीयता और कहानी कहने की कला दोनों रूपों को अपनी कहानियों की सर्जना में प्रकट किया। गौर किया जाए तो दो विभिन्न कालखंड में पैदा होने के बावजूद प्रेमचंद कहानी लेखन में जितने पठनीय और प्रभावशाली हैं, उतने ही पठनीय और मननीय अमरकांत नई कहानी आंदोलन के दौर में हमेशा बने रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह भारतीयता की वह जमीन है जहां से अमरकांत कहानी लिखने की प्रेरणा पाते हैं। दूसरी वजह उनके कहानी में कहानीपन की अनिवार्यता। मेरा ख्याल है कि मुख्य रूप से यही दो तत्व हैं जो उन्होंने प्रेमचंद की विरासत से सीख कर अपनी कहानी संसार में इसकी खास तौर से निशानदेही की। जहां भारतीयता का आशय धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्रोत है, अमरकांत की कहानियां आम आदमी के जीवन, उसकी आकांक्षाओं, निराशाओं और संघर्षों को केंद्र में रखती हैं। उनकी कहानी दोपहर का भोजन में एक गरीब परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी को इतनी सहजता से दर्शाया गया है कि पाठक उससे तादात्म्य स्थापित कर लेता है। अमरकांत ने आम आदमी को और उसके व्यक्तित्व की द्वंद्वात्मकता को अपनी कहानियों का केंद्र बिंदु बनाया है।
अमरकांत की कहानियों

0: का शिल्प उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनकी भाषा सरल, सहज और जीवंत है, जो पाठक को तुरंत अपनी ओर आकर्षित करती है। वे आंचलिक मुहावरों और शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो उनकी कहानियों को स्थानीयता का रंग प्रदान करती है। उनकी कहानियाँ कथानक प्रधान होने के साथ साथ चरित्र प्रधान भी हैं, जहाँ पात्रों का मनोवैज्ञानिक चित्रण गहराई से किया जाता है। हालांकि कुछ आलोचकों ने अमरकांत की कहानियों में पात्रों के संघर्ष की कमी को रेखांकित किया है। विश्वनाथ त्रिपाठी और राजेंद्र यादव ने इस बात पर सवाल उठाया कि अमरकांत के पात्र सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ सक्रिय रूप से संघर्ष क्यों नहीं करते। यह आलोचना उनकी रचनाओं की निष्क्रियता को दर्शाती है, लेकिन यह भी तथ्य है कि अमरकांत का उद्देश्य यथार्थ को यथास्थिति में प्रस्तुत करना था, न कि उसे बदलने की प्रेरणा देना। उनकी कहानियां सामाजिक यथार्थ को आईना दिखाने का काम करती हैं, न कि आदर्शवादी समाधान प्रस्तुत करने का। अमरकांत की कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार और मानवीय मूल्यों के ह्रास जैसे मुद्दों को उजागर करती हैं। उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य के अमूल्य रत्न हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी।
1: अमरकांत का जीवन और उनकी कहानियां। अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, वार्ता करते रजनीश पांडे। ये था आज का हिंदी कार्यक्रम।
2: होगी बदलाव की अब शुरुआत, सुधरेंगे तेरे हालात। मत हार मान, तू है देश की शान। तू कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, एक नया टीवी चैनल, जहां होंगी बातें बदलाव की और आपके कल के बेहतर शुरुआत की। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की।
3: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
4: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
1: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
5: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
1: करिए अपने मन पसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
5: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
1: गाने के बोल,
5: गीतकार
1: और संगीतकार,
5: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
1: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
5: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
1: गाते गुनगुनाते
5: सुनिए सुबह 10:05 पर।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ पर तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ पर तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे प्रसारण प्रसार भारती के न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B Pharma M Pharma और D Pharma में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
0: प्रोग्राम का आगाज करते हैं जगजीत सिंह की गाई इस गजल से। सहमा सहमा डरा सा रहता है, जाने क्यों जी डरा सा रहता है। एक पल देख लूं तोड़ता हूं, जल गया सब
4: दिन

तुम्हारे गम की डली उठाकर जबां पे रख ली है, देखो मैंने ये कतरा कतरा पिघल रही है, मैं कतरा कतरा ही जी रहा हूँ।

आइए अब फिर सुनते हैं जगजीत सिंह की गाई ये गजल, मुझसे बिछड़कर खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो। एक टहनी पर चांद टिका था, मैं ये समझा तुम बैठे हो। जगजीत सिंह की

0: सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। आइए सुनते हैं ये गज़ल, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी।
1: सिलसिले से

0: सुगम संगीत में वक्त हो चला है एक छोटी सी अंतराल का।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
0: आइए फिर सुनते हैं जगजीत सिंह की गाई ये गजल, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब क्या किताब है।

प्रोग्राम के आखिर में आइए अब सुनते हैं गुलजार का लिखा ये कलाम, एक पुराना मौसम लौटा याद भरी पुरवाई भी, ऐसा तो कम ही होता है वो भी हूँ तन्हाई भी।

0: इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ पर तथा एफएम 14.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार जो हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
1: चार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
2: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
2: And then we can sell to further markets as well.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
4: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग

0: समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों

0: इसे तीन को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: पाइनएप्पल फेस्टिवल का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे।
2: Beyond the shores of India to far-reaching international shores.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 रुपए पर बंद हुआ।
0: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला

0: जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Auckland on final leg of his 3-nation tour, receives warm welcome from his New Zealand counterpart Christopher Luxon and Indian community. External Affairs Minister S. Jayashankar meets his Omani counterpart Badr bin Hamad Al Busaidi in Muscat, discusses issues of cooperation in trade, investments, connectivity, maritime, technology and defence. Ministers of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan review preparations for upcoming monsoon session. Railway approves Kavach deployment on 680 route kilometres of Northern Railway to enhance safety and operational efficiency. In football, Spain to face Belgium in the second quarter-final of FIFA World Cup tonight. And in Wimbledon tennis, Alexander Zverev of Germany storms into the men's singles final, beating British wildcard Arthur Ferry. Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic 2-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 4 decades. After arriving in Auckland today, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted Kia Ora Modi to welcome him. Mr. Modi witnessed a vibrant celebration of India's rich cultural heritage during the community welcome in Auckland this evening. In a series of social media posts, the Prime Minister said that the performances showcased the cultures of Punjab, Tamil Nadu, a fusion of Carnatic and Hindustani classical music, and a stirring rendition of Bande Mataram. Mr. Modi complimented the diaspora for keeping India's cultural heritage vibrant across generations and continents and for strengthening the enduring people-to-people bonds between India and New Zealand. The Prime Minister also expressed delight to witness the performance by the Nad Vocal Ensemble.

0: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्स पर तथा FM 14.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: संगीत का ये पहला गीत फिल्म बाजी से।

आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म चलती का नाम गाड़ी का ये गीत अभी आपने सुना। संगीत एच डी बर्मन का था, गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे। लीजिए अब सुनिए फिल्म आर पार का ये गीत, गीता दत्त की आवाज़ में, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, ओपी नैयर।

आइए सुनते हैं फिल्म श्री 420 में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और साथियों को शंकर जयकिशन की बनाई धुन पर शैलेंद्र का लिखा गीत।

आखिर में सुनते हैं फिल्म जब प्यार किसी से होता है का ये शीर्षक गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, शंकर जयकिशन की बनाई धुन। गीत हसरत जयपुरी का लिखा।

इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं विदुषी श्रुति सडोलकर का गायन राग नैकी कांगरा में।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार थी विदुषी श्रुति सडोलकर। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ पर हम

0: आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं आप। हमारे प्रसारण एफ एम 14.1 MHz के साथ न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे समाचार जो हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत के राजदूत मुआन पुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
2: Free trade agreement is a great opportunity.
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
2: And then we can sell to further markets as well.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा AI क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने आज विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के 90% से अधिक व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्य कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और 13वें और 14वें चरण के दूसरे प्रयास की बोलियां बोली। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए कुल 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस नीलामी में 16 कंपनियों ने भाग लिया जो देश के वाणिज्य कोयला खनन में उद्योग जगत की मजबूती भागीदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया।

0: humans to defeat Ferry in state set 766264. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज पर तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10:15 हो रहे हैं। यहीं पर संपन्न होती हमारी आज की सायंकालीन प्रसारण सभा। कल प्रातः 5:53 पर हम अपने प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुभरात्रि। जय हिंद।